तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहियो 9870 किलोहर्ट्ज़ ऐं खां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन ईयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु हिन तरह थोरी देरि में तव्हां हमेशह भगत कवराम साहिब जन जे मिठड़े आवाज़ में लोली ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो ऐं पोइ कुझु कलाम पेश कंदा। ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कई वेंदियूं। इहा थी असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहियो आहे। हींअर अचो त भगत कवराम साहिब जन जे मिठड़े आवाज़ में लोली ॿुधूं।

तमाम भगत कोराम साहब जन जे सदाबार आवाज़ में लोली बुधरे या आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है। हिंसर पेश है तबसरो। भारत ए साइप्रस जा पान में लंबे अरसे का वी कर पुरजोश ए दोस्ताना बाहिमी लागापा रहन जिनों बुनियाद है बाहिमी अकीदों वेझेतावन खास कर आलमी इदार में गुजल छह डाकन दौरान यह भाईवारी तमाम ही घनी पुख्ती थी है खास कर मईशत ए व्यापार के खेतर में बिन घणनि खेत्रनि में लाॻापा वधीक ऊना थियण जा वजह मज़बूत आहिनि। तंहिंमें ॿई मुल्क मैशी मशगूली ते अवलियत ॾेई रहिया आहिनि। भारत ऐं साइप्रस मंझि 10 फरवरी 1962 में मदबरी लाॻापा बर्पा थिया हुआ जो 2 साल अवल साइप्रस ब्रितानिया बैठकी हुकूमत खां आज़ादी हासिलु कई हुई। गुज़िरियल 63 सालनि दौरान भारत साइप्रस जो वधि में वधि भरोसेमंद दोस्त रहियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि पाण में मदबरी क़दुरु ऐं उसूल आलमी मामलनि में बरक़रार रखिया आहिनि। इन खां अलावा घणनि ई आलमी ऐं इलाक़ाई मुद्दनि ते हिकु करीबीअ रखी आहे ऐं मुताज़ जमायत कॉमनवेल्थ ऐं ॿियनि आलमी फोरमनि में अॾावती रोल अदा कयो आहे। साइप्रस जे सदर श्री निकोस क्रिस्टोडोलिडिस भारत जी 20 खां 23 मई 2026 दरमियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नींड ते सूबाई यात्रा कई। साणस गॾु ऊची समझ जो मेड़ो तंहिंमें पाड़ी वज़ीर डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस शुमारो गॾोगॾु आमदरफत कम्युनिकेशन ऐं वर्क्स जो वज़ीर श्री एलेक्स वेफेडिस इन खां अलावा आज़मूदर अमलदार ऐं वापारी सरबराह पिणु शुमार हुआ। सदर क्रिस्टोडोलिडिस जी संदसि मौजूदा उहिदे दौरान भारत जी पहिरीं यात्रा आहे। यात्रा खां पोइ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 ऐं 16 जून 2025 ते साइप्रस जी यात्रा थी हुई। भारतीय प्रधानमंत्री पारां 2 ॾहाकनि खां बि वधीक अरसे में इहा पहिरीं यात्रा हुई। यात्रा जो वक़्तु घणी माना पियो रखे छो जो उन वक़्तु साइप्रस यूरोपियन यूनियन जे काउंसिल जी सरबराही जो सरबराह हो। साइप्रस जे सदर पंहिंजी भारत यात्रा दौरान मुंबई यात्रा कई जिते हुते हुन हिकु वॾे वापारी फोरम खे ख़िताबु कयो त जीअं तिजारती तकनीकी ऐं सीड़प वारा लाॻापा वधीक पुख़्ता थियनि। हुन हुते मुंबई में नई यूरो बैंक ऑफिस जे मुहूर्त में पिणु शरीक थियो जंहिंसां माली ताउन अञा वधीक वधंदो। यूरो बैंक हिकु अहम माली इदारो आहे जेको ग्रीस साइप्रस लक्समबर्ग बल्गेरिया ऐं ब्रितानिया में कार्रवाई कंदो आहे। फोरम में ॻाल्हाईंदे महाराष्ट्र जे वॾे वज़ीर श्री देवेंद्र फडणवीस सूबे जे मज़बूत इकोसिस्टम खे रोशनी में आंदो जेको आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन ऐं स्टार्टअप में। हुन ज़ोर ॾींदे चयो त माली सेवाऊं ऐं फिनटेक्स इन ॾिस में महाराष्ट्र ऐं साइप्रस मंझि घणा वजह मुयसरु कराए रहिया आहिनि। हुन पुरजोश आजियां कंदे साइप्रस जे सीड़पकारनि खे तकनीकी कंपनियुनि खे वेंचर फंड्स यूनिवर्सिटी ऐं धंधोड़ियुनि खे महाराष्ट्र जे इदारनि सां वापार सां ऐं नौजवान सां भाईवार थियण जो सॾु ॾिनो। हुन ज़ोर ॾिनो त साइप्रस को महज़ हिकु भाईवार कोन आहे पर लंबे अरसे जो तरक़ी ऐं वाध में तावन ॾींदड़ मुल्क आहे। नई दिल्ली में साइप्रस जे सदर राजघाट में महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि ॾिनी। उन खां अलावा हुन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सां हैदराबाद हाउस में घणनि ई मामलनि ते ॻाल्हियूं कयूं तंहिंमें वापार सीड़प टेक्नोलॉजी तइलीम सकाफ़त मोबिलिटी बचा सुरक्षा AI फिनटेक इनोवेशन रिसर्च इहे सभु मौज़ो शुमार हुआ। ॿिन्ही अॻवाननि घणनि ई इलाक़ाई ऐं आलमी मुद्दनि ते वीचारनि जी मटसट कई ऐं ॿहुतरफ़ी फोरमुनि में पंहिंजे ताउन खे ॿीहर दोहिरायो। यात्रा ते आयल महिमान

ॻाल्हियुनि खां पोइ ॿिन्ही अॻवाननि घणनि सूझबूझ जे चिठनि ते सही कयूं, जेके हुआ वापारु, टेक्नोलॉजी, बचाउ, जंहिंसां वधीक माली ऐं हिकमत अमली लाॻापा वधीक पुख़्ता थींदा। साइप्रस सदर भारतीय सदर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सां पिणु मुलाक़ात कई, जंहिं पिणु संदसि इज़त में शाही दावत ॾिनी हुई। पर्डी मामले जे वज़ीर डॉक्टर एस जयशंकर पिणु यात्रा ते आयल सदर सां गॾिजाणी कई। भारत ऐं साइप्रस पाण में लंबे अरसे खां भाईवारी रखनि था। इहा यात्रा संदनि बाहिमी लाॻापनि में अञा वधीक तेज़ी आणींदी ऐं ॿिन्ही मुल्कनि मंझि ऊन्हे ताउनि खे अञा वधीक पुख़्तो बणाईंदी। तंहिंमें अची थो वञे भारत यूरोपियन यूनियन फ्रेमवर्क। ॿई मुल्क 10 फरवरी 2027 ते पंहिंजे मतभरी लाॻापनि जा 65 साल मल्हाईंदा। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। हींअर पेशन कलाम गीतक प्रोग्राम जो आगाज़ करियूं आबिदा पढ़ जे आवाज़ में सचल साहिब जे हिन कलाम सां।

भगत कौरम साहब जब बोल मीरा देवी जावा से मुद्रे या आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आई और पेश हैं खास खास खबरों पढ़े मामले जो वजह डॉक्टर एस जयशंकर चवे तो भारत ए अमेरिका ज पान में दहशत के हर रूप में बुंजो डेण ला मजबूत फायदा है। अमेरिकी सूबाई सेक्रेटरी मार्को रूबियो भारत के अमेरिका जो वध में वध अहम हिकमत अमली भाईवार करे कोठियो है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चव है तो वार मंझ जंग मंझ हलंदड़ गालन दौरान अमेरिका ईरान सा यकदम को भी करार कोन कंदो। सरकार सभी भारतीय शहरन के सलाह डिनी है तो एबोला बीमारी के नुक्ते नजर सभी भारतवासी कांगो युगांडा ए दक्षिण सूडान की यात्रा न कन। एशियन अंडर 23 रेस्लिंग चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैपलर्स टे सोने जा बिला ब चांदी जा ए टे कांस जा बिला वियतनाम में खटिया आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स के 40 रनसों मात डिनी।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे, वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 ते। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशुतोष कुमार से भजन। सबसे पहले सुनिए ये पारंपरिक भजन।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशुतोष कुमार से भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ में। आइए अब सुनते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से ये गीत। और दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह मुस्कुराहट और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होगी और आप चाय की चुस्के के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे। चलिए आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म केदारनाथ से अमित त्रिवेदी की आवाज़ में।

0: दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए तो पूरा दिन शानदार बन जाता है ना। और भाई, सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए। वैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भाई अपनी सेहत का ध्यान बहुत बहुत रखें और कोशिश करें कि बाहर ज़रूरत हो तभी निकले, नहीं तो घर पर ही रहकर अपना काम करें। चलिए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी से ये गीत।
1: Thank you.

वाह क्या बात है दोस्तों, ये गीत तो सुबह को और भी खुशनुमा बना देते हैं। और भाई अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल और टोपी या छाता ज़रूर रखें। और भाई सुबह सुबह कम से कम 10-15 मिनट योग या हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये न केवल शरीर को फिट रखता है बल्कि मन को भी शांत और ऊर्जावान बनाता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से।

आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और भाई दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप नाश्ता कभी भी स्किप ना करें, और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसे फल, दलिया या पोहा आपके दिन को एनर्जी से भर देता है। और दोस्तों, गर्मियाँ बहुत है तो भाई आप तरबूज, खरबूज फलों में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें, सलाद ज़रूर खाएं और खूब सारा पानी पिए। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे टिप्स के साथ अपने दिन को बनाइए शानदार और हेल्दी। चलिए फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म पुकार से, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में।

0: मैं इसी गीत के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 8 बजने को है और अब वक्त है समाचार प्रभात का।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है, जहां पहले

0: छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
4: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान

0: मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10 लाख 60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्य ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं। बकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड लोगों के इम्तियाजी कामों के अतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड्स अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशरियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और जिंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबायली हकूक खत्म नहीं होंगे।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने BJP उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि इस जीत से

स्वर गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुभम कुमार से राग नट भैरव। संगत कलाकार थे मुस्तफा हुसैन तबले पर, गुलाम मोहम्मद सारंगी पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 809 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेशा खिदमत है प्रोग्राम सुबह गाही।

सलाउद्दीन अहमद और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने हम्द बारी ताला सुनी और अब हम आपको सुनवा रहे हैं नाते रसूल पाक।

0: नात रसूल करीम आप सुन रहे थे, पेश कर रहे थे उस्मान खान और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे,
1: और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। बात सबसे पहले 1955 की, जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश पर्वतरोहण दल ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर पहली बार आज ही के दिन सफलता हासिल की। 1995 में अमरीकी वैज्ञानिकों को इतिहास में पहली बार एक जीवित जीव यानी बैक्टीरिया के संपूर्ण डीएनए को पूरी तरह से डिकोड और अनुक्रमित करने में सफलता मिली। सन 2010 में भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर ने आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और त्रिनिदाद और टोबैको की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। और आइए श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस की। रास बिहारी बोस प्रख्यात क्रांतिकारी तो थे ही, सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के निर्माता भी थे। देश के जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्र सरकार का संगठन करने के लिए प्रयत्न किया, उनमें श्री रास बिहारी बोस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। श्रोताओं, आज के दिन जन्म हुआ था जाने माने शायर दाग दहलवी का। उनके जीवन का अधिकांश समय दिल्ली में व्यतीत हुआ और यही कारण है कि उनकी शायरियों में दिल्ली की तहजीब नजर आती है। दाग दहलवी की शायरी इश्क और मोहब्बत की सच्ची तस्वीर पेश करती है। वो कहते थे, तदबीर से किस्मत की बुराई नहीं जाती, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई नहीं जाती। तो आइए सुन लेते हैं जगजीत सिंह की गजल, यानी उनकी आवाज में और उनकी गजल।

और श्रोता, बात एक ऐसे भारतीय अभिनेता की जिनको पर्दे पर देख एक आम हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की झलक देखता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त की। सुनील दत्त की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में प्रदर्शित हुई, जिसमें इन्होंने अभिनेता के रूप में कार्य किया। अपनी पहली फिल्म से उन्होंने कुछ खास पहचान नहीं बनाई, लेकिन इस फिल्म के बाद कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कई छोटी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इनमें से उनकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। लेकिन फिर वक्त आया 1957 का, जहां प्रदर्शित हुई उनकी

मदर इंडिया, और सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में खास पहचान मिली इसी फिल्म से। सुनील दत्त की सुपरहिट फिल्म वक्त 1965 में प्रदर्शित हुई। उनके सामने इस फिल्म में बलराज सहानी, राजकुमार और शशि कपूर रहमान जैसे नामी सितारे थे, और इसके बावजूद सुनील अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। इसके अलावा उन्होंने फिल्म साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन जैसी सफल फिल्मों से भारतीय दर्शकों के बीच एक सफल अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की कुछ चुनिंदा फिल्मों से ये प्यारा सा मेडली।

और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं जाने माने फिल्म लिरिस्ट लक्ष्मीकांत को, जो जिन्होंने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनके पिता का निधन हो गया, जिसके कारण उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन के दिनों में लक्ष्मीकांत का रुझान संगीत की ओर था और वो संगीतकार बनना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई संगीत समारोह में भी वो शामिल हुए और इसके बाद उनका जो दिन था वो शुरू हो गया और कामयाबी के शिखर तक वो पहुंचने लगे। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद के सहायक के रूप में इन्होंने मदारी, सट्टा बाजार, छलिया, दिल तेरा हम भी तेरे जैसी कई फिल्मों में काम किया और एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत रहा इनका, यशोदा का नंदलाल। आइए सुन लेते हैं।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

जितेंद्र सिंह की गाई हुई इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। आज अदाकार सुनील दत्त का यौमे वफात है और हम लेकर आए हैं एक फीचर उनके हवाले से जिसका उन्वान है मसीहा दर्द का। तहरीर जनाब अनीस अमरोहवी की है, आइए सुनें।

0: वक्त इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे, किसी को कुछ मालूम नहीं। जब वक्त मेहरबान होता है तो वो आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा देता है और दुनिया की हर दौलत, इज्जत, शोहरत, चाहत आदमी के कदमों में बिछा देता है। और यही वक्त जब किसी का बिगड़ा हो तो वो दुनिया की हर खुशी उससे छीन लेता है। वक्त का ये मजाक कभी कभी आदमी के साथ लगातार चलता रहता है और आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसीलिए ये मिसाल मशहूर हुई कि कभी किसी का वक्त एक सा नहीं रहता।
1: हिंदुस्तान की आजादी अपने दामन में इस वसीओ अरीज मुल्क की तकसीम भी ले आई और 18 बरस के नौजवान बल्लाज दत्त को पंजाब के अपने गांव खुर्द जिला झेलम से बेदखल होकर हिंदुस्तान में सूबे हरियाणा के जमुनानगर के गांव मंडोली में आना पड़ा। बल्लाज दत्त 6 जून सन 1929 को पंजाब के जिला झेलम, जो अब पाकिस्तान में है, उसके एक छोटे से गांव खुर्द के एक जमींदार खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम दीवान रघुनाथ दत्त था और वो आर्मी में मुलाजिम थे।

0: बलराज दत्त बचपन से ही बहुत शरारती और नटखट थे और छोटे दीवान कहलाते थे और एक मुलाजिम के साथ घोड़ी पर बैठकर स्कूल जाया करते थे। अपनी माँ श्रीमती कुलवंत देवी को वो प्यार से वंतु कहते थे। बचपन में बलराज को गुस्सा बहुत आता था। एक बार वो अपनी माँ पर इतना गुस्सा हुए कि घर का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगाकर चले गए। गांव वाले इन्हें पूरे गांव में ढूंढते फिरे और आखिर में वो अपने ही मकान की छत पर एक खुर्री चारपाई पर सोते हुए मिले।
1: अभी वो 5 बरस के ही थे जब उनके सर से बाप का शफीक साया उठ गया। मुल्क की तकसीम के नतीजे में उस खानदान का सब कुछ खत्म हो गया और ये सब महाजरीन बनकर हिंदुस्तान में हरियाणा के एक गांव मंडोली में आबाद हो गए, जहां उनको हुकूमत की तरफ से कुछ जमीन दे दी गई।
0: छोटे भाई सोमदत्त, मां और एक छोटी बहन रानी की जिम्मेदारी अब पूरी तरह बलराज दत्त के कांधों पर थी। लिहाजा वो मां से ये वादा करके कि वो बीए तक की तालीम जरूर हासिल करेंगे, रोजगार की तलाश में बंबई चले आए और रीगल सिनेमा के पीछे एक नाई की दुकान में रात को सोने का इंतजाम कर लिया। यही नाई मुफ्त में इनका शेव भी करता था और कभी कभी बाल भी काट दिया करता था।
1: बंबई आकर बलराज दत्त ने बड़ी जद्दोजहद की और किसी तरह बेस्ट यानी BEST में वर्कशॉप रिकॉर्डिस्ट की मुलाजमत 100 रुपए माहाना पर हासिल कर ली। बंबई में एक रिफ्यूजी कॉलेज कायम किया गया, इसमें मॉर्निंग क्लासें हुआ करती थी। बलराज दत्त सुबह 7:30 बजे कॉलेज जाया करते और फिर दोपहर को 2:30 बजे से रात 11:30 बजे तक कोलाबा के डिपो में बंबई की बसों का हिसाब किताब लिखते।
0: कुछ दिनों बाद बलराज दत्त ने रेडियो सैलून के एक प्रोग्राम लिप्टन के मेहमान के लिए फिल्मी अदाकारों और फिल्म साजों और हिदायतकारों से इंटरव्यू करने शुरू किए। इस प्रोग्राम के लिए उन्हें बहुत मामूली से तनख्वाह मिलती थी, जिसमें वो बहुत तंगदस्ती के साथ गुजारा किया करते। दिन भर काम के सिलसिले में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर लगाते और रात को काफी देर तक अपनी पढ़ाई भी करते थे। माँ से किया हुआ बीए करने का वादा वो हमेशा याद रखते थे।
1: रेडियो सिलोन में मुलाजमत मिलने पर बलराज दत्त ने कुर्ला में एक महाराष्ट्रन की खोली में 30 रुपए माहवार पर शेयर किया और पहनने के लिए उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। उन दिनों वो हमेशा सफेद शर्ट और सफेद पाजामे में देखे जा सकते थे। इसकी वजह यह थी कि रात को 1 जोड़ी कपड़े वो खुद ही धो लेते और सुबह को 2 जोड़ी पहनकर स्टूडियोज की तरफ निकल पड़ते।
0: एक बार वो सफेद कपड़े पहनकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के लिए चल पड़े तो रास्ते में चंद शरीर लड़कियों ने उन्हें घेर लिया। ये लड़कियां होली खेल रही थीं और पानी और रंग से आने जाने वालों के कपड़े भिगो रही थीं। बलराज दत्त ये देखकर घबरा गए। उन्होंने इन लड़कियों से मिन्नत समाजत की कि उनके कपड़ों पर कोई रंग न डाले, क्योंकि उनके पास बदलने के लिए कोई दूसरा जोड़ा नहीं है। मगर लड़कियों ने उनकी एक न सुनी और उनके सारे कपड़ों को रंग डाला और बेचारे बलराज दत्त अपनी बेबसी पर रो पड़े।
1: इस तरह रेडियो सिलोन से एक आवाज उभरी। वो आवाज थी बलराज दत्त की। आवाज अच्छी थी, इसलिए इस आवाज को काफी मकबूलियत हासिल हुई। जैसे अमीन सियानी का अंदाज और आवाज बहुत मकबूल है, उसी तरह उस वक्त बलराज दत्त के पेश किए गए प्रोग्राम बहुत मकबूल हुए।
0: उन्हीं दिनों अदाकारा नरगिस का इंटरव्यू करने का ख्याल बलराज दत्त को आया। मशहूर और मारूफ मुगनिया

की बात थी। इस फिल्म को कामयाबी भी मिली। फिल्म एक ही रास्ता के बाद सुनील दत्त बीआर चोपड़ा के मुस्तकिल अदाकार बन गए और बाद में उन्होंने चोपड़ा की हमराज, साधना, वक्त और गुमराह जैसी कामयाब फिल्मों में काम करके अपनी अदाकाराना सलाहियतों को मनवा लिया।

मशहूर फिल्मसाज हिदायतकार महबूब खान ने अपनी कामयाब तरीन फिल्म औरत को दोबारा मदर इंडिया के नाम से बनाने का ऐलान किया और बिरजू के अजीबोगरीब किरदार के लिए सुनील दत्त का नाम लिया। उनकी यूनिट के सभी लोग चौंक पड़े मगर महबूब साहब अपने फैसले पर अटल रहे और बाद में लोगों ने देखा कि सुनील दत्त ने अपनी आवाज और अदाकारी से बिरजू के सख्त तरीन एंग्री मैन के किरदार में जान डाल दी।

सफाई भी। फिल्म मदर इंडिया से सुनील दत्त की जिंदगी का एक सबसे अहम वाकया भी जुड़ा हुआ है, जिसने सुनील दत्त की जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया। इसी फिल्म में उस वक्त की मकबूल अदाकारा नरगिस कलीदी रोल अदा कर रही थी और सुनील दत्त ने उनके छोटे बेटे का रोल अदा किया। फिल्म के एक मंजर में गांव का सरमायादार कन्हैया लाल सुनील दत्त की कटी हुई फसल में आग लगवा देता है और सुनील दत्त भी इसी फसल में छुपा बैठा है। नरगिस को मालूम है कि उसका बेटा भी आग के इन्हीं शोलों में मौजूद है, लिहाजा वो बेकरार होकर बिरजू बिरजू कहती हुई अपने बेटे को तलाश करती आग और धुएं में भागती दौड़ती फिर रही है।

0: शूटिंग के दौरान नरगिस को बिरजू तो नहीं मिला, मगर वो खुद हकीकतन चारों तरफ लगी आग में घिर जाती है। तब सुनील दत्त को मालूम होता है कि नरगिस आग और धुएं में घिर गई है। वो अपनी जान की परवाह न करते हुए उस आग में कूद जाते हैं और नरगिस को जिंदा बचा लाते हैं। अल्लामा इकबाल के इस शेर के मुताबिक के बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी।
1: इस वाकये से नरगिस इतनी ज्यादा मुतासिर हुई कि उन्होंने अपने सारे मामलात पसे पुश्त डालकर और बहुत से लोगों की मुखालफत को नजरअंदाज करते हुए खुद से उम्र में काफी छोटे सुनील दत्त से शादी करने का फैसला कर लिया। सुनील दत्त ने बड़े तजब्जुब के साथ नरगिस के सामने शादी की तजवीज रखी और आखिरकार 11 मार्च सन 1998

0: 58 को दोनों ने शादी कर ली।
1: नरगिस के बड़े भाई अख्तर हुसैन इस शादी के खिलाफ थे, मगर छोटे भाई अनवर हुसैन को कोई एतराज न था। शादी के रोज नरगिस अपने घर से ये कहकर निकली कि वो अपनी किसी सहेली से मिलने जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम शादियां उस वक्त और भी ज्यादा मुश्किल थीं, चाहे वो फिल्म स्टार ही क्यों ना हो।
0: सुनील दत्त से मिलने का वक्त शाम 7 बजे का था। लिंकिंग रोड पर आर्य समाज के करीब सुनील दत्त खड़े हुए नरगिस का इंतजार कर रहे थे। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, हत्या के रात के 10 बजे तक नरगिस का कहीं पता न था। वहां से हटकर सुनील दत्त फोन करने नहीं जा सकते थे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां से हटें और नरगिस आ जाएं और सुनील को खास मकाम पर ना पाकर लौट जाएं। वो इसी उधेड़ बुन में रहे कि कहीं नरगिस ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया।
1: दूसरी जानिब नरगिस ट्रैफिक में फंस गई। उसी दिन पोप जॉन पॉल हिंदुस्तान आए हुए थे। बंबई में उससे कबल इतना जबरदस्त ट्रैफिक जाम कभी नहीं हुआ। नरगिस टैक्सी भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से दूसरी टैक्सी न मिली तो, और न ही वहां पार्किंग की गुंजाइश थी। ये सुनील दत्त का ही हौसला था कि वो अपने मकाम पर डटे रहे और इंतजार करते रहे। फिर खुदा खुदा करके 10 बजे के बाद नरगिस वहां पहुंची और ये शादी हो सकी।
0: बाद में सुनील दत्त और नरगिस की ये शादी फिल्मी दुनिया की एक मिसाली शादी साबित हुई, और नरगिस ने हर अच्छे बुरे वक्त में सुनील दत्त का साथ एक बेहतरीन दोस्त और एक गमगुसार बीवी के रूप में दिया।

नरगिस से शादी के बाद सुनील दत्त की कामयाबियों का सिलसिला तेजी से शुरू हुआ। उनकी एक के बाद एक फिल्म कामयाबी हासिल करती चली गई। साधना, सुजाता, इंसान जाग उठा, एक फूल चार कांटे, मैं चुप रहूंगी और गुमराह जैसी फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें हीरो से स्टार बना दिया।

0: फिल्म मुझे जीने दो में तो उन्होंने डाकू के किरदार को इस तरह जिंदगी बख्शी कि आज भी फिल्म बीनों के जहनों में वो किरदार महफूज है।
1: सुनील दत्त एक बाहिम्मत, जवा हौसला और मर्दाना शख्सियत का नाम था। मदर इंडिया के आग के वाकये की तरह ही

0: एक फिल्म हिमालय से ऊंचा की लद्दाख में शूटिंग के दौरान फिल्म की हीरोइन बर्फानी तूफान में घिर गईं। सुनील दत्त ने हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए उसी बर्फानी तूफान में हीरोइन को तलाश किया और उसकी जिंदगी बचाई।
1: फिल्मों में अदाकार के बतौर अपनी शख्सियत मनवाने के बाद सुनील दत्त ने अजंता आर्ट ग्रुप के नाम से न सिर्फ फिल्म साजी और हिदायतकारी शुरू की बल्कि मुल्क और कौम की खिदमत के लिए बहुत से चैरिटी प्रोग्राम भी पेश किए और सन 1962 में हिंद चीन की जंग के वक्त मुल्क की सरहदों पर जाकर अपने फौजी भाइयों की हौसला अफजाई, दिलजोई और तफरीह के लिए दिलचस्प प्रोग्राम भी पेश किए। हालांकि कई बार उनको खतरनाक बर्फीले इलाकों में भी ऐसे प्रोग्राम करने के लिए जाना पड़ा जब मुल्क पर कोई मुसीबत आई। सुनील दत्त हमेशा मुल्क की खिदमत के लिए पेश रहे।
0: फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त ने नेगेटिव रोल निहायत कामयाबी के साथ अदा किया, मगर अपने हीरो की इमेज को तोड़कर फिल्म पड़ोसन में पहली बार सुनील दत्त ने एक कॉमेडी किरदार अदा किया। हालांकि इस फिल्म में महमूद और किशोर कुमार जैसे कॉमेडियन भी मौजूद थे, मगर अपने भोलेपन और अहमकाना हरकतों वाले इस किरदार में सुनील दत्त ने बेहतरीन अदाकारी की।

अभी आप सुन रहे थे अदाकार सुनील दत्त के यौमे वफात पर उर्दू सर्विस की एक खसूसी पेशकश। फीचर उन्वान था दर्द का मसीहा। तहरीर जनाब अनीस अमरोहवी की थी और पेशकश थी अली मुहतशिम रजा की। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। सुनील दत्त साहब के हवाले से सिलसिले को दराज करते हुए मेरी पसंद प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं उन पर फिल्माए हुए कुछ खूबसूरत फिल्मी नगमे। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की जानिब से यह है इस अजीम अदाकार को खराज अकीदत।

हमराज फिल्म का नगमा आपने सुना, सुनील दत्त पर फिल्माया हुआ। आवाज़ थी महेंद्र कपूर की। प्रोग्राम की अगली जो पेशकश है वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है और ये नगमा हमने चिराग फिल्म से लिया है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।

0: मेरी पसंद प्रोग्राम में आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप मेरी पसंद प्रोग्राम में आज हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं अदाकार सुनील दत्त को। अगला नगमा जो उन पर फिल्माया हुआ है वो हमने गज़ल फिल्म से लिया है, आइए सुने। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।
1: दिल खुश है

किशोरदा की आवाज में नगमा अभी अपने पड़ोसन फिल्म से सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद और आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं अदाकार सुनील दत्त पर फिल्माए हुए नगमे। अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में है और फिल्म का नाम है ये रास्ते हैं प्यार के।

नर्तकी फिल्म का नगमा भी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना और अब हम आपको महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुनवाएंगे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश सुनील दत्त पर फिल्माया हुआ नगमा गुमराह फिल्म से।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा हमने आपको बेटी बेटे फिल्म से सुनवाया। आज का मेरी पसंद प्रोग्राम हमने पेश किया अदाकार सुनील दत्त के हवाले से। आपने सुने कुछ फिल्मी नगमे, उन पर फिल्माए हुए। अब आज का ये शुमारा यहीं अख्ताम पजीर हुआ। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब हम आपको सुनवाएंगे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: ये जितनी भी उबासियां आ रही है ना, इन्हें आप जरा बंद कर दीजिए, क्योंकि अब समय है पूरा आपका ध्यान यहाँ लगाने पर। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, आपके साथ हूँ मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। और मेरे साथ आज जो हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। जी दोस्तों, मेरे साथ हैं वो जो पिछले 14-15 साल से इस लाइन पर काम कर रहे हैं, श्री योगेश कुमार जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं।
3: हेलो, नमस्कार।
2: फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा श्री योगेश कुमार जी से, जिन्हें आपको पता है किताबें पढ़ने का बेहद शौक है और साथ ही बहुत अच्छे योगा थेरेपिस्ट भी हैं। उस बारे में भी हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया और योगा का क्या कनेक्शन हो सकता है। पर फिलहाल सबसे पहला सवाल योगेश जी कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है?
3: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से बिल्कुल संबंध टूट जाता है।
2: जी,
3: वो उन सब बातों पे ज़्यादा विश्वास करता है जो बिल्कुल सच नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, और उनको जितना ही समझाने की कोशिश करो, उनका ये फर्म बिलीफ रहता है कि वो जैसा सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। वो दूसरी की जो बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, और इसमें कई प्रकार के उसे भ्रम रहते हैं जिसे डिल्यूजन्स कहते हैं, और डिल्यूजन्स के साथ हैलुसिनेशंस भी रहते हैं। डिल्यूजन्स ये रहता है कि कहीं कोई उसको प्लॉट तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कभी उनको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, तरह तरह की कमांड सुनाई देने लगते हैं।

0: और उनका जो व्यवहार है और जो एक्शंस है वो जो आवाजें सुनते हैं उसके अनुसार उनका पालन करते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है।
1: इतनी जबरदस्त स्ट्रांग होती है कि वो उसको जीने लगते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और उनके सोचने समझने के व्यवहार करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। और सिजोफीनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में रियलिटी से बिल्कुल संबंध टूट जाता है। वास्तविकता में जीवन कैसा है, स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ क्या है, उनका बिल्कुल आभास नहीं होता है व्यक्ति को और वो अपनी काल्पनिक दुनिया में जीना शुरू कर देता है।
1: योगेश जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आपने कहा एक भ्रमित जीवन जीते हैं, तो क्या ये भ्रमित जीवन 24 घंटे चलता है या दिन के कुछ घंटे या कोई एक पहर या कोई एक घंटा ऐसा होता है कि जब वो उस कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं और बाकी समय बिल्कुल नॉर्मल और एकदम रेगुलर जिंदगी जीते हैं?
0: देखिए ये कहना तो उचित नहीं होगा कि पर हाँ जो ऑब्सेशंस होता है इन सब बिलीव्स का, थॉट्स का, वो 24 घंटे ही रहता है। पर कभी ये थॉट्स और जो बिलीव बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं किसी टाइम पे और किसी टाइम पे थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं।
1: ओके, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया साइकोटिक, मैं चाहूंगी कि आप इस शब्द पर थोड़ी और रोशनी डालें।
0: देखिए जितनी जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं हम इनको दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है साइकोटिक डिसऑर्डर, दूसरा होता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो होते हैं इनका कोई ऑर्गेनिक रिलेशंस नहीं होता है, कोई ऑर्गेनिक डिसीज जो है इसके पीछे नहीं होती है। ये एंग्जाइटी, डिप्रेशंस और स्ट्रेस से भी ये न्यूरोसिस डिसऑर्डर हो सकते हैं। okay. और न्यूरोसिस डिसऑर्डर थोड़े माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। okay. जबकि दूसरी तरफ जो साइकोटिक डिसऑर्डर हैं वो बड़े प्रोफाउंड होते हैं, बड़े सीवियर होते हैं और इनका इसमें व्यक्ति का रियलिटी से बिल्कुल टच चला जाता है। अब जैसे सिजोफीनिया है साइकोटिक की कंडीशन उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। डिल्यूजन डिसऑर्डर है साइकोटिक की कैटेगरी में आता है। और पोस्ट ट्रामेटिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशंस है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे न्यूरोसिस कैटेगरी में आते हैं।
1: तो क्या सिम्टम्स हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
0: देखिए सिजोफीनिया के जो सिम्टम्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स।
1: इसपे पॉजिटिव भी हो सकते हैं?
0: जी जी, पॉजिटिव सिम्टम्स का हम यहाँ वो सकारात्मक एटीट्यूड वाला पॉजिटिव नहीं लेते हैं।
1: ओके।
0: यहाँ पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है कि पॉजिटिव सिम्टम्स इंक्रीज द नॉर्मल फंक्शनिंग।
1: अच्छा।
0: जो व्यक्ति की नॉर्मल फंक्शनिंग है, दिनचर्या है, वो एक्टिविटीज नॉर्मल सिम्टम्स में बढ़ जाती हैं। जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं तो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी और जो नॉर्मल जो एनर्जी है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है।
1: ओके।
0: तो इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स में सबसे पहले आता है हमारा डिल्यूजन्स आता है, हैलुसिनेशंस आता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच आती है एंड डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर आता है।
1: डिसऑर्गेनाइज स्पीच का क्या अर्थ हुआ?
0: देखिए हम अगर श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम शुरू से हम लेके चलते हैं, पहले हम डिलीजेंस को लेके चलते हैं, भ्रम को लेके चलते हैं, फिर हैलुसिनेशंस को लेके चलते हैं, उसके बाद में डिसऑर्गेनाइज स्पीच और बिहेवियर की बात करेंगे।
1: जरूर।
0: तो सबसे पहले डिलीजेंस हम देख लें कि इसमें स्पेसिफिकली 4 टाइप्स के डिलीजेंस होते हैं सिजोफीनिया में। तो सबसे पहले होता है डिलीजन ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे व्यक्ति को लगा रहता है कि वो जो है जो भी व्यक्ति बात कर रहा है उसके बारे में ही बात कर रहा है। अगर ऑफिस में वो जाता है दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उसे ऐसा महसूस होगा कि उसके बारे में ही बात कर रहे हैं।
1: तो ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस हुआ।
0: हाँ, और कभी कभी तो जो सॉन्ग के जो लिरिक्स होते हैं, गानों के लिरिक्स होते हैं, वो भी अपने को पॉइंट आउट कर लेता है कि ये मेरे बारे में गाना गाया जा रहा है, ये मेरे संदर्भ में गाना गाया जा रहा है। और कोई बुक का पैसेज भी होता है, वो भी ये अपने आप में मान लेता है ये मेरे संदर्भ में लिखा गया है।
1: जितने सिम्टम्स मैंने सुने आपसे अभी योगेश जी, तो दिल बहुत दुखा, बहुत तकलीफ हुई और विचलित हुआ मन कि जो इस सब से गुजर रहा है वो तो है ही तकलीफ में, लेकिन जो उसके साथ रह रहे हैं वो भी कितने तकलीफ में हैं, वो भी कितनी परेशानी में।
0: जी, फैमिली को भी बहुत परेशानी होती है।
1: देखिए हमारे पास एक मधुबाला जी का मैसेज आया है कि मेरे पति मुझ पर ज्यादा शक करते हैं और बच्चों पर भी शक करते हैं। मैं जो खाने पीने की चीज उनको देती हूँ उन पर भी उन्हें शक रहता है कि उसमें मैंने कुछ मिला दिया है। उनके पिता भी कुछ कुछ ऐसे ही थे और बहुत ज्यादा इनके जो पति हैं वो बोलते हैं। डॉक्टर से दवाई भी ली है लेकिन वो खाते नहीं है, कहीं मुझे आने जाने नहीं देते, घर से भी नहीं निकलने देते और स्वयं भी घर से बहुत कम निकलते हैं और लगातार सब लोगों से मेरी बुराई करते हैं।
0: जिस हिसाब से

0: आपने वर्णन किया है अपनी स्थिति का, तो उससे तो यही मालूम चल रहा है कि जो एक सिजोफीनिया है, जो एक पैरानॉइड सिजोफीनिया की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपने बताया कि बहुत शक करने की आदत है और आप पे भी शक करते हैं और मुझे बाहर भी नहीं जाने देते हैं, और फिर आपने बताया कि मुझे मेरे फादर इन लॉ को भी ये बीमारी थी,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: उससे भी ये प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसका जेनेटिकली भी अगर हम देखा जाए, अगर पेरेंट्स में ये बीमारी होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी न्यू जनरेशन्स में भी वो बीमारी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं जब देख रहा हूँ, उनको शक करने की बहुत वो है, आपको भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं,
1: जी
0: तो ये पैरानाइड सिजोफीनिया की कैटेगरी में आता है, और आपको अच्छे साइकेट्रिस्ट साइकोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: मतलब निराश होने की जरूरत नहीं
0: नहीं,
1: है।
0: बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सिजोफीनिया क्योरेबल है, बहुत अच्छा एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल फील्ड में, बहुत अच्छी साइकोथेरेपीज हैं, बहुत रिसर्च हो रही है सिजोफीनिया पे, और आज जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो जैसे उनका तो होगा ही, उनके पति का तो होगा ही ट्रीटमेंट, तो क्या थोड़ी काउंसलिंग इनको वाइफ को भी दी जाएगी कि किस तरह से आपको पेशेंट को हैंडल करना है?
0: देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, और इसमें फैमिली साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है,
1: जी
0: क्योंकि हमें जो है उसके सिम्टम्स को, जो मरीज़ है उसके सिम्टम्स को समझने में, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप थोड़े जो आप में एक अधीरता थी, आप अधीर थे अंदर से कि मेरे जो एक फैमिली मेंबर में क्या क्या चल रहा है, मेरे फैमिली मेंबर के साथ क्या क्या हो रहा है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सिम्टम्स वो है स्पेसिफिक बताता है, उसके बारे में बताता है, तो आपको थोड़ा तसल्ली हो जाता है कि ये जो बिहेव कर रहे हैं वो किसी बीमारी से कर रहे हैं, किसी दूसरी वजह से नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, निवारण है, आपको पता चलता है, उसके सिम्टम्स पता चलते हैं, और आपको कोपिंग स्किल्स भी सिखाता है कि आपको उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे बिठाना है, आपको खुद अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है।
1: आपकी बात सुनकर उन्होंने अभी लिखा है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, वो दवाई भी नहीं खाना चाहते, मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ?
0: देखिए, ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है, अभी WHO की रिपोर्ट आई थी कि साइकोसिस के 3 मरीज में से एक मरीज डॉक्टर की सलाह ले रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है,
1: बाकी जाना ही
0: प्रॉपर
1: नहीं चाहते।
0: ट्रीटमेंट करा रहा है, और जो है बाकी जाना नहीं चाहते, तो ये बहुत गंभीर, यहाँ बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये अगर सिम्टम्स उनको किसी भी तरीके से, अगर आप नहीं समझा सकते हैं, आपके किसी रिलेटिव के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, किसी भी तरीके से मोटिवेट करिए उनको कि ये सारी चीज़ें क्योरेबल हैं, उनको बताइए आप एक बीमारी से पीड़ित हैं और इसका इलाज है, और जब ये इलाज हो जाएगा तो हमारे जीवन में, हमारे
1: खुशियां
0: पूरी
1: खुशियां
0: फैमिली
1: होंगी।
0: में जो है खुशहाली आ जाएगी।
1: बिल्कुल। मृत्युंजय कुमार ने चेरकी गया बिहार से मैसेज किया है कि मैं एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूं और नवरात्रि की बधाई तो दी है, साथ में वो कहते हैं कि मैं आरोग्य शिक्षक के रूप में भी क्लास लेता हूं। विद्यालय में बच्चों के बीच सिज़ोफ्रेनिया की पहचान मैं कैसे कर सकता हूं?
0: देखिए, आपने कहा अगर बच्चों में थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है, हम कभी सोचने लगते हैं कि जैसे एडोलसेंट में हार्मोन्स चेंजेस वैसे ही होते रहते हैं, कभी हम उनको उत्तरदायी समझ लेते हैं कि ऐसा बिहेवियर इसलिए कर रहा है कि हार्मोन्स
1: टीन
0: चेंजेस हो रहे
1: टाइमिंग
0: हैं,
1: द टीनेज चल रहा
0: टीनेजर हैं,
1: है।
0: इस तरीके की जो है नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, पर इसमें, इस स्थिति में हमें सिजोफीनिया की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि इसलिए आपने देखा गया है कि ज़्यादातर सिजोफीनिया की जो पहचान हम कर पाते हैं वो 20 से 40 वर्ष की आयु में कर पाते हैं, किशोर अवस्था में इतनी जल्दी पहचान नहीं हो पाती है, हम उसका जो कॉज जो ढूंढते हैं वही कहते हैं कि हार्मोन चेंजेस की वजह से या टीन एज में ऐसा बिहेवियर होता रहता है, ये कॉमन है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं।
1: जी। सब सवालों में एक सवाल अब बहुत अहम उभर कर आया है कि आखिरकार स्किज़ोफ्रेनिया होने के कारण क्या है?
0: देखिए, सिजोफीनिया के होने के काफ़ी कारण हैं, अगर हम पहले हम जेनेटिक कारण देखेंगे, जेनेटिक्स भी होता है, तो ये रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि अगर किसी एक पेरेंट्स में है तो चांसेस हैं सिजोफीनिया के उसके बच्चों में 10 या 12% चांसेस बढ़ जाते हैं सिजोफीनिया होने के, अगर एक पेरेंट में है।
1: और अगर ग्रैंड पेरेंट में हो, दादा दादी नाना नानी में, तो पोतों में
0: वो
1: या
0: तो बात वही रही, अगर ग्रैंड पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स से फिर न्यू जनरेशन में आएगा तो हम उसी की बात कर

0: बल है,
1: जी
0: पर डोपामाइन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन सिजोफ्रेनिया। और दूसरा हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है एनलार्जमेंट ऑफ सेरिब्रल वेंट्रिकल्स। तो जो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स है, सेट ऑफ फोर जो है कैविटीज है जो भरी होती हैं, एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है उससे भरी रहती हैं, और ये जो वेंट्रिकल्स हैं दे प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू द न्यूरल स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन्स। जब हम MRI या दूसरे तरीकों से देखते हैं, ये पाया गया है, रिसर्च स्टडी में भी पाया गया है कि ये ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है वेंट्रिकल्स, तो उनमें भी सिजोफ्रेनिया के चांसेस ज्यादा हैं।
1: अभी तक तो आपने जो भी कारण हमको बताए हैं वो हैं जो हमारे अपने एफर्ट से परे हैं,
0: जी
1: हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं
0: है। जी जी,
1: अगर ये सिजोफ्रेनिया की बीमारी अगर हमें आई है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या तो कुछ केमिकल अंदर प्रॉब्लम हुआ है या फिर जेनेटिकल।
0: जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। पहले हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को थोड़ा और कर लेते हैं। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में एक और चीज रह गई, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बच्चे में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या बच्चे का जो वेट है बहुत कम होता है, और कभी कभी क्या होता है डिलीवरी के समय जो डिप्राइवेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, उससे भी जो है सिजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे में। अब हम जैसे आपने कहा कि हमारे वश में नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं। अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं, स्ट्रेस को कैसे कोप अप किया जाए, स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हम सीखते हैं तो हम जो है स्ट्रेस से सिजोफ्रेनिया से बच सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेसफुल इवेंट्स जैसे कभी क्या होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, बच्चे की बच्चा माँ से बहुत प्यार करता है, माँ का अचानक देहांत हो जाता है, या किसी भी पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, या दूसरे कोई इमोशनल ट्रॉमा है, वो भी सिजोफ्रेनिया को जो है बढ़ावा देता है।
1: देखिए, और क्या कारण हो सकते हैं सिजोफ्रेनिया होने के जो एनवायरमेंटल इश्यूज में आएंगे?
0: देखिए, फैमिलीज में ये देखा गया है कि पुअर कम्युनिकेशंस है, आपस में लोग इंटरेक्शंस नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरेक्शंस कर भी रहे हैं तो वहाँ जो इंटरेक्शन स्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें क्रिटिसिज्म है, हॉस्टिलिटी है और एक्सेसिव इमोशनैलिटी है। तो हमें ऐसे जो इंटरेक्शन स्टाइल है बचना चाहिए, और कभी भी जो चाइल्ड की और मदर की जो रिलेशनशिप है या चाइल्ड और पेरेंट्स की रिलेशनशिप है वो बहुत मधुर होनी चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम आगे चल के उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, जिससे वो मनोरोग और स्ट्रेस से बच सकते हैं। और फैमिलीज़ में हमने ये भी देखा गया है कि जो फैमिलीज़ हैविंग लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनमें सिजोफ्रेनिया या मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा पाए जाते हैं।
1: ओके, अभी पीछे हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स की बात कर रहे थे।
0: जी,
1: हमने पॉजिटिव सिम्टम्स तो पूरा कवर किया, लेकिन नेगेटिव हमारे बीच में क्वेश्चंस की वजह से रह गया था, तो मैं चाहूंगी एक बार आप उसको वापस कंटिन्यू करें।
0: हाँ, देखिए, पॉजिटिव सिम्टम्स तो हमारे हो गए थे, जिसमें हमने डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर बताया था। अब अगर हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं कि जो डिक्रीज नॉर्मल फंक्शनिंग को डिक्रीज करते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमने क्या बताया कि वो इंक्रीज करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को, और नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं डिक्रीज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में है कि जिसे सिजोफ्रेनिया है उसमें का जो फेस होगा वो इमोशनल लेस होगा, उसमें कोई एक्सप्रेशन
1: नहीं
0: होंगे, कोई भाव नहीं होंगे, कोई आईज कांटेक्ट नहीं देगा, ब्लैंक होगा बिल्कुल, वो किसी व्यक्ति को आईज कांटेक्ट नहीं देना चाहेगा, इसे हम फ्लैट इफेक्ट कहते हैं। फिर आता है दूसरा, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। पॉवर्टी ऑफ स्पीच में है, अगर आप उससे बोल रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं,
1: उन्होंने
0: तो वो बड़ा लैप्स दे रहा है, आफ्टर ए लॉन्ग लैप्स वो आपके जवाब देगा, क्विक प्रश्न का जवाब देता है, और वो भी बहुत बहुत ही छोटा जवाब, और कभी कभी तो जवाब वो देगा ही नहीं, बहुत कम बोलेगा, और जितना भी आप बुलवाने की उसे कोशिश करेंगे उसका हाँ या ना में उत्तर होगा, तो इसे कहते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच। फिर हम तीसरा इसमें सिम्टम्स है लॉस ऑफ मोटिवेशन, कि लाइफ में कोई मोटिवेशंस नहीं, कोई सेल्फ केयर नहीं, ऑफिस जाना बंद कर देगा, अगर बच्चा है तो वह स्कूल जाना बंद कर देगा ना।

0: आएगा भी नहीं, एक कमरे में पड़ा रहेगा, अपनी जो सेल्फ केयर हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखेगा,
1: उमंग नाम की जीवन में कोई चीज ही
0: कोई मोटिवेशन ही नहीं रह गया, तो वो अपना सेल्फ केयर भी नहीं करेगा
1: जी,
0: वो सोशल पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाना पसंद करेगा, एक आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा। अब चौथा आता है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर, तो इसमें यह भी देखा गया है कि बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है, एक जगह इंसान पड़ा रहता है और बिल्कुल जो इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस है वो बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल खुश नहीं रहता आदमी, बहुत उदास सा रहेगा, तो और उसका जो दृष्टिकोण है सभी चीज़ों के प्रति उदासीन हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपने ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे नेगेटिव सिम्टम्स में आती हैं।
1: रंजन लाल साहब की उम्र 50 वर्षीय है, कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कोई कुछ बोलता है तो बात में बहुत गुस्सा आ जाता है और वही बात फिर दिन रात मेरे अंदर चलती रहती है, क्या इसका भी कोई कनेक्शन है किसी मानसिक विकार या बीमारी से?
0: देखिए, इस पे तो आपको एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दो चीज़ों पे काम करना है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने एंगर मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था, तो ऐसा कोई प्रोफाउंड सीवियर कोई मेंटल इलनेस नहीं है आपको, आप थोड़ा एंगर मैनेजमेंट पे काम कीजिए।
1: हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जाना कि क्या है, क्यों हो सकता है, सिम्टम्स क्या है और अमूमन कारण क्या होते हैं। अब जो मेरा सवाल है वो ये है, क्या इससे उबर पाना, इससे ठीक हो जाना, निजात पाना संभव है?
0: देखिए, आज बहुत एडवांसमेंट है और साइकोथेरेपी काउंसलिंग है बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रही है, और अगर जो मरीज है टाइम पर डॉक्टर की सलाह लेता है, डॉक्टर के पास आता है और अपना ट्रीटमेंट कराता है, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया में ये देखा गया है कि लोग जैसे इसमें डिल्यूजन वाली स्थिति होती है, हेलुसिनेशंस वाली स्थिति होती है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, लोग इसे विचक्राफ्ट समझने लगते हैं, कोई जादू टोना समझने लगता है, तो आप सब लोगों से विनती है कि चक्कर में ना पड़ें, ये कोई विचक्राफ्ट या जादू टोना नहीं है, ये एक बीमारी है, तो आप इसका प्रॉपर टाइम से इसका इलाज कराएं, अगर टाइम से इलाज कराएंगे, हाँ इसका जो इलाज थोड़ा लंबे समय तक चलता है, कई हमने मरीज देखे हैं कि बीच में ही अपना ट्रीटमेंट जो है डिसकॉन्टिन्यू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ट्रीटमेंट आप पूरा करवाएं तो आप देखेंगे कि इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और आप इससे जो है छुटकारा पा सकते हैं।
1: मतलब 100% शत प्रतिशत निजात पाने के चांसेस हैं अगर हम अपना लगातार ढंग से डॉक्टर के कहे अनुसार अपना इलाज कराएं तो।
0: जी बिल्कुल।
1: जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है उस समय जो उनके परिवार वाले हैं उनके लिए आपके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, क्योंकि इसमें जब हम परिवार की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि परिवार वाले भी कैसी गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मरीज को हैंडल करना जो काल्पनिक दुनिया में रहता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे में जो साइकोथेरेपिस्ट हैं काउंसलर हैं वो फैमिली साइकोथेरेपी भी करते हैं और इसमें बताते हैं कि आपको मरीज को कैसे हैंडल्स करना है, उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे टिप्स देते हैं, योगा मेडिटेशंस करवाते हैं और उनका जो संबंध है आपस में, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं जो आपका इंट्रैक्शन स्टाइल्स है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो टॉलरेंस पावर बहुत कम हो चुकी होती है, तो आप में कोशिश करते हैं कि आपकी टॉलरेंस पावर बढ़े, आपका इंट्रैक्शन स्टाइल बढ़े, आपका और मरीज का जो संवाद है वो एक ऐसे स्तर पर आ जाए ताकि आप दोनों एक दूसरे को भली भांति जाने समझें।
1: स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को क्या अधिकतर दवाइयां दी ही जाती है या केवल काउंसलिंग, ये जैसे आपने कहा कि साइकोटिक थेरेपी से भी फर्क पड़ सकता है?
0: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया में जो टाइप ए स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसमें हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं तो उसमें दवाइयां बहुत ज़रूरी हैं, कि दवाइयों के साथ काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो दवाइयां और काउंसलिंग साइकोथेरेपी साथ साथ चलनी चाहिए तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
1: इंद्रजीत का हमें मैसेज आया है दिल्ली से, उनका एक सवाल है, कहते हैं मैं मंगोलपुरी में रहता हूँ, मेरी बिटिया 25 वर्षीय है, वो बार बार अपने हाथ धोती है, अपने कमरे में ही रहना पसंद करती है और किसी भी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या क्योर है?
0: देखिए, अगर बार बार हाथ धो रही है तो आप समझिए कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और ये ओसीडी है, ये क्योरेबल है, तो आप जल्दी किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट को दिखाइए।
1: जैसे अभी यहाँ मुझे लगा थोड़ा डायग्नोसिस का प्रॉब्लम है
0: जी।

0: तो मुझे लगता है आम तौर पे हम घरों में हमें डायग्नोसिस करना नहीं आता
1: जी, जी.
0: तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डायग्नोसिस पर आप क्या कहेंगे?
1: ये आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस फील्ड में यही है कि डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है. तो जो DSM-5 है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो उसके अनुसार 3 सिम्टम जैसे हमने बताए, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच, अगर 3 सिम्टम्स में से अगर 2 सिम्टम्स इसमें है और वो 6 महीने से अगर ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, तो आप समझिए कि डायग्नोज हो जाता है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया है. पर ICD भी इसी के बारे में डायग्नोज करता है. ICD होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज. तो ICD-10 के हिसाब से यही 3 सिम्टम्स हैं. 3 सिम्टम्स में से 2 सिम्टम्स ज़रूर होने चाहिए, पर इसमें अवधि का डिफरेंस है. जहाँ DSM-5 जो है ये रिकमेंड करता है कि 6 मंथ्स ये सिम्टम्स चलने चाहिए, वहीं ICD-10 ये कहता है कि अगर 1 महीने भी ये सिम्टम्स चल रहे हैं तो डायग्नोस कर लिया जाता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया से व्यक्ति पीड़ित है.
0: तो इस बात से ये अंदाजा क्या हम लगा सकते हैं कि जितना जल्दी अगर इस बीमारी को डायग्नोस कर लिया जाए उतना फास्ट इसका निजात हो सकता है?
1: देखिए, जितना जल्दी अगर हम पकड़ लेते हैं सिम्टम्स और डायग्नोस कर लेते हैं, नो डाउट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और ट्रीटमेंट भी इतना लंबा नहीं चलता है.
0: अब हम ट्रीटमेंट की जैसे बात कर रहे थे, तो कितने तरह के ट्रीटमेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया में अवेलेबल हैं?
1: देखिए, मेडिकेशंस के जरिए भी हम इसमें जो है एंटीसाइकोटिक मेडिसिंस भी देते हैं, जिसमें जो है क्लोज़ेपाइन आजकल इंडिया में बहुत दी जा रही है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल भी रहा है. और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी दी जा रही है, इसमें जो है करंट पास किया जाता है ब्रेन में, और ये 8 से 12 बार दी जाती है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को, और हफ्ते में सिर्फ ये 1 या 2 बार ये ट्रीटमेंट होता है. इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और ये उस केस में ज़्यादा है जहाँ कैटेटोनिक स्टूपर है. कैटेटोनिक स्टूपर मतलब कि बिल्कुल जो है इमोबिलिटी है, बिल्कुल इंसान जो है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और जैसा एक स्थान पे जहाँ वो बैठा है, खड़ा है, वैसे ही बैठा रहता है, खड़ा रहता है. तो ऐसी कैटाटोनिक स्टूपर में पोजीशंस हो जाती है, और अगर कैटाटोनिक एक्साइटमेंट फेज में होता है तब भी उस केस में भी जो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज जो है बहुत अच्छी प्रूव हो रही है. और इसके अलावा हमारे पास जो है साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन पे भी हम काम करते हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, हम उसे ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल स्किल सिखाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसको सेल्फ केयर के बारे में बताते हैं, सोशल पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाते हैं और मोटिवेट करते हैं कि वो फॉलो करें, और उसको एक्टिविटी बेस्ड थेरेपीज करवाते हैं जिससे कि उसका मोटिवेशन बढ़े और वो काम करने के लिए तैयार हो जाए.
0: जो अभी आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का बताया, ये जो आपने और तरीके बताए, एक पेशेंट या उसके घर वालों के लिए उसको कैसे पता चले कि इसमें ये दिया जाएगा, या जो सामने डॉक्टर है या जो सामने साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये सजेस्ट करा है? क्योंकि पेशेंट को इतनी समझ नहीं और मन में एक वहम, एक डर आ सकता है कि इससे कहीं चीज और बिगड़ तो नहीं जाएगी. तो किस लेवल पर आकर ये वाले ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ये कैसे तय हो?
1: देखिए, मैं ये बता दूं कि जो आपने पूछा कि इसको भी कैटेगरी सिम्टम्स के हिसाब से सारे कैटेगराइज किया जाता है, जैसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया होता है अगर डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया होता है अगर डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, जो हम सिम्टम्स में हमने एक्सप्लेन किया है, तो उसे डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में रखा जाता है. ठीक है, फिर ये आपका आता है रेजिडुअल, जो लेफ्ट ओवर सिम्टम्स बच गए हैं, यानी कि जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो रेजिडुअल्स में आ जाते हैं. और एक होता है कैटेटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें या तो एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती है या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी की स्टेट आ जाती है, कि जिसमें जहाँ बंदा बैठा है, एक अगर हाथ वो कुर्सी पर अगर पीछे करके बैठा है तो उसी अंदाज में वो काफ़ी उसी पोजीशन में काफ़ी घंटों तक बैठा रहेगा. तो इसे कहते हैं, जहाँ भी साइकोमोटर डिस्टर्बेंस होती हैं उसे कैटाटोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसे कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं. और ये कैटेगराइज करके सिम्टम्स देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं.
0: योगेश जी, जिस तरह से हम और आप स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक और चलते ही रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं से फाइनली क्या कहना चाहेंगे।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल इलनेस है, अगर हम शुरू से कई प्रिवेंटिव मेजर्स लें, अच्छा योगा करें, ध्यान करें और सोशल पार्टिसिपेशंस करें, हॉबी कल्टीवेट करें, तो हम देखते हैं। अगर धूप लें, आजकल मैंने ये देखा है कि जो ऐसी कल्चर हो गया है कि लोग धूप नहीं ले रहे हैं, बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आने लगी हैं। जो मैग्नीशियम्स हैं, B12 की बड़ी कमी आ गई, एक रिसर्च के मुताबिक B12, B6, B8 ये सब भी रेस्पॉन्सिबल है, इनकी डेफिशिएंसी भी रेस्पॉन्सिबल है सिज़ोफ्रेनिया के लिए। तो हम अब देखें हमारे शरीर में इन विटामिन्स की कमी तो नहीं हो गई है, तो ये सुनिश्चित करते रहें कोई विटामिन्स की कमी ना हो, आउटडोर गेम्स खेलें, योगा करें, मेडिटेशंस करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे विनती करूँगा, और स्मोक ना करें, ड्रिंक ना करें, तो मैं सबसे विनती करूँगा ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, एक सात्विक जो है आप लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच। मैं और मेरे श्रोता हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप स्टूडियो आए और आपने हमें स्किज़ोफ्रेनिया जैसी जो एक मेंटल विकार है उसके बारे में इतनी तफ्तीश से बताया और पूरा एक खाका खींचा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब से चंद ही लम्हों में खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोज़ा मनासिक हज का आगाज हो गया है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से शदीद तौर पर लड़ना चाहते हैं। कल नई दिल्ली में अमरीका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका को दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त न करने के बारे में हमेशा वाज़े रहना चाहिए और इसी वजह से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनका तआवुन नहायत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी आलमी मईशत को दरपेश खतरात को ख़त्म करने और दुनिया को मजीद मौके फराहम करने में है। वजीर खारजा ने कहा कि बहुत से मौके ऐसे होते हैं जिनसे दोनों मुल्कों को बहुत से मैदानों में मौसर दिफाई शराकतदार बनने के मौके मिलते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस दौरे से मौजूदा दौर में भारत अमरीका ताल्लुकात की अहमियत का इजहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों की पायदार शराकतदारी को मजीद फरोग देने का एक रास्ता कायम किया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड्स होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। बकिया पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनक़द की जाएगी। इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज़मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गौर को फोन किया। उन्होंने ये फोन कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में अमरीका की आजादी के 250 साल मुकम्मल होने की तकरीब के दौरान किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहां तक कि उन्होंने खुद को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफीर ने अपने फोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वजीर खारजा एस जय शंकर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफीर सर्गियो गौर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह रायजनी अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत के 4 रोजा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वजीर आजम मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी हुसूलियाबी की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और ये मुआहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई मुआहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा मुआहदा ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेक ख्वाहिश का इजहार किया है कि फितरत की रहमत, सूर्य देवता की तवानाई और बारिश की नेमत से हर एक की जिंदगी में खुशी और खुशकस्मती आए, जिससे हर एक की जिंदगी खुश और खुशहाल बने। वजीर आजम ने संस्कृत के एक मकूले को दोहराया, जिसमें ये पुरुम्मीदी जाहिर की गई है कि दुनिया हमेशा सरसब्ज व शादाब और खुशहाल रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोजा मनासिक हज का आगाज हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज्यादा आजमीन हज सऊदी अरब में मक्के मौजमा से मिना पहुंच गए हैं। वो मिना में रात के क्याम के बाद कल सुबह वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आजमीन फरीज हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा और उनके आइंदा तकर्रुर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर जनाब वर्मा ने इस अज़्म का इजहार किया कि भारत दोनों ममालिक के अवाम के बाहमी मफाद और मुश्तरका खुशहाली के लिए बांग्लादेश के साथ कसीर जहती तआवुन को मजीद फरोग देने का ख्वाहिशमंद है। यूक्रेन में कीव पर रूस के एक हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने ड्रोन और मिसाइल के एक बड़े हमले के दौरान अपने ताकतवर आवाज से तेज रफ्तार ओरिजनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए, जो 4 साल से जारी जंग में हथियारों का 3री बार मुबैना इस्तेमाल है। यूक्रेन हुकाम ने बताया कि इस शदीद फजाई हमले से पूरी राजधानी की इमारतों को नुकसान पहुंचा है और 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। कांगो के हुकाम ने कहा कि मुल्क के मशरिक में जारी एबोला वबा के सबब मुश्तबा केसेस की तादाद 900 अफराद से ज्यादा हो गई है। कांगो के मुवासलात की वजारत ने कल एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 904 मुश्तबा केसेज हैं और 119 मुश्तबा अमवात हो चुकी हैं। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि इस वबा के फूट पड़ने से कांगो के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, अलबत्ता इस बीमारी के आलमी सतह पर फैलने का खतरा कम है। ओस्लो में

0: पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर्स 4 गेंद पर महज 163 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 203 रन बनाए थे। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। कुलदीप यादव को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। एक और मैच में वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने मेजबान मुंबई इंडियंस को 30 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। मुंबई इंडियंस मुकर्रा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोज़ा मनासी के हज का आगाज हो गया है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

नागिन फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की थीं। हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नज़र है मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दीदी।

आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम था इंसान जाग उठा। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज़ों में समात फरमाइए। ये नगमा हमने लिया है वक्त फिल्म से।

0: फिल्मी दुगानी आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आपके खिदमत में नशर किए जा रहे हैं। प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त है तारे अख्साज का। आज का मौजू है दाग दहलवी। मारूफ शायर दाग दहलवी के यौम पैदाइश की मुनासिबत से आज का तारे अख्साज नशर किया जा रहा है।
1: नाजिम यार जंग, दबीरुद्दौला, बुलबुल हिंदुस्तान, फसीहुल मुल्क, मिर्ज़ा दाग दहलवी वो अजीम शायर हैं जो अपने फ़िक्र फ़न, शेर व सुखन और ज़बान व अदब की खिदमात की बदौलत उर्दू के बाकमाल और माहिर इल्म फ़न उस्ताद तस्लीम किए जाते हैं। वो दहलवी रवायात के परवरदा और दिल्ली की ज़बान व बयान के अजीम नुमाइंदे और मखसूस रंगो आहंग के अमीन थे। उनकी पैदाइश 25 मई 1831 को दहली के चांदनी चौक के कूचे में हुई, जिसे बाद अज़ां कूचा उस्ताद दाग के नाम से जाना गया। दाग की वालिदा वज़ीर बेगम बहादुर शाह जफ़र के बेटे और वली अहद मिर्ज़ा फखरू से मंसूब थीं। चुनांचे दाग का लड़कपन और अहद शबाब क़िले मौला में बड़े नाज़ो नाम के साथ गुजरा और वहीं बाकायदा उनकी तालीमी सिलसिले का आगाज़ हुआ। फ़न ख़त्ताती, खुशनवीसी, सपागिरी, तीरंदाजी और असबगिरी में महारत हासिल की। महवशों के दरमियान रहकर हुस्न व इश्क की सरमस्तियों और शोखी व शरारा से हज़ उठाया और इश्क व हुस्न के कैफ़ज़ा माहौल में परवान चढ़े। चुनांचे यही रंग उनके कलाम का तुर्रे इम्तियाज़ ठहरा। दाग की शायरी में शबाब की रंगीनी, अय्याशी व हवसनाकी और खुल खेलने के अंदाज के पस मंज़र में उनकी ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बा शामिल हैं जो उनकी क़िले मौला की ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। दाग ने उनके इजहार में एक ख़ास इनफरादियत और कैफियत पैदा कर दी है। दाग की शायरी का आगाज़ गज़लगोई की तारीख के अहद ज़र्री में हुआ, जहाँ एक तरफ ज़ौक उस्ताद बादशाह होने की हैसियत से एक ख़ास मकाम रखते थे, वहीं मिर्ज़ा गालिब अपनी फ़लसफियाना शायरी की बदौलत हर ख़ास आम में मकबूल थे। अलावा अजीं दहली में बाकमालों और हुनरमंदों का एक तवील सिलसिला था जो अपने वजूद से दहली की महफिलों को चार चांद लगा रहा था। ऐसे दौर में दाग ने अपनी इनफरादी आवाज़ में ज़माने की रविश से हटकर शायरी की इब्तिदा की और हर खास आम को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। दाग की शायरी के अहम औसाफ दहलवी ज़बान की आबियारी और मामलात इश्क कहे जा सकते हैं। मामलात इश्क में महबूब से छेड़छाड़, तानो तशनी, शोखी व शरारत, जिंदा दिली और किसी कदर जिनसी मौजूआत अहमियत के हामिल हैं। वो खुशबाश, हंसूड़, बजला संज और ऐशो इशरत में मस्त रहने वाले इंसान थे। उनके अशार से उनके मखसूस मिजाज की अक्कासी होती है। पूछे कोई तो हज़रत वाइस से इतनी बात, ऐसे ही थे जनाब भी अहद शबाब में। नहीं मरने का अपने गम, ये गम है कि फिर आना ना होगा इस जहां में। वक्त आखिर हुआ मगर ए दाग, हवा से ज़िंदगी नहीं जाती। दाग माशूक के साथ खुददारी, तनतने और वक़ार से कलाम करते हैं, जिसकी वजह से इश्क को अज़मत और आशिक के किरदार को वक़त मिली है। दाग हुस्न की अज़मत के कायल हैं मगर आशिक को सरापा न्याज कर देने के कायल नहीं। उन्हें आशिक की ज़ात पर फ़ख्र है और उनकी गज़लों में एक बावक़ार और अनापरस्त आशिक की तस्वीर उभर कर सामने आती है। जवाब इस तरह से भी फिलफौर होगा, दबे आपसे वो कोई और होगा। नारवा कहिए, ना सज़ा कहिए, कहिए कहिए मुझे बुरा कहिए। क्या मिलेगा कोई हंसी न कहीं, दिल बहल जाएगा कहीं न कहीं। दाग न फ़लसफ़ी थे और ना ही सूफ़ी और ना ही वो कोई बड़ा नज़रिया हयात ही रखते थे। वो शायर थे और वो भी जज्बात व एहसास के शायर। उन्होंने अपनी गज़ल में इश्क़िया जज्बात व एहसास का जिस अंदाज़ में

0: किया है वो काबिल गौर भी है और काबिल दाद भी। वह दुनिया की लज्जतों के रमशनास थे, चुनांचा वही उनकी कारफरमाइयों का मरकज़ो महवर थीं। दुनिया के मुकाबले उकबा की उन्हें ज़्यादा फ़िक्र न थी। क्यों आदमी को आलम बाला की हो हवस, बढ़कर नहीं ज़मीन से कुछ आसमां की सैर। फरिश्ते भी देखें तो खुल जाएं आँखें, बशर को वह जलवे दिखाए गए हैं। दाग की शायरी का दूसरा और अहम वस्फ गज़ल में ज़बान और मुहावरे का बरजस्ता और दुरुस्त इस्तेमाल है। दाग की शायरी में बहसियत मजमूई व ज़बान और लबो लहजा मिलता है जो बुनियादी तौर पर अहल ज़बान का होना चाहिए। दाग के अक्सर अशार बोलचाल की ज़बान की उम्दा अक्कासी करते हैं। जाहिर है कि यह ज़बान दहली की रोज़मर्रा की ज़बान है, चुनांचा दाग के अशार और मिसरे ज़बान की बरजस्तगी के सबब ज़रबुल अमसाल की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। हमने उसके सामने पहले तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दाग कहते हैं जिन्हें देखिए वो बैठे हैं, आपकी जान से दूर आप पे मरने वाले। कलाम दाग की खूबी यह भी है कि अल्फाज की तरतीब और नशिस्त ऐसी होती है कि जिसकी नसर नहीं की जा सकती, और ये खूबी बड़ी मश्क और मेहनत से कलाम में दर आती है। दाग के कुलियात में ज़बान व बयान की ये खूबी अज़ौल ता आखिर जारी व सारी है, और ये वस्फ उन्हें उनके हम असरों में मुमताज़ बनाता है। दाग की शायरी का निशातिया आहंग इश्क की सरमस्ती, हुस्न परस्ती, बुलहवसी से मावरा, इश्क मजाजी की तलब और तड़प का गमाज है, और यही उनकी गजलिया शायरी का तुर्रा इम्तियाज है।
1: अभी आपने सुना प्रोग्राम तारीख साज, आज का मौजू था दाग दहलवी। आज मारूफ शायर दाग दहलवी का यौम पैदाइश है और इसी हवाले से ये प्रोग्राम पेश किया गया। मुकर्रर थे जनाब मजहर अहमद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
3: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
2: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
3: सोनू जी आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही

0: विकसित भारत है
1: जी
0: तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उससे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है, उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। चार प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जल है तो कल है। वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा कामों का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे गाँव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है। इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार ये हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे सम अप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जीराम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक एनविसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
1: जी बिल्कुल, ये आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आप बता रही है चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 20 जून तक की कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप, मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए। इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिश हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये एक वाइडर, या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे एकेडमिशियंस हो, या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए, ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाएं। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं, ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इससे अपेक्षा है।
1: रोहिणी जी, बेहतर व्यवस्था की ओर सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
0: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है जिससे कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक

0: आज मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और
1: जी
0: वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा, तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है, उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी, कि सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन आए अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली
1: जी,
0: मिलता रहे।
1: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात कही, यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8 से 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है, और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है। तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जी राम जी में अगर आप देखें सोनू जी,
1: जी
0: तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जी राम जी के लिए भारत सरकार ने किया है। तो इस 95,692 करोड़, दैट इज द बजट दैट
1: जी
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड, तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन की एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
1: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को, रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
0: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम ये रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं,
1: जी
0: ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, जिन्हें
1: जी
0: स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है, उनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी होती है। कई सारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स ने भी जो अध्ययन किए थे उसमें यह पता चला था कि कई बार ऐसी योजनाओं की वजह से कई बार किसान भाइयों को पीक एग्रीकल्चर सीजन जो बुआई कटाई का सीजन होता है उसमें कई बार एग्रीकल्चर के लिए जो है श्रमिक की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं यह बैलेंस करना बहुत जरूरी था कि एग्रीकल्चर को भी एडिक्वेट लेबर मिलता रहे और एट द सेम टाइम 125 दिन की गारंटी भी लोगों को दी जाए। इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए एक तरीके से यह 60 डेज का एक कैलिब्रेटेड पॉज जो है वह विकसित भारत जी राम जी में लाया गया है। यह 60 दिन जो है वह कंटिन्यूअस 60 दिन नहीं है, और ये राज्यों ने तय करना है कि उनके राज्य में कौन से समय पर बुआई कटाई एग्रीकल्चर का पीक सीजन होता है।
1: बिल्कुल
0: इसमें भारत सरकार का बिल्कुल ये नहीं है, राज्य ही खुद तय करेंगे कौन से 60 दिन होंगे जबकि उनके किसानों को श्रमिकों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए ड्यूरिंग दो 60 डेज नॉट कंटिन्यूअस यह कार्य कुछ देर तक जो है पॉज किए जाएंगे और उसके बाद जो है लोग फिर से उस पर एम्प्लॉयमेंट अवेल कर सकते हैं। तो एक तरीके से यह एक बैलेंसिंग है बिटवीन हमारे किसानों का कल्याण और श्रमिकों का कल्याण।
1: सो रोहिणी जी, आप कहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत जो अभी बदले हुए समय की मांग है उसके अनुसार बहुत कोऑर्डिनेशन है सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स और जो विलेज लेवल बॉडीज है, ग्राम सभा जैसे आप कह रही थी, उनके सभी स्तरों पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि ऑप्टिमम बेनिफिट मिले जो भी खर्च हो रहा है इस योजना पर उससे?
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा सोनू जी, जब विकसित ग्राम पंचायत पूछेंगे तो यह एक बहुत डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है कि हमारे पंचायतें जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है पंचायत, तो पंचायत ही इसका प्लान बनाएंगी, परंतु पंचायत ने प्लान बनाने के बाद यह प्लान जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे एग्रीगेट हो जाएगा, और पीएम गति शक्ति जैसे बहुत अच्छे टूल्स के माध्यम से जब यह एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक प्लान बनेगा और नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के माध्यम से अगर हम और सभी स्टेट और सारे हितधारक अगर ये देख पाएंगे कि ऑन अ पर्टिकुलर डे एक दिन अगर हम ओपन करके हमारा डैशबोर्ड देखते हैं तो उसमें अगर पता चलेगा कि हर एक पंचायत में किस प्रकार के काम कौन से कैटेगरी के कहाँ तक आए हैं और उस पंचायत का विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो है वह कितने परसेंट तक एग्जीक्यूट हो गया है, तो इससे जो है फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही सुचारू रूप से हम पंचायतों को एक विकसित पंचायत की ओर बढ़ाने में सफल हो जाएंगे, रादर देन डूइंग सम एडहॉक वर्क्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत आ जाएगा, प्लान तरीके से हम कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है, जैसे एसेट डुप्लीकेशन होता है, कई बार एक ही काम को अलग अलग योजनाओं में दिखाकर उसमें प्लैरिटीज आ सकती हैं, तो हमने यह व्यवस्था की है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंश्योर करें कि कार्य बिल्कुल प्लान पद्धति से हो और किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो है मिसयूज ना हो।
1: रोहिणी जी बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के मजबूत संस्थागत प्रशासनिक तकनीकी और वित्तीय ढांचे के बारे में हमें बताने के लिए और ये बताने के लिए किस तरह से हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये सहायक होगा। बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद सोनू जी।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आज का सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदों से कहा है कि ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें। मगरबी एशिया में जारी कशीद के दौरान आज से सालाना 5 रोज़ा मनासिक हज का आगाज़ हो गया है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट सन 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से शदीद तौर पर लड़ना चाहते हैं। कल नई दिल्ली में अमरीका के आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त न करने के बारे में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए और इसी वजह से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनका तआवुन नहायत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी आलमी मईशत को दरपेश खतरात को ख़त्म करने और दुनिया को मज़ीद मौक़े फराहम करने में है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बहुत से मौक़े ऐसे होते हैं जिनसे दोनों मुल्कों को बहुत ज़्यादा मैदानों में मौसर दिफाई शराकतदार बनने के मौक़े मिलते हैं। अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो के दौरे का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस दौरे से मौजूदा दौर में भारत अमरीका ताल्लुकात की अहमियत का इजहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों की पायदार शराकत दारी को मजीद फ़रोग देने का एक रास्ता कायम किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कि फितरत की रहमत, सूरज देवता की तवानाई और बारिश की नेमत से हर एक की ज़िंदगी में खुशी और खुशकस्मती आए जिससे हर एक की ज़िंदगी खुशहाल और खुशगवार बने। वज़ीर आज़म ने संस्कृत के एक मकूला दोहराया जिसमें ये पुरुम्मीद जाहिर की गई कि दुनिया हमेशा सरसब्ज़ और शादाब और खुशहाल रहेगी। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमरीकी सफीर सरगे गौर को फ़ोन किया। उन्होंने ये फ़ोन कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में अमरीका के आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब के दौरान किया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ख़ुद को वज़ीर आज़म मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफीर ने अपने फ़ोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामाईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफीर सरगे गौर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह राय जनी अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत के 4 रोज़ा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वजीर आजम मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी जिसके बाद उन्होंने कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा कि ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी हुसूल वियाबी की उम्मीद कम है।

उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी माहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और ये माहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए माहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई माहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा माहदा ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा और ये माहदा साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की तरफ से किए गए माहदे से मुख्तलिफ होगा। क्वाड मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर ख़ारजा टिशमिची मोटकी और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अजय शंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये लीडर मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। मौजूदा इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुल अक़वामी उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। क्वाड ग्रुप भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान पर मुश्तमिल है और ये भारत बैरुल्काय खत्े में अमन व सलामती और इस्तेकाम पर ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत मजकूरा ग्रुप के मौजूदा सदरनशी होने के नाते इस मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। साल 2024 में अमेरिका में विल्मिंगटन में क्वाड की गुज्तर सरबरा मीटिंग में ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं ने भारत बैरुल्काय खत्े में बहरी सिक्योरिटी इश्तराक को वसत देने खातिर अहम इकदाम का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि फितरत के लामहदूद वसाइल सूर्य देवता की शक्ति और बारिश के आशीर्वाद से हर एक की ज़िंदगी मसरत खुशहाली आएगी। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि कुर्राए अर्ज़ हमेशा सरसब्ज़ और शादाब और खुशहाल रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी एशिया में इलाकई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब में मनासी के हज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज मीना में जमा हो रहे हैं। आज़मीन हज ने मक्का मुकर्रमा से मीना जाने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो रात मीना में गुजारेंगे और कल तेलबिया का दौरा वर्त करते हुए फजर की नमाज के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां हज का रुकन आज़म अदा किया जाएगा। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करने के लिए वहां गए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा और उनके आइंदा तकर्रुई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर जनाब वर्मा ने इस अज़्म का इजहार किया कि भारत दोनों ममालिक के आवाम के बाहमी मफाद और मुश्तरका खुशहाली के लिए बांग्लादेश के साथ कसीर जहती ताउन को मजीद फ़रोग देने का ख्वाहिशमंद है। तुर्किया की फसाद से निपटने वाली पुलिस ने कल दस्तबरदार होने वाली क़यादत से असल अपोजिशन पार्टी के हेडक्वार्टर खाली कराने की खातिर आंसू गैस के गोले दागकर ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसमें दाखिल हुई। इस वाक़े के बाद तुर्किया में बहरान किसी सूरतहाल पैदा हो गई है। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की इमारत के ऊपर आंसू गैस के गोलों का धुआं देखा गया, जबकि जो इस इमारत के अंदर थे वो शदीद नारेबाजी कर रहे थे और दाखिले के मकाम पर पुलिस पर चीज़ें फेंक रहे थे। ताहम इस कार्रवाई के दौरान किसी के ज़ख्मी होने की कोई ख़बर नहीं है। यूक्रेन में कीव पर रूस के एक हमले में दो अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने ड्रोन और मिज़ाइल के एक बड़े हमले के दौरान अपने ताकतवर आवाज़ से तेज़ रफ्तार और बैलिस्टिक मिज़ाइल इस्तेमाल किए, जो 4 साल से जारी जंग में हथियारों का तीसरी बार मुबैना इस्तेमाल है। यूक्रेन हुकाम ने बताया कि शदीद फ़ज़ाई हमले से पूरी राजधानी की इमारतों को नुकसान पहुँचा है, 70 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। कांगो के हुकाम ने कहा कि मुल्क के मशरक में जारी इबोला वबा के सबब मुश्तबा केसेस की तादाद 900 अफराद से ज़्यादा हो गई है। कांगो की मवासलात की वजारत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि 904 मुश्तबा केसेस हैं और 119 मुश्तबा अमरात हो चुकी हैं। आलमी सेहत तंजीम ने कहा कि इस वबा के फूट पड़ने से कांगो के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है, अलबत्ता बीमारी के आलमी सेहत पर फैलने का ख़तरा कम है। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबले के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज़ हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8:30 बजे होगा।
یہ نارویے شطرنج کا 14واں اور نارویے شطرنج خواتین کا 3را

0: टूर्नामेंट है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 200 रन का निशान रखा था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंदों में महज 163 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 203 रन बनाए थे। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। कुलदीप यादव को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए एक दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मेज़बान मुंबई इंडियंस को 30 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 205 रन बनाए थे। मुंबई इंडियंस ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बनाए। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी ना करें। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोज़ा मनासी के हज का आगाज़ हो गया है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट सन 2026 में आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं।

ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी ना करें। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोजा मनासिक हज का आगाज हो गया है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आप सुन रहे थे पहली मजलिस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। पहली मजलिस का वक्त अब इख्तिताम पजीर होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

साल था 1976। बॉलीवुड के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा के भाई कैलाश चोपड़ा एक फिल्म देवदास बनाना चाहते थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा को बतौर डायरेक्टर साइन कर लिया। प्रकाश मेहरा को कहानी को मॉडर्न तरीके से वो चाहते थे कि इस कहानी

को वो मॉडर्न तरीके से बनाए, लेकिन मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में ये फिल्म बंद हो गई। प्रकाश मेहरा ने देवदास की कहानी को अपने ही अंदाज में लिखा। उन्होंने राखी को एक पारो का नया रूप दिया, रेखा को चंद्रमुखी बना दिया और नाम दिया जोहरा। कहानी के हीरो का नाम था देवदास, जिनकी जगह लिखा नाम दिया गया सिकंदर। फिल्म का टाइटल हो गया मुकद्दर का सिकंदर। 27 अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा, विनोद खन्ना, राखी लीड रोल में थे। फिल्म की स्टोरी विजयकांत शर्मा और स्क्रीन प्ले विजय कौल और डायलॉग लिखे थे कादर खान ने। म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और गीतकार थे अनजान जी। प्रकाश मेहरा ने फिल्म का एक गाना जो अभी अभी आपने सुना, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, जिसे किशोर कुमार और लता दी ने गाया था, ये गाना यमन कल्याण राग पर बेस्ड था। मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म में वैसे तो 6 गाने हैं, लेकिन हर गाना एक से एक है। और भी बहुत सारी जानकारी, फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

कामना के रूप में थी, रेखा जोहराबाई के रूप में थी, रणजीत जेडी के रूप में थे, अमजद खान दिलावर और निरूपा राय फातिमा के रूप में नजर आई थी। इनके अलावा श्री राम लागू, गोगा कपूर, राम सेठी, दरवेश बाबा, कादर खान, ये सब ने अपनी उपस्थिति इस फिल्म में दर्ज कराई थी और इस फिल्म ने वो कामयाबी हासिल की जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। जी हाँ, मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म में हम आपको बता रहे थे कि 6 गाने थे, 2 गाने जो थे ओ साथी रे और मुकद्दर का सिकंदर, इनके 2-2 वर्जन हैं। एक और सबसे दिलचस्प बात थी कि ओ साथी रे इसमें जो किशोर कुमार ने गाया है एक और दूसरी बार गाया है आशा भोसले ने, और ओ साथी रे फिल्म की जो शुरुआत होती है उसमें राखी पर ये गाना पिक्चराइज किया जाता है और राखी के बर्थडे पर ये खाना बजता है जब अमिताभ बच्चन उनको गुड़िया देते हैं। अब दूसरी बार जो गाना होता है वो अमिताभ बच्चन जी गाते हैं तो स्टेज पर उनकी किशोर कुमार की आवाज़ सुनाई देती है और ये दोनों ही गाने जो थे वो फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी इनको मिला था और ये गाने एक तरीके से कह सकते हैं कि टूटे दिल आशिकी के दिल की, जो टूटे हुए जो आशिक होते हैं, दिल टूटे हुए उनकी दिल की ये पहली पसंद ये गाने थे। और ओ साथी रे गाना जब शुरू हुआ था तो अमिताभ बच्चन साहब को स्टेज पर अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक कहानी सुनानी होती है, वो सीन 16 पेज का था और ये लिखे थे कादर खान ने। जब अमिताभ बच्चन ने 16 पेज का ये सीन देखा तो वो चौंक गए, बोले कि इतना लंबा सीन मैं नहीं कर पाऊंगा। कादर खान जी को बुलाया गया, अमिताभ ने उनसे कहा कि आपने तो मुझे पूरी किताब दे दी है, पूरी किताब लिख के दे दी, मैं इसको कैसे करूंगा। कादर खान ने पूरा सीन सुनाया, अमिताभ जी ने उसे रिकॉर्ड कर लिया और यही सीन इतिहास बन गया। तो जब इस गीत की बात हो रही है तो हम आपको अब यही गीत सुनवाते हैं।

सिकंदर एक अनाथ लड़का है जो बचपन से ही समाज की उपेक्षा और तिरस्कार झेलता है। कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए वो बड़ा होकर एक सफल और अमीर इंसान बन जाता है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी रह जाती है जिसे धन दौलत भी पूरा नहीं कर पाती, और वो कमी होती है प्यार। सिकंदर बचपन से कौशल्या से प्रेम करता है लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। दूसरी ओर तवायफ जोराबाई सिकंदर से बेपनाह मोहब्बत करती है, मगर सिकंदर का दिल कहीं और बसा होता है। प्यार, त्याग और गलतफहमियों के इस त्रिकोण में कहानी आगे बढ़ती है और अंत में दर्शकों को भावुक कर जाती है। फिल्म का संगीत आज भी बहुत लोकप्रिय है और इसके गीत कहानी की जो गीत हैं वो कहानी की आत्मा बनकर उभरते हैं। ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से शामिल रही। फिल्म में रेखा ने जो किरदार निभाया था जोराबाई का, वो आज भी उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ अभिनय में गिना जाता है। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने कई सफल फिल्में दी, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की भावनात्मक कहानी और संगीत ने इसे भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया था और ये फिल्म उस दौर में कई सिनेमाघरों में लगातार महीनों तक चली थी।

ने आपको सुनवाया था सलामे इश्क मेरी जान। इसकी शूटिंग के दौरान रेखा ने जोहरा बाई के किरदार में इतना शानदार अभिनय किया था कि सेट पर मौजूद लोग उनके एक्सप्रेशन और अदाओं को देखकर दंग रह गए थे। कहा जाता है कि निर्देशक प्रकाश मेहरा को ये दृश्य इतना पसंद आया कि इन्होंने कई हिस्सों को पहले ही टेक में ओके कर दिया था। एक और रोचक बात मैं आपको बताती हूँ, फिल्म के कई भव्य सेट जो बनाए गए थे वो पुराने लखनऊ की नवाबी संस्कृति का एहसास देने के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे। जोहराबाई की जो कोठी थी उसके सेट पर की गई बारीकी से जो बारीक कारीगरी थी और जो सजावट थी वो इतनी नेचुरल थी, इतनी वास्तविक थी कि फिल्म देखने पर पूरा नवाबी माहौल जो था वो फील होता था। इसी तरीके से फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी शूटिंग बहुत भावनात्मक माहौल में हुई थी। जब अमिताभ बच्चन अपने अंतिम दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे तब सेट पर मौजूद कई कलाकार और कई टेक्नीशियन सच में भावुक हो गए थे क्योंकि फिल्म की कहानी का जो असर था वो सेट की यूनिट पर भी पड़ा था। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म एक फिल्म नहीं थी बल्कि भावनाओं का ऐसा कारवां है जो आज भी समय की धूल से अछूता है। आपके ढेर सारे संदेश भी आ रहे हैं, उनको मैं शामिल करूंगी फिलहाल इस गीत के साथ।

आज ढेर सारे संदेश हैं जिन्हें मैं संक्षेप में पढ़ूंगी क्योंकि वक्त कम है और संदेश बहुत सारे हैं, तो माफी भी चाहूंगी। विजय वीरंगांव गुजरात से अजीत भा अफसर प्रमीला जी जुड़े हुए हैं। बटिंगा रोड मंडी डावली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित और तानिया जी हमारे साथ हैं। विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवनगन कौशल हेमलता और डिम्पल जी जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है सतीश अनेजा विमल जी का चंडीगढ़ से आया हुआ है। देवशंकर तामुरी अजय देव तुषार देव रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से है। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ हैं। अनिल तामरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर दिलीप के साथ शिवाजी चौक कटनी से। हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हैं। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी आरती लवली जी हमारे साथ हैं। जगाराम साहू जी बबलू साहू नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। गोविंद वैश्य दिव्या सुमन कौशल परी कृतिका तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मसूर हसन हमारे साथ हैं। कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता पिपरिया से जुड़े हुए हैं। डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हैं। साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुँचा है सौरा श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान जी का। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोर्ड निखिल कांगड़ा जी हैं। और गोल मार्केट दिल्ली से सुनीता यादव सीमा नेहा प्रियंका जी हैं। पहाड़गल मुल्तानी ढांडा से निर्मोहन उषा मोहन टिलू नायक जी हैं। और ये संदेश हमारे पास बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद नेहा दीपक जी का आया है। परमीजीत कौर दिलवाग दिलजोत जी पंजाबी वाग दिल्ली से हैं। मोहम्मद सैद अवासी निगत परवीन श्रीनिवास सरफराज पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुँचा है बबलेश पवार जी का। ढेर सारी जानकारी के साथ पी एस नवानकर निर्मला जी नरवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं। सुरेश राठौड़ मंजुला जी हमारे साथ गांधीनगर गुजरात से जुड़े हुए हैं। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाघव जी जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन पीटीआई संसद मार्ग से जुड़े हुए हैं। कनाट प्लेस से माहिरा मलिक हिवा जी हैं।

जी का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा जी हमारे साथ हैं, ताज मोहम्मद जी हमारे साथ हैं, संजय साहू पुचियाल कला दुर्ग से हैं, भागवत वर्मा जी शांति देवी दतरेंगी से जुड़े हुए हैं, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी बबीता जी हमारे साथ हैं, गांव फरासी जार से राजकुमार डूंडी जी हमारे साथ हैं, संजय डिंगिया अपार डिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का हम ढेर सारा आभार व्यक्त करते हैं। और चलने से पहले हम आपसे इतना ही कहेंगे कि मुकद्दर का सिकंदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भावनाओं का ऐसा सफर है जो हर के दर्शकों को छू जाता है। इसकी कहानी, संगीत और कलाकारों का अभिनय से हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में शामिल करता है। कभी कभी इंसान मुकद्दर से तो जीत जाता है लेकिन अपने दिल से हार जाता है, और शायद यही सिकंदर की कहानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस फिल्म को जरूर देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा तो हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वक्त निकालिए, उस फिल्म को जरूर देखिए। फिलहाल अब वक्त हो रहा है कि मुझे आपसे अनुमति लेनी है, तो अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। 2:30 पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साहली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना ते पछमी उत्तर प्रदेश विच भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन विखे पदम पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वोच्च अदालत ने नीट प्रीख्या च वार वार हो रही गलतियां ते चिंता जाहिर की। कहा राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद तो सबक नहीं लिया। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग कल नवी दिल्ली च होगी। पेट्रोल की कीमत विच 2.61 रूपये ते डीजल की कीमत विच 2.71 रूपये प्रति लीटर का वाधा होया। अते मौसम विभाग वालों दिल्ली च अगले 3 दिन दौरान लू वगण बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भी लू की स्थिति बनी रहेगी। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और सीबीआई से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायात के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। आसाम असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया गया है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भी गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। बाकिया पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनक्किद की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल योम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। यह अवार्ड लोगों के गिराकद्र कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, समाजी काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत व सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: क्वाड मुल्कों के वज़रा खारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा पेनी वांग, जापान के वज़ीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ारत खारजा ने कहा है कि लीडर मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। मौजूदा इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैन अल-अक़वामी उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। क्वाड ग्रुप भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल है और ये भारत बैरुल काहिल खत्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत मस्कूरा ग्रुप के मौजूदा सदनशी होने के नाते इस मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। साल 2024 में अमरीका में वेलमिंगटन में क्वाड की गुज़श्ता सरबराह मीटिंग में ग्रुप के सरकर्द रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सिक्योरिटी इश्तराक को वसत देने की खातिर अहम इकदामात का ऐलान किया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने में खास तौर पर दिलचस्पी के हामिल हैं। कल नई दिल्ली में अमरीका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका को दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए।
3: हमें दहशत गर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वादे रहना चाहिए और इसलिए दहशत गर्दी से निपटने के मामले में हमारा इश्तराक इंतहाई अहम है। अवाम से अवाम के दरमियान रابطے भी हमारे ताल्लुकात में खसूसियत के हामिल हैं, क्योंकि इनसे दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी समझबूझ में मदद मिली है और इन्हें एक खास मकाम हासिल है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान के इनकाद में बार बार होने वाली कोताही पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ये बात मायूस कुन है कि इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ने पेपर लीक होने के पहले के तनाज़े से कोई सबक हासिल नहीं किया। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी और मरकजी जाँच ब्यूरो CBI से जवाब तलब किए हैं। इन दरख्वास्तों में मेडिकल दाखिला इम्तिहान के इनेकाद के लिए मौजूदा एजेंसी की जगह एक ज्यादा मजबूत और खुद मुख्तार इदारा कायम किए जाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करके उन सिफारिशात पर अमल दरामद की तफसीली जानकारी फराहम करे जो इसरो के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन की सरबराही वाली कमेटी ने मस्कूरा एजेंसी के कामकाज को असर नौ तरतीब देने के लिए पिछले साल की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आसाम सरकार ने आज रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया। मस्कूरा बिल में एक से ज्यादा शादियां करने पर पाबंदी आयद करने और लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की बात कही गई है। मस्कूरा बिल में कहा गया है कि इसका इतलाक आसाम में रहने वाले किसी भी दर्ज फहरिस्त कबीलों पर नहीं होगा। शादी के लिए मस्कूरा बिल में मर्दों की कम से कम उम्र 21 साल और ख्वातीन की 18 साल तय की गई है। कानूनी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए बिल में शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की तजवीज़ है, जो गुजारे भत्ते, मीरास और शरीक हयात के लिए दीगर कानूनी तहफ्फुज़ के ताल्लुक से अहमियत का हामिल रहेगा। रियासत के काबीना वजीर अतुल बोरा ने वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ऐवान में यकसां सिविल कोड आसाम बिल 2026 पेश किया। इस तरह यह बिल पेश करने वाली शिमाल मशरक में आसाम पहली रियासत बन गई है, जबकि मुल्क में बीजेपी की सरकार वाली ये ऐसी तीसरी रियासत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज रहें। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबायली हकूक खत्म नहीं होंगे।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: अजीम इनकलाबी शख्सियत राज बिहारी बोस के यौम पैदाइश पर वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि राज बिहारी बोस ने अपनी गैर मामूली तंजीमी सलाहियत के जरिए आज़ादी की जद्दोजहद में एक नई तवानाई पैदा की। मगरबी एशिया में इलाकई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब में मनासी के हज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आजमीन हज मीना में जमा हो रहे हैं। आज़मीन हज ने मक्का मुकर्रमा से मीना जाने के लिए अपने सफर का आगाज किया। वो रात मीना में गुजारेंगे और कल तलबिया का वर्द करते हुए फजर की नमाज के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां हज का रुकन आज़म अदा किया जाएगा। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,000 आज़मीन फरीजा हज अदा करने के लिए वहां गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में दिन का टेम्परेचर 44 और 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। इधर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। ऑस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट का बाजाब्ता आगाज भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात 8:30 बजे होगा। अपनी 13 साल की तारीख में पहली मरतबा ये सरकर्दा टूर्नामेंट स्टेवेंजर्स के बजाय शहर ऑस्लो में हो रहा है। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर।

सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और CBI से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। आसाम असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया गया है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भी गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Eichmann Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा

0: कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही

0: विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल

0: रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस फिल्मकार की जिसने प्रेम, रिश्तों और परिवार की कहानियों को भव्यता और भावनाओं के साथ बड़े पर्दे पर पेश किया, जिनका आज 25 मई को जन्मदिन भी है। और आपको थोड़ी सी हिंट ये दे दूं कि उनके पिता भी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की थी। तो ये सितारा कौन है आपको पहचानना है, और जब आप हमेशा की तरह पहचान लेते हैं तो पता है ना आपको क्या करना है, संदेश हमें भेज देना है। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल इस प्रोग्राम में प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। हमारे नए श्रोता जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार मैं फिर से अपना मेल आईडी बता दूँ। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। इस पर, इस माध्यम से आप हमारे सफ़र के हम सफ़र बन सकते हैं। तो बताइए आज हम किस सितारे को चुनकर लेकर आए हैं।

जी हाँ, इस गीत को सुनने के बाद आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम किस सितारे की बात कर रहे हैं। आज यानी कि 25 मई 1972 को जन्म हुआ था करण जौहर का। आपके संदेश वैसे बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पहचान गए थे, और क्यों ना पहचाने, इनके जो गाने हैं वो इस तरीके के गाने हैं कि जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते। करण जौहर, जिनका बचपन फिल्मी माहौल में बीता था, क्योंकि इनके पिता का नाम था यश जौहर, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की थी। करण जौहर ने मुंबई के ग्रीन लॉन्स स्कूल और एचआर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उन्हें फिल्मों, संगीत और कहानी कहने का बड़ा शौक था। करण जौहर ने फिल्म जगत में शुरुआत अभिनेता के रूप में की थी, और 1995 की एक ऐतिहासिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, याद है ना आपको ये फिल्म। इस फिल्म में एक छोटे से किरदार में वो दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की तरफ अपना कदम बढ़ाया, और 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है। इस फिल्म ने रातों रात उनको सफल निर्देशकों की कतार में लाके खड़ा कर दिया, और फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, और आज भी इसे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में गिना जाता है। तो आप करण जी के बारे में, या फिर इनकी जो फिल्में हैं उनमें से आपको कौन सी ज़्यादा फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है, आप हमें अपने संदेशों के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं इन्हीं की एक और फिल्म, जिसका अभी हमने जिक्र किया, कुछ कुछ होता है का वही टाइटल सॉन्ग।

कुछ कुछ होता है। जी हाँ, 1998 में ये फिल्म आई थी और इसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दी, जिनमें शामिल थी कभी खुशी कभी गम जो कि 2001 में रिलीज हुई थी, कभी अलविदा ना कहना 2006 में आई थी, और 2010 में आई थी माई नेम इज़ खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो 2012 में आई थी, दिल है ए दिल है मुश्किल 2016 में, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी 2023 में। अपने बैनर धर्म प्रोडक्शन के माध्यम से करण जौहर ने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया, उनके बैनर से अनेक नए कलाकारों और निर्देशकों को भी मौका मिला। जी हाँ, करण जौहर ने कई ऐसे कलाकार हमें इस फिल्म इंडस्ट्री में दिए जो उन्हीं की देन है। सुनते हैं उन्हीं की एक और खूबसूरत सी फिल्म कल हो ना हो से ये गीत।

आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम एक ही कलाकार, और आज हम चुनकर वो सितारा लेकर आए हैं जिन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्म दी, जिनका आज जन्मदिन भी है, करण जौहर। जी हाँ, करण जौहर को केवल फिल्म निर्देशक ही नहीं बल्कि एक सफल टीवी होस्ट के रूप में भी जाना जाता है। उनका चर्चित चैट शो कॉफ़ी विद करण वर्षों से दर्शकों का पसंदीदा रहा है। हो सकता है कि आपने भी इस शो को कई बार देखा हो। करण जौहर को कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है।

फिल्म राजी का ये खूबसूरत सा दिल को छूने वाला गीत हर किसी की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। और आपको बता दें कि करण जौहर, जिन्होंने एक से एक फिल्में दी थी, हिंदी सिनेमा में एक सफल निर्देशक और निर्माताओं में वो शामिल हैं। और इसके साथ ही उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी हैं, शायद आप जानते हैं, और हो भी सकता है कि शायद आप नहीं जानते हो। तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि इनका असली नाम है राहुल कुमार जौहर। ये जुड़वा बच्चों यश और रूही के पिता हैं। 2004 में इनके पिता यश जौहर के निधन के बाद उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली और धर्मा प्रोडक्शन को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया। हाल ही के वर्षों में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन के विस्तार के लिए कई व्यावसायिक फैसले भी लिए हैं। तो देखते हैं कि अब इनके पिटारे में से और कौन कौन सी फिल्में निकलने वाली हैं। फिलहाल तो इन्हीं की एक खूबसूरत सी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

बीरन गांव गुजरात से जीत भापसर प्रमिला भापसर जी जुड़ चुके हैं। सुदर्शन मुखी नीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार जी हैं। और अगला जो संदेश है पहुँचा है ये इंद्रभान सिंह ने पहुँचाया है हम तक, कहाँ से लेकिन ये जगह इन्होंने नहीं लिखी, शायद जल्दी जल्दी में रह गया है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन वगैरह से मोहम्मद इसाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक अफरीन कौसल मोहम्मद जी हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा जी हैं। ईड़ामणि वर्मा तदरेंगी भाटापारा से हैं। नरवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर निर्मला विशाल और मलकापुर से नारायण इंगले सोपान ताइडे जी हैं। पहाड़गंज मुल्तीढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन और टिल्लू नायक जी हैं। कैथल हरियाणा से मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी प्रमोद कुमार डूंडी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम इंदिरा सार्थक सचिन नंदिनी शर्मा जी का है। मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान आवास और परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। संजय डिगिया नमन डिगिया अपार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन है हमारे साथ में। अगला संदेश हमारे पास पहुँचा है शंकर जाधव जी का और मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी कुछ और संदेश हैं जिनको हम शामिल करेंगे कुछ देर बाद। फिलहाल इस गीत को आप सुन ही रहे हैं। तो दोस्तों सपनों को रंग देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन करण जौहर ने अपनी जिंदगी के जरिए प्यार दोस्ती और रिश्तों को ऐसे रंग दिए कि वे करोड़ों दर्शकों के दिलों का हिस्सा बन गए। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वे आने वाले वर्षों में भी हमें इसी तरीके से यादगार कहानियां देते रहेंगे, यादगार फिल्में देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है कि आपसे अनुमति ले लूँ, जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सितारे के साथ। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

दारुल उलूम सिराजुल उलूम में छापे मारने की कार्रवाई की गई। मस्कूरा इदारे को पिछले महीने गैर कानूनी इदारा करार दिया गया था। जमात इस्लामी के साबिक सरबराह शहजादा औरंगजेब की रिहायशगाह और श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में लड़कियों के एक मजहबी स्कूल जमीतुल बनात पर भी तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि फितरत के लामहदूल वसाइल सूर्य देवता की शक्ति और बारिश के आशीर्वाद से हर एक की जिंदगी में मुसर्रत और खुशहाली आएगी। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि कुर्रा-ए-अर्ज हमेशा सरसब्ज़ और शादाब और खुशहाल रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एशिया में इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब में मनासिक हज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आजमीन हज मिना में जमा हो रहे हैं। आजमीन हज ने मक्का मुकर्रमा से मिना जाने के लिए अपने सफर का आगाज किया। वो रात मिना में गुजारेंगे और कल तलबिया का विर्द करते हुए फजर की नमाज के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,000 आजमीन फरीजा हज अदा करने के लिए वहां गए हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि आबनाए हुरमुस को खोलने के बारे में ईरान के साथ अमरीका की बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है। नामानिगारों से बात करते हुए ईरान के एटमी प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के बारे में वसीतर मुजाकरात की राह हमवार हो सकती है। अलबत्ता उन्होंने जोर देकर कहा यह भी कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बकौल उनके कोई खराब मुहिदा कबूल नहीं करेंगे और दीगल मुतबादिल रास्तों पर गौर करने से पहले सिफारतकारी को भरपूर मौका दिया जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि मगरबी एशिया में महाजाराई के खात्मे के लिए मौजूदा कोशिशों के तई आलमी हिमायत का इजहार किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि क़याम अमन का रास्ता बहुत आसान रास्ता नहीं है। जनाब मार्को रूबियो भारतीय रहनुमाओं के साथ मीटिंगों और क्वाड के वज़रा खारजा में मीटिंग में शिरकत के लिए भारत के दौरे पर आए हुए हैं। ईरान के रहबले आला मुश्तबा खामनाई के बारे में मालूम हुआ है कि वो इंतहाई महदूद मवासलाती सहूलियात के साथ किसी नामालूम मकाम पर खुफिया अंदाज से रह रहे हैं। अमरीका के सुराग रसा एहलकारों के हवाले से एक न्यूज़ रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इत्तलात में ये भी कहा गया है कि हालिया हमलों में मुश्तबा खामनाई जख्मी हो गए थे और उसके बाद से वो इंतहाई सिक्योरिटी में रह रहे हैं। लड़ाई शुरू होने के बाद से वो मंजर-ए-आम पर नहीं आए हैं। भारत ने जापान में मुनक़िदा अल्ट्रा रनर्स की बैन अल-अक़वामी 24 घंटे की एशिया ओशियाना चैंपियनशिप में तारीख रकम की है। भारत ने इसमें कुल 5 तमगे जीते और मर्दों के जुमरे में उसका दबदबा रहा। अमर सिंह देवांदा ने 24 घंटे में 282.881 किलोमीटर मुकम्मल करके सोने का तमगा जीता। गिनो एंटनी ने चांदी का तमगा जीता, जबकि कांसे का तमगा भी भारत को ही मिला। ख्वातीन के जुमरे में भारतीय टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो रहा है। इस टूर्नामेंट का बाजाब्ता आगाज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। अपनी 13 साल की तारीख में पहली मरतबा यह सरकर्दा टूर्नामेंट स्टेवेंजर के बजाय शहर ओस्लो में हो रहा है। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। इस सुपर टूर्नामेंट में सरकर्दा ग्रैंड मास्टर्स मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद हिस्सा लेंगे। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और CBI से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि आबनाए हुरमुस के मामले

0: पर ईरान के साथ अमरीका की बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। भारत ने जापान में IAU एशिया ओशियाना चैंपियनशिप में 5 तमगे जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आप सुनेंगे मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम की पहली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में और फिल्म का नाम है मेरे महबूब।

अभी आप सुन रहे थे मेरे महबूब की मेहंदी फिल्म का नगमा, आवाज़ थी लता मंगेशकर की।

0: पर मर गए।
1: हाय अल्लाह कसम, बड़ा कातिल है मेरा।

अभी आप सुन रहे थे चाइना टाउन फिल्म का नगमा, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। इसी के साथ मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं, फीचर उन्वान है मसीहा दर्द का, तहरीर है जनाब अनीस अमरोही की।

नरगिस के इंतकाल के बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी इमेज को तोड़ा और विलन और एंग्री मैन के किरदार अदा किए। फिल्म जख्मी इंसान और भाई भाई में उन्होंने एंग्री मैन का किरदार अदा किया और बीआर फिल्म्स की फिल्म 36 घंटे में उन्होंने विलन का किरदार अदा किया। इसी तरह फिल्म गीता मेरा नाम में भी वो एंग्री मैन और विलन के मिले जुले किरदार में नजर आए। ये सब कोशिश उन्होंने अपनी किरदार निगारी और अदाकारी में तनव्वो पैदा करने के लिए की थी।

0: इंसानियत की खिदमत के कामों से उनकी दिलचस्पी बेमिसाल और लाजवाब थी। अपाहिज और माजूरों की फलाह बहबूद से मुतालिक फिक्रमंद सुनील दत्त अपनी जात में एक अंजुमन थे। समाज के पिछड़े हुए कमजोर अवाम की खुशहाली के लिए उनकी जद्दोजहद और मेहनत ने पूरी एक नस्ल को मुतासिर किया। कैंसर जैसे मूजी मर्ज की रोकथाम और उसके सस्ते इलाज से मुतालिक जो मिशन उनकी शरीक हयात ने शुरू किया था, दत्त साहब मरते दम तक उस मिशन पर काम करते रहे।
1: सुनील दत्त ने निजी जिंदगी में जहां बहुत से सुख दुख देखे, वहीं अपनी फिल्मी जिंदगी में कई तजुर्बे भी किए। उन्होंने मार्केट की परवाह न करते हुए फिल्म यादें बनाई। ये एक अजीब तजुर्बाती फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त पूरी फिल्म में अकेले अदाकार थे और बाकी उनके चारों तरफ बिखरी हुई आवाजें थीं जो उनकी यादों से मुतालिक थीं। यादें का प्रीमियर बंबई के मराठा मंदिर में हुआ था। इसके बाद उन्होंने राजस्थान की खुश्क जिंदगी पर एक तजुर्बाती फिल्म रेशमा और शेरा बनाई। इन दोनों फिल्मों की तारीफ दिलीप कुमार ने भी की थी।
0: सुनील दत्त हर किरदार में अपने आप को ढाल लेते थे, चाहे गांव का नौजवान हो या फिल्म गुमराह का मायूस आशिक या मुझे जीने दोगा शेर दिल डाकू जिसकी आंखों से शोले लपकते हैं। फिल्म मिलन का गोपी नाव वाला जो

अपनी मालकिन बीबी जी को कॉलेज के फंक्शन के लिए सावन का महीना, पवन करेश सोर गीत याद कराता है। फिल्म वक्त का वकील, जो अपने भाई राजू को फांसी के फंदे से बचा लेता है। फिल्म हमराज का वो मशहूर गीतकार, जो अपनी आवाज से फजाओं को मुअत्तर कर देता है। फिल्म पड़ोसन का भोला, जो अपनी महबूबा सायरा बानो को हासिल करने के लिए अपने उस्ताद किशोर कुमार की आवाज का सहारा लेता है। इसी तरह सुनील दत्त ने फिल्म साधु और शैतान, मेरा साया, खानदान, सुजाता, मेहरबान, गीता मेरा नाम और गजल वगैरह फिल्मों में अपनी जिंदगी के बेहतरीन किरदार अदा किए।

0: सुनील दत्त ने एक जिम्मेदार बाप का किरदार अदा करते हुए सन 1981 में अपने बेटे संजय दत्त के लिए फिल्म रॉकी बनाई। उन्होंने संजय दत्त से साफ अल्फाज में कह दिया था कि इसके बाद वो संजू बाबा की कोई मदद नहीं करेंगे और उसे खुद अपनी सलाहियतों के सहारे ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाना होगा।
1: नरगिस दत्त की बड़ी तमन्ना थी कि वो फिल्म रॉकी मुकम्मल होने पर अपने बेटे को परदेसी में पर देखें, मगर रॉकी मुकम्मल होने

0: हालांकि रॉकी और उसके बाद की कई फिल्में संजय दत्त को ज्यादा कामयाबी न दे सकी, मगर बाद में जब उन्होंने नशे की आदत से तौबा कर ली और अपनी सारी तवज्जो अदाकारी पर मरकूज की, तब वो एक कामयाब अदाकार के तौर पर खुद की पहचान कायम कर सके।
1: अदाकारी के अलावा सुनील दत्त ने फिल्म साजी और हिदायतकारी के मैदान में भी अपनी अलग शनाख्त कायम की। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो, यादें, रॉकी, रेशमा और शेरा, डाकू और जवान, दर्द का रिश्ता और ये आग कब बुझेगी जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने न सिर्फ समाज की आईनादारी की बल्कि नाजरीन की पसंदीदगी और दाद भी हासिल की।
0: दिलीप कुमार के बाद सुनील दत्त ही फिल्मी दुनिया की दूसरी शख्सियत हैं जिनको बंबई के शरफ के ओहदे के लिए नामजद किया गया। उन्होंने सच्चे दिल और लगन के साथ अपने फराइज अंजाम दिए। उनकी बीवी नरगिस दत्त को राज्यसभा का मेंबर नामजद किया गया और वो भी मुल्क कौम की खिदमत में अपने शौहर के शाना बशाना हिस्सा लेती रहीं। नरगिस को हुकूमत हिंद की तरफ से सन 1980 में पद्मश्री का एजाज भी मिला और साबिका वजीर आजम श्रीमती इंदिरा गांधी से उनके जाती ताल्लुकात भी थे। श्रीमती दत्त को जब कैंसर के इलाज के लिए अमरीका जाना पड़ा तो सुनील दत्त ने उनकी खिदमत और तीमारदारी में दिन रात एक कर दिए और अपने सारे काम सारे प्रोग्राम कैंसिल करके नरगिस दत्त को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर खुदा की मर्जी के आगे इंसान की कब चली है।
1: नरगिस दत्त 3 मई सन 1981 के दिन सुनील दत्त को अकेला छोड़कर चली गईं और इस तरह सुनील दत्त का सबसे अजीज दोस्त मोहसिन और हमदर्द उनसे जुदा हो गया। सुनील दत्त की सेक्युलर शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी उस वक्त लोगों के सामने आई जब उन्होंने नरगिस दत्त की वसीयत के मुताबिक उनकी इस्लामी रसूम के मुताबिक तदफीन की।

0: सुनील दत्त अज़्म और हौसले का ही दूसरा नाम था। जब सन 1981 में कैंसर के मूजी मर्ज से नरगिस का इंतकाल हो गया तो वो जैसे टूट से गए, मगर जल्द ही उन्होंने खुद पर काबू पाया और इसी मौजू पर फिल्म दर्द का रिश्ता बनाई, जो अपने आप में एक बेहतरीन फिल्म थी। सुनील दत्त ने इस फिल्म की तमाम आमदनी कैंसर अस्पताल में बतौर अतिया दे दी। इसके अलावा टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर वार्ड नरगिस दत्त के नाम पर खुलवाया ताकि कैंसर से हत्तल इम्कान जंग जारी रखी जा सके।
1: बाज इत्तफाकात भी बड़े अजीब होते हैं। फिल्म साज और हिदायतकार महबूब खान ने राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त को दो सगे भाइयों के तौर पर फिल्म मदर इंडिया में पेश किया था। ये दोनों फिल्मी दुनिया में कामयाब हुए। दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से शादी की। दोनों ने आस पास ही बंगले खरीदे। दोनों के घर पहले एक एक लड़का पैदा हुआ और बाद में दो दो लड़कियां और चौथी कोई औलाद नहीं हुई।
0: दोनों ने अपने अपने बंगलों में अपने अपने थिएटर बनवाए। दोनों प्रोड्यूसर बने। दोनों ने अपने अपने लड़कों के लिए फिल्म बनाई और दोनों के लड़के हीरो बने। हरेंद्र कुमार के लड़के कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त की लड़की नम्रता दत्त से हुई और दोनों एक दूसरे के समधी बने। ये सब हकीकतें हैं, मगर हसीन इत्तफाक भी।

0: दहशतगर्दी ने सर उभारा तो सुनील दत्त ने अमन और शांति का पैगाम लेकर बंबई से अमृतसर के गोल्डन टेंपल तक पैदल मार्च किया।
1: उनके सीने में शुरू से ही एक दर्दमंद इंसान का दिल धड़कता था। अभी वो रोजगार की तलाश में बंबई की सड़कों पर भटक ही रहे थे और पाकिस्तान से आए हुए एक महाजिर से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं थी। वो गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़े थे और उनके सामने एक शख्स समंदर में गिर पड़ा। वहां अच्छा खासा मजमा इकट्ठा हो गया और तमाम लोग लाचारी से डूबते शख्स को देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत न थी कि वो तूफान ज़दा समंदर का मुकाबला करके डूबते हुए शख्स को बचाता।
0: सुनील दत्त भी इसे बेबसी से देख रहे थे क्योंकि खुद उनको तैरना नहीं आता था, लेकिन वो बहुत देर तक अपने ऊपर काबू न रख सके और समंदर में छलांग लगा दी। कुछ सातों के लिए उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने नाचते हुए देखा और जब वो खुद भी डूबने लगे तो जैसे उनमें बला की कुव्वत पैदा हो गई और उन्होंने मौत का मुकाबला करना शुरू कर दिया। समंदर में फेंकी गई एक रस्सी की मदद से उन्होंने डूबते हुए शख्स को बचा लिया। उनका ये अमल उस वक्त इसलिए भी ज्यादा काबिले कद्र माना गया क्योंकि उस वक्त उनके कांधों पर एक माँ, एक छोटी बहन और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी भी थी, जो उस वक्त हरियाणा के जमुनानगर के एक गांव में रहते थे।
1: इस तरह उन्होंने यकुम अगस्त सन 1950 को बंबई के तमाम अखबारात की शह सुर्खियों में जगह बनाकर लोगों को चौंका दिया। सन 1989 में बंबई का शेरिफ बनने के बाद सुनील दत्त को आम लोगों की जिंदगी को ज्यादा करीब से देखने का मौका मिला। उन्होंने लोगों की तकलीफें देखी, झोपड़ियां देखी, बरसात में लोगों की झोपड़ियों को ढहते देखा, गर्मी में पानी के लिए दूर दूर से सर पर घड़े लिए लोगों को भटकते देखा।
0: उस एक बरस में सुनील दत्त ने जिंदगी का सारा दर्द महसूस कर लिया। तब उन्हें अपनी जिंदगी और उसकी आसाइशें खुद अपनी ही आंखों में चुभने लगी। शायद वही दर्द उनके सीने में आखिरी दम तक करवटें लेता रहा और वो मुस्तकिल समाज की खिदमत करते रहे।
1: इसे कहते हैं वक्त की हेरा फेरी। एक छोटे सी देहात में पैदा होने वाले रेडियो अनाउंसर को वक्त ने पार्लियामेंट में बिठा दिया। इसमें जितना भी हाथ वक्त का है उससे कहीं ज्यादा सुनील दत्त की अपनी मेहनत, लगन और जज्बे हमदर्दी का भी दखल है।
0: 3-4 दिन की मुसलसल बीमारी के बाद 25 मई सन 2005 की सुबह तकरीबन 11:40 पर सुनील दत्त को नींद में दिल का दौरा पड़ा और एक फनकार, एक सामाजिक खिदमतगार और कई फिल्मों का खालिक अपने खालिक हकीकी से जा मिला। सुनील दत्त की आखिरी रसूम में मुल्क के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और जमहूरिया हिंद के कई सरकर्दा लीडरों और वजीरों ने शिरकत की।
1: फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां इस फरिश्ता सिफत इंसान को अलविदा कहने के लिए आईं। पूरे मुल्क में एक दिन के शोक का ऐलान किया गया और मुल्क को बैरून मुल्क से बेशुमार ताजियती पैगाम आए। सुनील दत्त क्योंकि काबीना में वजीर थे, लिहाजा उनकी आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। सियासत में उन्हें सेकुलर नजरियात का चैंपियन कहा जाता था और उनकी शबीह हमेशा बेदाग रही। एक बेहतरीन अदाकार के अलावा सुनील दत्त को सच्चे अवामी खिदमतगार, एक बेहतरीन इंसान और दर्दमंद सियासतदान के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे फीचर, उनवान था मसीहा दर्द का, तहरीर थी जनाब अनीस अमरोही की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम।

अभी आप सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नगमा। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आइए अब सुनते हैं कामचोर फिल्म का नगमा। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में कामचोर फिल्म का नगमा। आइए अब सुनते हैं वल्लाह क्या बात है फिल्म का नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे आबरू फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अब सुनते हैं आधी रात के बाद फिल्म का नगमा, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

0: आइए अब सुनते हैं आमने सामने फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।
1: आज कल

अभी आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म का नगमा, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आंधी और तूफान का नगमा।

दिया है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट सन 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज होते हैं जो तीन जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्म श्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण 6 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री अवार्ड्स हैं। बाकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तहान के इनकाद के बारे में बार बार होने वाली कोताही पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह बात मायूसकुन है कि इम्तहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ने पेपर लीक होने के पहले के तनाज़े से कोई सबक हासिल नहीं किया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार इम्तहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी और मरकजी जाँच ब्यूरो CBI से जवाब तलब किए हैं। इन दरख्वास्तों में मेडिकल दाखिला इम्तहान के इनकाद के लिए मौजूदा एजेंसी की जगह एक ज़्यादा मजबूत और ख़ुद मुख्तार इदारा कायम किए जाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने इम्तहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी को हिदायत दी कि जुमेरात तक एक हलफनामा दायर करके उन सिफारिशात पर अमल दरामद की तफसीली जानकारी फराहम करे जो इसरो के साबिक सरबरा के राधा कृष्णन की सरबराई वाली कमेटी ने मस्कूरा एजेंसी के कामकाज को असरन तरतीब देने के लिए पिछले साल की थी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि आबनाए हुरमुज़ को खोलने के बारे में ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है। नामा निगारों से बात करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि इब्तदाई इत्तेफाक राय होने से ईरान के एटमी प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के बारे में वसी तर मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। अलबत्ता उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह भी कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बकौल उनके कोई ख़राब माहदा कबूल नहीं करेंगे और दिगर मुतबादल रास्तों पर गौर करने से पहले सिफारतकारी को भरपूर मौका दिया जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि मगरबी एशिया में महाजारई के खात्मे के लिए मौजूदा कोशिशों के तई आलमी हिमायत का इजहार किया जा रहा है लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क़याम अमन का रास्ता बहुत आसान रास्ता नहीं है। जनाब मार्को रूबियो भारतीय रहनुमाओं के साथ मीटिंगों और क्वाड के वज़रा खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए भारत के दौरे पर आए हुए हैं। क्वाड मुल्कों के वज़रा खारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा पेनी वोंग जापान के वज़ीर खारजा तोशिमित्सु मैटकी और अमेरिका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ारत खारजा ने कहा कि लीडर मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। मौजूदा इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैन अलाक़वामी उमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। क्वाड ग्रुप भारत अमरीका ऑस्ट्रेलिया जापान पर मुश्तमिल है और यह भारत बैन अलाक़वामी खत्े में अमन व सलामती और इस्तेहकाम पर ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत मजकूरा ग्रुप के मौजूदा सदर नशीं होने के नाते इस मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। साल 2024 में अमरीका में विल्मिंगटन में क्वाड की गुज़्त सरबरा मीटिंग में ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं ने भारत बहरुलकाई खत्े में बहरी सिक्योरिटी इश्तराक को वसत देने की खातिर अहम इकदाम का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि फितरत के लामहदूद वसाइल सूर्य देवता की शक्ति और बारिश के आशीर्वाद से हर एक की ज़िंदगी में मसरत खुशहाली आएगी। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि कुर्राए अर्ज़ हमेशा सरसब्ज व शादाब और खुशहाल रहेगा। एशिया में इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब में मनासिक हज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज मीना में जमा हो रहे हैं। आज़मीन हज ने मक्का मुकर्रमा से मीना जाने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो रात मीना में गुजारेंगे और कल तलवी का व्रत करते हुए फजर की नमाज के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे जहाँ हज का रुकन आज़म अदा किया जाता है। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करने के लिए वहाँ गए हैं। ईरान के रहबर आला मुस्तफा खामनेई ने
کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انتہائی محدود مواصلاتی سہولیات کے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر خفیہ انداز سے رہ رہے ہیں۔ امریکہ کے سرغنہ اہلکاروں کے حوالے سے ایک نیوز

0: रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इत्तिलात में ये भी कहा गया है कि हालिया हमलों में मुश्तबा खामनई जख्मी हो गए थे और उसके बाद से वो इंतहाई सिक्योरिटी बंदोबस्त में रह रहे हैं। लड़ाई शुरू होने के बाद से वो मंजर आम पर नहीं आए हैं। तुर्किया की फसाद से निपटने वाली पुलिस ने कल दस्तबरदार होने वाली क़यादत असल अपोजिशन पार्टी के हेडक्वार्टर्स को खाली कराने की खातिर आंसू गैस के गोले दागे ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसमें दाखिल हुई। इस वाक़े के बाद तुर्किया में बहरान किसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की इमारत के ऊपर आंसू गैस के गोलों का धुआं देखा गया जबकि इस इमारत के अंदर थे वो शदीद नारेबाजी कर रहे थे और दाखिले के मकाम पर पुलिस पर चीज़ें फेंक रहे थे। ताहम इस कार्रवाई के दौरान किसी के ज़ख्मी होने की कोई ख़बर नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जाँच एजेंसी ने NIA ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शोपियाँ ज़िले में 3 मकामात पर तलाश की कार्रवाई का अंजाम दी। हुक्काम के मुताबिक शोपियाँ के इमाम साहब इलाके में दारुल उलूम सिराजुल उलूम में छापे मारने की कार्रवाई की गई। मस्कूरा इदारे को पिछले महीने गैरकानूनी इदारा करार दिया गया था। जमात इस्लामी के साबिक सरबरा शहजादा औरंगज़ेब की रिहाइश गाह और श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में लड़कियों के एक मजहबी स्कूल जमीतुल अलबिनात पर भी तलाश की कार्रवाई अंजाम दी गई। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में दिन का टेम्परेचर 44 और 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। इधर हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश साहिली आंध्र प्रदेश मशरकी राजस्थान झारखंड उड़ीसा तेलंगाना मगरबी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। इधर शुमाल मशरकी भारत के बाद हिस्सों मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते सिक्किम केरलम माहे तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज़ बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार जजायर आसाम मेघालय बिहार मशरकी उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के बाद मकामात पर आज गरज चमक के साथ छींटें पड़ने की पेशगोई की गई है। भारत ने जापान में मुनक़िदा अल्ट्रा रस की बैन अलाक़वामी 24 घंटे की एशिया ओशिनिया चैम्पियनशिप में तारीख रकम की है। भारत ने इसमें कुल 5 तमगे जीते और मर्दों के ज़ुमरे में उसका दबदबा रहा। अमर सिंह देविंडा ने 24 घंटे में 282.881 किलोमीटर मुकम्मल करके सोने का तमगा जीता। जीनो एंटोनी ने चांदी का तमगा जीता जबकि कांसे का तमगा भी भारत को ही मिला। खवातीन के ज़ुमरे में भारतीय टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। ओस्लो में पिछले राउंड के मुकाबले के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज़ होने वाला है। इस टूर्नामेंट का बाज़ाब्ता आगाज़ भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। अपनी 13 साल की तारीख में पहली मरतबा सरकर्दा टूर्नामेंट स्टेवेंजर के बजाय शहर ओस्लो में हो रहा है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार इम्तहानात के इनकास से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA और CBI से तलब किए हैं जवाब और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आबना हरमुस के मामले पर ईरान के साथ अमरीका की बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। रात के 9:15 पर हम फिर तीसरी मजलिस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसकी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। रात के 9:15 पर हम फिर तीसरी मजलिस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसकी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। रात के 9:15 पर हम फिर तीसरी मजलिस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसकी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। रात के 9:15 पर हम फिर तीसरी मजलिस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसकी दूसरी मजलिस की नशरियात अब

0: रात के 9:15 पर हम फिर तीसरी मजलिस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इसकी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पसीर होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ड सर्विस तिंदी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत सब तो पहला समात फरमाओ सराई की प्रोग्राम झोक माही दी।
2: ऑल इंडिया रेडियो दा सराई की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते सराई की प्रोग्राम घेन के हाजिर हां। तुसी सारा ठीक ठाक हो सो ना, ते वाला शुरू करें दे हां प्रोग्राम। आज असा पहला तुहाको एक वार्ता सुनवेंदे पए हां। साडी धरोहर झांसी दा किला, वार्ताकार हिन नीलम बजाज।
3: झांसी किला या झांसी दा किला कुछ भी ना सड़ सकदे हो। उत्तर प्रदेश विच ए पुराणिक किला बंगीरा पहाड़ी ते बनाया गए। 15 एकड़ जमीन ते बने ही किले दे डा दरवाजे हिन। राजा वीर सिंह जू देव बुंदेला ने 1606 तू 1627 तक ओरछा दे बलवंत नगर शहर विच ए किला बंगरा चट्टानी पहाड़ ते बनवाया है, जेकू हुण झांसी आखदेन। झांसी किले दा निर्माण बुंदेला राजपूतां दे प्रमुख ओरछा साम्राज्य दे शासक वीर सिंह जू देव बुंदेला ने 1613 विच कीता है। ए किला बुंदेला दे शासकां दे मेन किले विचों एक किला है। मुहम्मद खान बंगश ने 1728 विच महाराज छत्रसाल ते हमला कीता। पेशवा बाजीराव ने जीत विच छत्रसाल दी मदद कीती। साथ देवन करके धन्यवाद दे रूप विच छत्रसाल ने झांसी समेत अपने राज्य दा एक हिस्सा पेशवा को दे दिता। 1742 विच नरोशंकर झांसी दे सूबेदार बने। अपने 15 साल दे शासन काल विच उन्हां ने झांसी किले दा विस्तार कीता ते विस्तार को शंकरगढ़ दा नां दित्ता। पेशवा ने उकूं 1757 विच वापस सड़िया ते माधव गोविंद कारकिडे ने हुंदे पिछू बाबू लाल कन्हाई झांसी दे सूबेदार बन गए। 1766 तों 1769 विश्वास राव लक्ष्मण झांसी दे सूबेदार रहे। वत रघुनाथ राव दो नवेलकर को झांसी दा सूबेदार बनाया गया। हिन्ने झांसी को चंगी तरह नाल संभालिया ते राज्य दा पैसा वधाया ते डू मंदर मां लक्ष्मी ते रघुनाथ मंदर भी बनवाए। वत शिव राव दे मरण पिछू हिंदा पोतरा रामचंद्र राव झांसी दा सूबेदार बनया, लेकिन हिंदा काम चंगा कायना हाई ते 1835 विच हिंदा राज हिंदे मरण दे नाल खत्म थी गया। वत रघुनाथ राव त्रै 1838 विच मर गया। ब्रिटिशर ने गंगाधर राव को अगला झांसी दा राजा बना दिता। रघुनाथ राव त्रै ने झांसी को खाली कर दिता, यानी राज्य दा पैसा सारा खत्म कर दिता। वत राजा गंगा राव ने अपने चंगे राजकाज नाल झांसी को वत खड़ा कीता। 1842 विच राजा गंगाधर राव ने मनी करने तंबे नाल शादी कीती, पिछू जिंदा नाम लक्ष्मी बाई रखिया गया। हिंदा 1851 विच एक पुत्र जम्या जिंदा नाम दमोदर राव है। दमोदर 4 महीने दा थी के मर गया। महाराज ने वत आनंद राव को गोद गिद्दा जड़ा गंगाधर राव दा भतीजा है ते हुकू राजा ने मरण तू एक डारे पहले दमोदर राव नाम दिता। 1853 विच महाराज ने मरण दे बाद दमोदर राव को अंग्रेजा ने राज गद्दी ते बावन तू मना कीता। लक्ष्मी बाई को 60,000 सलाना पेंशन ऐलान कीती ते नाल महल ते किले को वी छोड़न वास्ते ऐलान कर दिता। जून 1857 विच राणी ने विद्रोह दी लड़ाई छेड़ दिती ते किले ते कब्जा भी रखिया। मार्च अप्रैल 1858 विच ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी ते डटी रही ते 4 अप्रैल 1858 विच झांसी हथिया गिदी, लेकिन राणी बड़ी वीरता नाल लड़दी रही। राणी ने लड़ाई दे दौरान जड़े वेले डिठा के अंग्रेज

सम्मानित करना। मुख मंतव इदा एही ही दस्या गया। खेडां नूं विश्व पद्धर दे उत्ते शांति नूं बढ़ावा देण दे लई बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सो खेडां दा मुख मंतव यही रहा है कि सारे विश्व नूं सब लोकां नूं एकजुट कीता जाए। फुटबॉल एक विश्व पद्धर दा खेड होण दे नाते अपनी एक अलग ही जगह रखता है। ये महज मनोरंजन तो परे और एक बड़ी ही इको करण दी सारियां नूं इकट्ठा कर लैण दी इस दे विच ताकत आ। सारी उम्र दे लोग इनूं खेड सकदे ने। जदों खेड मैदान दे उत्ते इह खेड खेडी जांदी है तां हर कोई ओह किसे वी जात दा होए किसे दी मज़हब दा होए ओह सारे इक हो जांदे ने। और उस वेले जिहड़ियां किसे भी जात मज़हब बोली दियां जे सीमावां ने ओह सब दूर हो जांदियां ने। फुटबॉल की बड़ी ही लोकप्रियता ते सुलभता दे करके इस नूं स्वास्थ ते खुशहाली दे नूं वधाउण दे लई एक बड़ा ही शक्तिशाली साधन वजों जाणिया जा रहा है। नाले नाल ए मैदान ते मैदान तो बाहर लैंगिक समानता नूं वधाउण लई कुड़ियां ते औरतां नूं सशक्त बनाउण दे लई एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मंच दे रूप दे विच काम कर रहा है। इस तों इलावा फुटबॉल समाजिक समावेश दे लई उत्प्रेरक दा काम करदा है। एकता नूं वधाउंदा है और अलग अलग समुदायां दे विच जे कोई बाधा है जे कोई रोक टोक है उस नूं भी ये दूर करदा है। ये इस तरह दा मंच प्रदान करदा है जो कि हर तरह दे लोकां नूं इकट्ठा लैके आउंदा है। एक दूजे दा सम्मान करन दी जिहड़ी है ओह भावना वधदी है और नाले नाल एकता एकजुटता भी वधदी है। उन्नीस सौ चौबी इतिहास के पहले अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की सौवीं वरेगंढ मनाई गई सी जिस दे विच सारे खेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया सीगा। ये टूर्नामेंट 25 मई नूं होया सी 1924 पैरिस दे विच होया सी और इसे दिन नूं याद करदे हुए इस दिहाड़े नूं मनाउण दा प्रस्ताव रख्या गया सी। फुटबॉल दे खेड नूं बढ़ावा देण दे लई फैडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसीएशन यानी फीफा दी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका दसी गई है और इस नूं मानता भी दित्ती गई है। ये प्रस्ताव सारे ही देशों के फुटबॉल और होर खेलों नूं शांति विकास ते महिलावां दे सशक्तिकरण नूं बढ़ावा देण दे लई एक वड्डे साधन दे रूप दे विच इस नूं प्रोत्साहित किया गया है।

0: कार्यों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूप रेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: सरिता बहन, देखिए आज हम बातचीत करेंगे, अपने भाइयों से कुछ जानकारी भी दिलवाएंगे और उनका मनोरंजन भी करवाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले जैसे कि हमारी खेती क्यारी की अगर बात करें, तो इस वक्त कपास की अगर बात करें, जिसे हम सफ़ेद सोना भी
1: बिल्कुल।
0: कहते हैं, तो उसके बारे में हम उनकी जानकारी भी दिलवाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भारत सरकार द्वारा देश में कपास की जो खेती है उसकी उपज को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि कपास को घटते उत्पादन और खराब गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है।
1: बिल्कुल कहा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कपास यहाँ की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है।
0: जी
1: और कपास की अगर हम बात करें ना वंदना बहन, तो ये एक फसल नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सूती कपड़े, धागे, तेल, पशु आहार तथा अनेक औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: भारत विश्व के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में गिना जाता है। और
0: बिल्कुल
1: अगर हम प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और कपास की जो अच्छी पैदावार से किसानों की आय बढ़ती है और वस्त्र
0: बिल्कुल
1: उद्योग को पर्याप्त कच्चा माल मिलता है।
0: बिल्कुल। और किसानों को जो कीट प्रतिरोधी, जलवायु अनुकूल बीज, उन्नत खेती और तकनीकें प्रदान की जाती हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि किस तरह से हमें अपनी कपास को ठीक रखना है, कीटों से बचाना है, जलवायु का कैसे नियंत्रण रखना है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना है।
1: बिल्कुल। और जिस तरह की भाई कपास हम दिवस की बात करते हैं, तो ऐसे में क्यों ना हम एक अच्छी सी वंदना बहन जानकारी ले ले जिसमें कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जा रही है। और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवराग बाजरा बाजिया, उनसे बात कर रही है प्रतिमा शर्मा, और देवराय बाजरा जो है सहायक प्रोफेसर है जोबनेर यूनिवर्सिटी जयपुर में।
0: जी हाँ, तो बातचीत कर रही हैं देवराम बाजा से प्रतिमा शर्मा, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। किसान भाई बहनों, खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। विषय है कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी का प्रभावी प्रबंधन। आप जानते हैं कि कपास को सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि ये किसानों की आय बढ़ाने वाली प्रमुख नकदी फसल है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गुलाबी सुंडी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यदि समय रहते सही प्रबंधन किया जाए तो इस नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है और इसीलिए हम ये विषय आपके लिए लेकर आए हैं, कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवराम बाजिया, सहायक प्रोफेसर श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौनबेर जयपुर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार
2: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त समय कौन सा है।
3: देखिए किसान भाइयों, कपास की बिजाई के लिए जो सबसे उपयुक्त समय माना गया है वो 15 अप्रैल से लेकर 10 जून तक का सबसे उपयुक्त समय है। उसमें भी जो मई का महीना है, अगर इस महीने के अंदर आप बिजाई कर देते हैं तो उसमें अच्छी पैदावार होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। इस समय कीट, बीमारियां और तमाम तरह की जो कपास की फसल में समस्याएं आती है वो कम से कम आने की रहती है और पैदावार ज्यादा से ज्यादा होती है।
2: तो डॉक्टर साहब, कपास की बुआई करते समय खेत की तैयारी और बीज का उपचार करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे।
3: देखिए जो कपास की फसल है इसमें तीन तरह की किस्में लगाई जाती है, जिसमें एक तो देसी कपास की किस्में होती है, एक अमेरिकन होती है, तीसरी जो होती है वो है संकर किस्में। तो जो संकर किस्में होती है उसके अंदर भी बीटी और नॉन बीटी दो तरह के बीज आते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। संकर किस्में वो ऑलरेडी बीज उपचारित आता है उनका, उनको उपचार करने की जरूरत नहीं होती। और जो अमेरिकन किस्में है और देसी किस्में है, जो हम घर पे अपना बीज भी तैयार कर सकते हैं, उनको बीज के उपचारित करने की जरूरी होती है। ये देखना होता है कि बीज आपके खेत के अंदर, जैसे आप लगातार कपास की फसल ले रहे हैं तो पहले क्या क्या समस्या आई, जहाँ पे अगर दीमक की समस्या है लगातार आती है, उखेड़ा एक रोग आता है, उकटा रोग जिसको बोलते हैं, अगर वो आ रहा है तो उसके लिए भी बीज का उपचार करना है। एक रस चूसक जो कीट आते हैं वो शुरुआती अवस्था में फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए तो उनके लिए भी उपचार करना पड़ता है। और अगर आपको ये फसल अच्छी लेनी है तो एक इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है जिसको FIR बोलते हैं, फंजीसाइड फफूंद नाशक। सबसे पहले तो ट्राइकोडर्मा वीरिडी 2 ग्राम लेना है 1 किलो बीज के अंदर, जिसके अंदर वो बायो पेस्टिसाइड है उसको आप बीज से उपचारित करना है। इसके बाद में आपको इंसेक्टिसाइड जैसे रस चूसक कीट है जिसमें हरा तेला, सफेद मक्खी और माहू चेपा हो गया, और एक चुरड़ा थ्रिप्स जिसको बोलते हैं, इन कीटों की अगर समस्या है तो वहां पे सकिंग पेस्ट जहाँ पे आ गए वहां पे इमिडाक्लोप्रिड जिसको हम गाउचो के नाम से भी बोलते हैं, 600 FS 7 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज का फफूंद नाशक के बाद में इंसेक्टिसाइड से उपचारित करना है। इसके बाद में आप एजोटोबैक्टर जो पौधे को पोषक तत्व शुरुआती अवस्था के अंदर नत्रजन जो उर्वरक है वो पौधे को अवेलेबल करवाता है, एजोटोबैक्टर का 1 पैकेट प्रति किलो बीज के अंदर मिलाकर जब FIR पूरा हो जाए उसके बाद में 3 से 4 घंटा बीज को पेड़ के नीचे छाया में सुखाएं और फिर उसकी बिजाई कर देनी।
2: डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हमने कहा कि कपास को सफेद सोना कहा जाता है और किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी ये खेती होती है, तो किसान भाई ये भी सोचते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं।

0: जिसे लगाने से उन्हें आने वाले समय में जब फसल काटें तो उनको कई गुना बढ़कर मिले, तो कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं?
1: देखिए, जो कपास की जो फसल है, जो अभी मैं बताया कि तीन तरह की होती है, एक तो देसी किस्में होती है, एक अमेरिकन किस्में है, तीसरी जो संकर किस्में है। वर्तमान में अगर हम भारतवर्ष का परिदृश्य देखते हैं तो 95% जो खेती है वो कपास की संकर किस्मों की हो गई है, जिसमें भी बीटी कपास की खेती करते हैं। और बीटी कपास पर अगर भारतवर्ष की हम बात करते हैं तो तीन जोन में बांटा हुआ है, जिसके अंदर उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत। अगर आप इन किस्मों की बात करते हैं तो हर जोन वाइज अलग अलग लगभग 4000 से भी ज्यादा किस्में भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है। आप जिस भी क्षेत्र के अंदर हैं वहां पे सबसे पहले तो यह है कि आप मिट्टी पानी इसकी जांच जरूर करवाएं। जांच करवाने के बाद में आपके क्षेत्र के अनुसार अनुमोदित जो किस्म है, जैसे उत्तरी भारत के अंदर हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान रीजनल स्टेशन सिरसा के अंदर बना हुआ है, तो वहां पे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
0: तो हर जिले में,
1: और हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, और कृषि सुपरवाइजर जो इसको पर्यवेक्षक बोलते हैं वो हर गांव गांव के अंदर है, तो उनसे संपर्क लेके भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं कुछ किस्मों के नाम भी बता देता हूँ जो कॉमन है, कि जैसे पंजाब हरियाणा और राजस्थान में आप लगा सकते हैं, जिसमें जैसे RCS 314, 317 है, 134 ये RCH की है, MRC 6029, 6025 है, ऐसे ही कुछ PAU की है, PAU BT 2-3-647, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं। अगर किसान भाई देसी कपास की किस्में लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर देसी के अंदर WH1 CICR2 है, RG8 है, HD 123 है, LHH 144 है, LD 370,
0: ये उन्नत किस्में हैं,
1: ये देसी किस्में हैं जो देसी कपास की खेती करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ अमेरिकन किस्में भी है, जिसमें 1098 है, H 1098 है, H 1117 है, RS 2013 है, ऐसी कुछ किस्में हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं। बाकी अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने नजदीक के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि जो पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, कृषि अधिकारी हैं और विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिकगण हैं, उनसे भी आप संपर्क करके अच्छी उन्नत किस्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं हम गुलाबी सुंडी पर, तो ये गुलाबी सुंडी क्या है और कपास की फसल को कैसे नुकसान पहुंचाती है?
1: देखिए, कपास की फसल के अंदर लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा कीट पतंगों से नुकसान होता है, जिसके अंदर जो बॉलवर्म जिसको बोलते हैं सूंडियां, तो उसमें जब बीटी 2002 के अंदर आई, उससे पहले 4 तरह की सूंडियां लगती थी, जिसमें से एक ये गुलाबी सूंडी भी थी। अच्छा। तो काफी समय तक तो गुलाबी सूंडी का प्रकोप, जब बीटी आई तो गुलाबी सूंडी का प्रकोप न के बराबर था, बट अब काफी टाइम से ये देखने को मिल रहा है, किसानों की तरफ से भी शिकायतें हैं कि बीटी कपास के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ गया। उस सबसे अहम जो कारण जो मेरे को नजर आ रहा है, उसमें ये आ रहा है कि किसान भाइयों को जब बीटी कपास लगाने के लिए बताया गया, सलाह दी गई, तो उसके साथ में एक नॉन बीटी बीज का पैकेट भी दिया जाता था, ताकि वो खेत के चारों तरफ नॉन बीटी 2-2, 3-3 लाइन लगाए, क्योंकि कीड़ों के अंदर एक विशेषता होती है कि जो भी हम प्रकृति के अंदर जो कीट आए हैं वो धरती के ऊपर डोमिनेंस है इनका, तो इनको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, इनको प्रबंध नहीं किया जा सकता है। तो जब इनका कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ इनकी शरीर में या इनके अपने जीन के अंदर कुछ ऐसा बदलाव कर लेते हैं कि ये उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, जिसको सहनशीलता बोलते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो किसान भाइयों ने शायद जहां तक गलती करी कि वो जो नॉन बीटी बीज था उसको तो लगाया नहीं, और वो बीटी लगाने से इस बीटी के प्रति सहनशीलता डेवलप हो गई। जो ये गुलाबी सुंडी है, ये गुलाबी सुंडी क्या करती है कि ये बीज के अंदर एक बार जो टिंडा बनता है उसके अंदर ये घुस जाता है और अंदर बैठा बैठा बीज के अंदर तक बीज को खाता रहता है,
0: खोखला कर देता है।
1: और जब एडवर्स कंडीशन होती है, इसके अनुकूल वातावरण नहीं रहता है, तो 2 साल तक भी इसका जो लार्वा है वो जीवित सुसुप्ता अवस्था के अंदर बीज के अंदर पड़ा रहेगा। तो इसलिए जब भी फसल की, जैसे फसल की चुनाई कर देते हैं और जो उसका अवशेष बचा हुआ है, तो वहां पे इसका जो प्यूपेशन होता है सुसुप्ता अवस्था के अंदर जाता है, तो एक तो खेत की बिल्कुल साफ सुथरा कर देना चाहिए, वहां इसका जो भी बचा हुआ अवशेष है, फसल अवशेष, उसको इकट्ठा करें और खेत से बाहर बाहर ले जाके उसको जला दें।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने सुरक्षा के लिए बताया, लेकिन किसान भाई कैसे पहचान करें कि ये गुलाबी सुंडी है, क्या पहचान है?
1: देखो, ये जो गुलाबी सुंडी होती है, जब कपास की फसल खड़ी होती है और उसमें फूल आते हैं, तो वो गुलाब के फूल की तरह जो कपास के फूल आएंगे वो एक तो खुलेगा नहीं, और इसका जो टिंडा है उसके अंदर जब घुस जाएगी ये,

0: तो फिर जब टिंडे को खोलेंगे तो दो बीज एक जगह चिपके हुए भी दिखाई देंगे आपको।
1: अच्छा
0: डबल सीडिंग भी इसका एक करेक्टर है जिसको बोलते हैं, दो सीड एक जगह चिपक जाते हैं और वो अंदर से उसका एम्ब्रियो और बीज का जो भी प्रोटीन है उसको वो खाती रहती है। तो इसके लिए यह है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स खेत में दिखाई देते हैं तो सबसे उपयुक्त और सबसे बेस्ट इसका तरीका एक ही है कि शुरुआती अवस्था में अगर आपको लक्षण दिखाई दे तो इसमें क्या होता है कि चार अवस्थाएं होती है। पहले तितली बनती है, फिर तितली अंडा देती है, अंडे से फिर लट बनेगी और लट से फिर प्यूपा बनेगा और फिर वापस प्रौढ़ बनेंगे। तो जब आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे कि अब ये तितली आने वाली है या आ गई है तो उस टाइम आप खेत के अंदर फेरोमोन ट्रैप्स 10 से 12 प्रति हेक्टर लगा
1: फेरोमोन
0: दें।
1: ट्रैप इसके लिए मददगार हो सकते हैं।
0: फेरोमोन ट्रैप इसके लिए काफी मददगार होते हैं और उसको लगाने से क्या होगा कि जो उसमें नर है वो वहां पे फंस जाएगा, उसमें गंध होती है मादा की, और अगर फिर भी ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम एक कीटनाशक दवा आती है इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG, जिसकी 200 ग्राम 500 लीटर पानी में घोलकर उसके साथ में स्टिकर जरूर मिलाएं। जैसे 3 लीटर पानी के अंदर 1 ml स्टिकर जो चिपचिपा गोंद होता है उससे क्या होता है कि दवाई की गुणवत्ता बढ़ जाती है और लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। तो इस तरह से इस सुंडी को आप प्रबंधन कर सकते हैं।
1: अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तब ये
0: तब तब
1: छिड़काव
0: तब
1: आपको
0: छिड़काव
1: करना
0: करना
1: है।
0: है, अदरवाइज।
1: तो डॉक्टर साहब, कपास की खेती के साथ क्या किसी फसल चक्र को भी अपनाया जा सकता है?
0: जैसे कि आपने कपास की फसल ली है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट फसल आती है उसके अंदर आप गेहूं ले सकते हैं, और उसमें गेहूं चेंज करने से क्या होगा कि जैसे लगातार आप एक ही फसल लेते हैं तो कीटों का, बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है।
1: तो चलते चलते डॉक्टर साहब, क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे उन किसान भाई बहनों को जो कपास की खेती कर रहे हैं और चिंतित भी हैं गुलाबी सुंडी को लेकर?
0: देखिए, मैं किसान भाइयों को यही दूंगा कि एक तो आप जो भी फसल लेते हैं तो सबसे पहले तो बीज अगर आपको सही क्वालिटी का जो भी अनुमोदित भारत सरकार की जो दुकान है या जहां से भी बीज आपको मिलता है वहां पे पक्का बिल जरूर लें उससे, जहां से भी बीज अगर आप खरीद के लाते हैं। अगर आपके क्षेत्र के अनुसार अनुमोदित किस्म आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। दूसरा ये है कि इस समय जो तापमान चल रहा है आपको ये ध्यान रखना है कि आंधी बारिश का भी दौर चलता है तो बीज महंगा आता है और कुरंड होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो मौसम विभाग के जरूर संपर्क में रहें।
1: और सिंचाई व्यवस्था
0: और
1: का भी, तो
0: सिंचाई का,
1: उसका
0: बिल्कुल
1: भी बता दें
0: सिंचाई
1: डॉक्टर
0: का,
1: साहब, कितने बार करनी है, कैसे करनी है?
0: सिंचाई का ऐसा होता है कि इसमें जो पहली सिंचाई है वो जितनी देर हो सके उतनी देरी से करनी चाहिए। उससे ये होगा कि उसकी जड़ें अच्छी मजबूत हो जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव करीब 50 से 60 दिन तक कपास की फसल में शुरुआती अवस्था में नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: अगर हम शुरुआती अवस्था में ही किसी कीटनाशक दवा का छिड़काव कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है, जो हमारे प्राकृतिक दोस्त हैं खेत के अंदर पनप रहे हैं, वो सबसे पहले खत्म होते हैं
1: खत्म हो
0: और
1: जाते
0: उससे दुश्मनों की तादाद ज्यादा बढ़ जाती है
1: जी,
0: और
1: बिल्कुल।
0: फिर हमको उसको प्रबंधन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
1: तो सजग किसान ही सफल किसान होता है, और समय पर पहचान और सही प्रबंधन से कपास की फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जो आज जानकारी दी उससे किसान भाइयों को जो कपास की खेती कर रहे हैं बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा और सुरक्षित भी वो अपनी कपास की खेती को रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन। डॉक्टर देवराम बाजा से बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा, जो कि कपास की बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को उन्होंने दी है। इससे वो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ होगा, और जिन्होंने कपास की फसल लगा रखी है
3: सुंडी से बचाव कैसे करना है,
2: बिल्कुल
3: उन्होंने बहुत अच्छी
2: बीमारियों से
3: तरीके
2: जो
3: से
2: बचाव
3: समझा।
2: हैं वो सब आपको मिल गई होंगी इसकी पूरी तरह से जानकारी।
3: और अब वंदना बहन, क्यों ना अब एक हम
2: बाइट भी सुनवाते हैं, एक बाइट सुनवाते हैं इफको की 55वीं वार्षिक आम सभा पर, और बातचीत कर रहे हैं इसमें प्रबंधक निदेशक श्री के जे पटेल से, PS भाटी जो कि इफको के निदेशक हैं श्री के जे पटेल। तो इनसे सुनते हैं ये बातचीत।
4: किसान भाइयों, आपको बहुत ही जानकर खुशी होगी कि इफको की 55वीं आम सभा की बैठक हुई है और इसमें जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे जो किसानों के मुद्दे हैं वो सब हल कर दिए, और जैसा कि आप जानते हैं भाई इफ्को आपकी अपनी संस्था है, इसलिए आपको जिस तरह देश में कोई भी दिक्कत आती है तो हम सब साथ रहते हैं। हमारे साथ हैं इफ्को के प्रबंध निदेशक श्री के जे पटेल साहब, जिन्होंने आज AGM आम सभा की बैठक में बहुत सारी चीजें किसान भाई आपको बतानी है। तो पटेल साहब, किसान भाइयों क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारे किसान भाई कम से कम खाद का उपयोग करें, जो आपके उपयोगी इफ्को के जो खाद है उनका प्रयोग करें?
5: बस मैं एक ही बात किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ इफ्को के माध्यम से। देखिए, देश में केमिकल फर्टिलाइजर जो हम उपयोग करते हैं, कोई भी किसान भाई उपयोग करते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। एक तो होता है शारीरिक नुकसान, क्योंकि प्रदूषण होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करके अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे हमारे किसान भाई, तो उससे हमारी धरती को नुकसान होता है, वायु को नुकसान होता है, पानी प्रदूषित होता है, और जो उपज निकलती है, जो फसल होती है, उस फसल में भी ऐसे तत्व चले जाते हैं जिसके चलते हुए आज हम सब परेशान हैं। तो हम अगली पीढ़ी की सोचें तो हमें ये देखना चाहिए कि केवल केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग से अब आगे नहीं बढ़ सकते। हमें यदि कोई फर्टिलाइजर का उपयोग करना है तो हमें, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को अपनाएं, हर किसान अपने एक एकड़ ज़मीन पे ऑर्गेनिक खेती करें। हमारे पास इफ्को में ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बायो स्टिम्युलेंट्स है, हमारे ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स है, हमारे नैनो फर्टिलाइजर्स है, जो कि इसका आविष्कार देश में हमने किया। हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे किसान यदि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करके, देश पे जो सब्सिडी का बोझ है, और वो बोझ आज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ये जो वेस्ट एशिया की वॉर के कारण कीमतें जो हैं रॉ मटेरियल्स की, चाहे लें आप या फर्टिलाइजर्स की लें, तो इतनी बढ़ चुकी है कि इस स्थिति में हमारे सब्सिडी का बोझ देश के जो तिजोरी पे देश के ऊपर आएगा उसको कम करें, और हम ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइजर्स को अपनाएं, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। और इफ्को इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हम गांव-गांव तक जाकर के, किसान किसान तक जाकर के हमारे जो बायो फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, बायो स्टिम्युलेंट्स, बायो डीकम्पोजर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको ज्ञात कराएंगे, उनको समझाएंगे। और इस समझ के साथ में अगर हमारा किसान भाई अगर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फार्मिंग की तरफ या नैनो फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, देश का भी फायदा होगा, किसानों का भी फायदा होगा, और हम सब समृद्ध होंगे।
4: बिल्कुल पटेल साहब, आपने सही कहा। इस साल की क्या उपलब्धियां इफ्को की रही हैं और भविष्य की क्या योजना है?
5: इफ्को की इस साल की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि हमने वर्ष 25-26 के दौरान जो हमें टारगेट दिए गए थे फर्टिलाइजर बनाने के, केमिकल फर्टिलाइजर्स खास करके यूरिया, DAP, NPK वगैरह का, वो हमने पूरा किया। मैं तो ये कह सकता हूँ कि यूरिया फर्टिलाइजर्स का जहाँ तक सवाल है, तो वर्ष 25-26 के दौरान जो हमको डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर से जो एक क्वांटिटी बनाने के लिए कहा गया था, उस लक्ष्य से भी हमने पार करके 2,00,000 टन और अधिक यूरिया बना करके उसका उत्पादन करके ये साबित कर दिया कि इफ्को हमारे किसानों के लिए, हमारे देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित है और आगे भी रहेगी।
4: आखिर में किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे किसान भाई पूरी खेती के साथ अच्छा काम करें और संतुलित खादों का भी प्रयोग करें?
5: देखिए, किसान भाइयों को मैं एक ही बात का रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप किसान भाई, हम समझते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, खेत खलिहान में जब इतनी मेहनत होती है तब जाके फसल आती है, और वैसे आपकी जो मेहनत है उसको कभी भी बेकार नहीं होना है। और एक इफ्को जैसी संस्था जो कि किसानों की संस्था है, किसानों ने इसको इन्वेस्ट किया है, और ऐसे किसानों के लिए जो काम करने वाली संस्था है, इसकी तरफ से इसके प्रबंध निदेशक के रूप में मैं किसानों को एक आह्वान करता हूं कि मेरे किसान भाइयों, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को अकेले अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं तो आप 25% कम कीजिए, 50% कम कीजिए, नई टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइजर्स अपनाइए, आप देखिएगा देश भी आगे बढ़ेगा, सब्सिडी का बोझ कम होगा। 2,00,000 करोड़ की सब्सिडी हमने देखा है कि आज पिछले वर्ष हमने इतने खर्च किए, देश तो पूरा सक्षम है, जितनी जरूरत किसानों की है उतनी ही फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमें आदेश है सरकार की तरफ से। लेकिन हम किसानों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये सब्सिडी का जो बोझ है उसको कम हो जाएगा, अगर आप 25% भी बोझ कम कर देंगे, जो पैसे बचेंगे ना वो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, वैसे ये उपयोग किया जाएगा, देश का भी भला होगा, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से बाहर से आने वाले जो रॉ मटेरियल्स या फर्टिलाइजर्स हम विदेशों से खरीदते हैं, वहाँ हमारा पैसा जा रहा है, वो पैसा भी जाना बंद होगा, रुपये की कीमत जो आज डॉलर के सामने गिरती जा रही है उसमें भी फायदा होगा।
4: बिल्कुल सही बात है पटेल साहब, आपने जो किसानों को आह्वान किया है, आपकी बात को भी बिल्कुल समझेंगे और उसको अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो अभी आप एक बाइट सुन रहे थे इफको की 55वीं वार्षिक आम सभा, और इसमें बातचीत कर रहे थे प्रबंध निदेशक श्री के जे पटेल से पीएस भाटी। तो ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी थी।

0: और अब वंदना बहन क्यों ना अब हम थोड़े जो बाजार के जो भाव हैं हम अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दे दें।
1: जी बिल्कुल, हरियाणा की मंडियों से कुछ भाव हमारे पास हैं वो हम अपने भाइयों को बता देते हैं। गेहूं का इस वक्त जो रेट चल रहा है वो है 2585 रुपये प्रति कुंटल। धान का जो भाव है वो 3500 रुपये प्रति कुंटल है और सरसों जो 7800 रुपये प्रति कुंटल है। और आजादपुर मंडी में आलू का भाव है 1200 रुपये प्रति कुंटल।
0: जी हाँ, और अगर बात करें हम दालों की तो अरहर दाल का जो भाव रहा है वो रहा है 12,500 और गुड़ का भाव रहा है 7,000। और बात करें अगर हम चीनी की तो चीनी का जो भाव रहा वो रहा 4,150। और वंदना बहन कल के कार्यक्रम की भी हम क्यों ना जानकारी दे दें अपने भाई बहनों को। जी हाँ, कल आप 6:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार और शाम 7:05 पर हमेशा की तरह आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।
1: जी हाँ,
0: और भाई जाते जाते हम यही कहेंगे वंदना बहन की गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, तो ऐसे में हमारे जो भी भाई बहन हैं इस गर्मियों में अपना पूरा ख्याल रखें और पानी खूब ज़्यादा पिए और साथ ही साथ आप धूप में थोड़ा कम, मतलब खेतों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सुबह जा करके खेतों का काम निपटाएं और
1: सुबह में फिर शाम को यानी दोपहर में आप खेतों में ना रहें, क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है वो बहुत ही धूप वाला होता है और उससे आपके स्वास्थ्य को फर्क पड़ सकता है, क्योंकि लू चल रही होती है। अगर किसी को लू लग जाती है तो उसका तुरंत चिकित्सक के पास जाकर इलाज करवाएं, क्योंकि लू लगने से व्यक्ति के सांसों में भी दिक्कत आ जाती है और शरीर में भी कमजोरी महसूस होती है।
0: जी हाँ, और ऐसे में खाने पीने का भी आप पूरा ख्याल रखें, बाहर की चीज़ें, खुली चीज़ें, कटी फटी चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें, मतलब साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। और भाई हम तो ये कहेंगे इस मौसम में आप अपना सर सूती कपड़े से ढकें और खूब सारा पानी पिए।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम अपने भाइयों से लेते हैं विदा। कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। और लीजिए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं कुछ गज़लों का।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे जगजीत सिंह की गाए कुछ गज़लों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैमरी, आ नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
4: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ कि छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कांग्रेस नेता अल्पा लांगवा को दिल्ली की एक

0: और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावाधिनी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामासामी पाई स्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, टागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह में दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता अलका लांबा को वर्ष 2024 में जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला करने से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने लांबा को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर दलीलें सुनने के लिए 5 जून की तारीख तय की है। अभियोजन पक्ष ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा पर 29 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के काम में बाधा डालने और एक सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया था। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने आज केंद्र सरकार के उस आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई जिसमें क्लब को अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सरकार को सौंप देने को कहा गया है। न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए कल का दिन तय किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब से 5 जून तक अपना परिसर वापस सरकार को सौंपने को कहा है। सरकार का कहना है कि 27 एकड़ का ये जमीन का टुकड़ा रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
3: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सरकार की मेट्रो मंडे पहल के तहत अपने आवास से दिल्ली सचिवालय तक मेट्रो और DTC बस से यात्रा की। श्रीमती गुप्ता ने नागरिकों से साझा और टिकाऊ परिवहन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अगर अधिक से अधिक नागरिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाते हैं तो इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने के साथ साथ प्रदूषण भी कम हो जाएगा। मेट्रो मंडे अभियान के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज अपने आवास से दिल्ली विधानसभा तक मेट्रो से यात्रा करके पहुंचे। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन संरक्षण के आह्वान से प्रेरित ये पहल नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने और ईंधन बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दिल्ली की उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत आज दिल्ली नगर निगम की आम सभा की बैठक में शामिल होने के लिए ई व्हीकल के माध्यम से कार पूलिंग करते हुए

0: नगर निगम मुख्यालय पहुंची। ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज बताया कि सभी पार्षदों को 50-50 लाख रुपए की विकास निधि जारी की गई है। इससे विभिन्न वार्डों में नालियों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी। ये निर्णय दिल्ली सरकार निगम की सामान्य सभा की बैठक के दौरान लिया गया। श्री वाही ने बताया कि दिल्ली की सड़कों की बेहतर सफाई और धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा 14 नए यांत्रिक सड़क स्वीपर खरीदे गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात की और दोनों राज्यों के आपसी सहयोग को और मजबूत करने तथा विकास के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दोनों राज्यों का सतत विकास और परस्पर सहयोग विकसित भारत के साझा लक्ष्य को गति प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं लिया। एक रिपोर्ट।
1: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह की दलीलों पर संज्ञान लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। राजधानी के दो प्रमुख सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक ढांचे के अंतर्गत प्रतिष्ठित गुणवत्ता प्रमाणित मान्यता प्रदान की गई है। राजधानी के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल ने 96% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ओखला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में अहम समीक्षा की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को उन्नत करने को लेकर पिछली सरकारों ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया।
2: दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है। पिछले 25 सालों से लगातार सरकारें इंश्योरेंस देती रही, लेकिन किसी ने नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए कमिटेड है कि हमने हर सूरत में अपने 5 साल के टेन्योर में यमुना जी की सफाई करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि जो उसके अंदर पानी आता है, जो अलग अलग जगह से एसटीपी के माध्यम से, सीईटीपी के माध्यम से आता है, वो साफ जाए। हम सारे एसटीपी को, सीईटीपी को जहां जहां डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है वो भी कर रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से इस महीने की 6 से 23 तारीख के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में लगभग 2,65,000 लोगों तक राहत पहुंचाई गई। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए लगभग 1,13,900 लीटर ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन यूनिट्स के माध्यम से 1,00,000 से अधिक ORS पैकेट बांटे गए, जिससे लोगों को लू और पानी की कमी से बचाया जा सके। साथ ही तेज धूप से बचने के लिए 40,000 से अधिक गमछे और 30,000 से अधिक कैप भी वितरित की गयी। उन्होंने बताया कि राजधानी के विभिन्न जिलों में विशेष कूलिंग जोन भी स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को आराम करने और गर्मी से राहत पाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि हर कूलिंग जोन में 100 कुर्सियां की बैठने की व्यवस्था, ठंडा जल, 5 कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। इन कूलिंग जोन के संचालन और सहायता के लिए प्रत्येक स्थान पर 10 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ये भी सुनिश्चित किया गया है कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के वाहनों की जगह प्रतिदिन बदली जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों और जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंच सके। ये अभियान जुलाई महीने तक जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कांग्रेस नेता अलका लांबा को दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2024 में जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी ठहराया। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के पार्षदों को 50-50 लाख की विकास निधि जारी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी में लू का येलो अलर्ट, अगले 3 दिन तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं और 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका में कुछ सुंदर से गीत। तो शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ। और आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी की आवाज़ में फिल्म आईना से ये गीत, और लीजिए अब सुनते हैं कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना।

दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहिब, हौसलों से उड़ान होती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सड़क फिल्म से ये गीत, और लीजिए आप सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दलाल का ये गीत।

दोस्तों, जीवन में किए गए अच्छे कर्म समय के साथ अवश्य लौटते हैं, कभी अवसर बनकर तो कभी आशीर्वाद बनकर। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें तो इसका फल क्या होगा। हमें अच्छे कर्म बिना कुछ मांगे या सोचे करते रहना चाहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गीत मालिका में कुछ सुंदर फिल्मी गीतों का। ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत

0: भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
4: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: Several key agreements were signed.
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
5: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
7: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: लाइक मेट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल। क्या मैं तैयार?

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया।

0: वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under-23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
2: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
1: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
3: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded posthumously in public service category. Besides Sata Vadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art, while advertising legend Piyush Pandey was honored posthumously. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received Padma Bhushan for his contribution in trade and industry, and Dr. Kallipatti Ramaswamy Palaniswamy received the award for his contribution in the field of medicine. मेडिसिन. अमॉन्ग दोज ऑनर्ड विथ पद्मश्री इंक्लूड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागा राम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव एंड कुमार बोस. फॉर द ईयर 2026, द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 131 पद्म अवार्ड्स इंक्लूडिंग 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री. द रिमेनिंग पद्म अवार्ड इज विल बी

यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 9:15 हुए हैं। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस का आगाज़ होता है। लीजिए सुनिए उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। आपसे कुछ ही देर में यानी 9:20 पर सुनिएगा मोहम्मद अली की तहरीर जमजम की बरकत के मौजू पर।

9:45 पर खबरें नशर की जाएंगी। 9:55 का वक्त रहेगा हेल्थ टिप्स का। शब के 10 बजे सुनिएगा लिटरेरी मैगजीन आईना।

11:30 पर सुर्खियों में प्रोग्राम सुनिएगा। 11:45 पर शंकर शंभु कंवाल और हमनवाओं से कवारी सुनिएगा। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी। 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में सुनिएगा पंडित विनय कुमार अग्रवाल का सितार पर बजाया राग जयवंती।

मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे इस्माइल अगर पानी को अपने हाल पर छोड़ देती तो पानी जारी रहता। अल्लाह ताला ने यह चश्मा हजरत इस्माइल की जान बचाने के लिए जारी किया था। हजरत हाजरा ने सबसे पहले इसके इर्द गिर्द पत्थर की एक दीवार तामीर की ताकि इसका पानी महफूज हो जाए और यहाँ वहाँ ना बहे। एक बेआबो गियाह सहरा में पानी का चश्मा पैदा होना किसी मोजज़े से कम न था। बिलाखिर पानी की कसरत होने की वजह से इस खित्ते में एक बड़ी आबादी ने सुकूनत अख्तियार कर ली और देखते ही देखते मक्का ने मुल्के शाम और यमन के दरमियान की तिजारती शाहरा में मरकजियत हासिल कर ली। ये अम्र यकीनी है कि इस्लाम से कबल भी कदीम जमाने में लोग इस जमजम को मुकद्दस तसव्वुर करते थे। इसकी तस्दीक जमाने जाहिलियत के एक शायर के कहे गए इस मिसरे से भी होती है। वो कहता है, मुद्दते मदीद से ईरानी चाहे जमजम के इर्द गिर्द दुआएं मांगते थे। जमाने जाहिलियत में एक कबीला बनु जुरहम ने जमजम के कुएं को एक मरतबा पार दिया था और अरसे दराज तक ये इसी हालत में लोगों से पोशीदा रहा। अलबत्ता चाहे जमजम की बाबत लोगों को इल्म था, लेकिन उसके जाए वकूर से वो बेखबर थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को, जो 6वीं सदी ईस्वी के वस्त में मौजूद थे, एक मरतबा ख्वाब में जमजम के चश्मे को दोबारा जारी करने पर मुतवज्जे किया गया और उसके जाए वकूर की निशानदेही भी कर दी गई। बाद में उन्होंने ख्वाब में बताई हुई जगह पर खुदाई करवाई और जमजम के कुएं को दरियाफ्त कर लिया। उन्होंने इसके इर्द गिर्द ईंटों की दीवारें तामीर करवाईं। अब्दुल मुत्तलिब ने सिकाया कायम किया। ये एक ऐसा ओहदा था जिसके जिम्मेदार जमजम के पानी से हाजियों की खिदमत अंजाम दिया करता था। इस्लाम आने के बाद भी पैगम्बर इस्लाम ने सिकाया के ओहदे को बाकी रखा, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उसकी जरूरत ना रही तो उसे खत्म कर दिया गया। इस्लाम आने के बाद भी जमजम के पानी की वो अजमत बाकी रही। इसे अल्लाह ताला ने अपने करम से हजरत इस्माइल और हाजरा के लिए जारी किया था। आगे चलकर उन्हीं की नस्ल से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जमजम की फजीलत व अजमत के मुतालिक आपकी बेशुमार हदीसें मौजूद हैं जो आज भी मुसलमानों को उसके मर्तबे व अहमियत का एहसास दिलाती रहती हैं। इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद भी इस पानी की अजमत की वजह इसमें खुदा की तरफ से वदीयत की हुई वो खूबियां हैं जो आम पानी में नहीं होती। कबल इस्लाम से लेकर पूरी इस्लामी तारीख में जिन लोगों ने जमजम पर लिखा है, उन्होंने बहुत से ऐसे वाकयात और मिसालें पेश की हैं जो ये साबित करती हैं कि तारीख के मुख्तलिफ अदवार में लोग मुसलसल इस पानी की बरकतों से बहरावर होते रहे हैं। आइंदा सतूर में हदीस नबवी और चंद वाकयात की रोशनी में इस अम्र की वजाहत आ रही है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जमीन पर सबसे अच्छा पानी जमजम है, जो खानों में एक खाना और बीमारियों से बायस शिफा है। सहाबाए रसूल का अकीदा था कि जमजम प्यास बुझाने के अलावा भूख भी मिटा देता है। वो इसे शबा कहा करते थे, जिसके माना पेट भर देने वाला के होते हैं। एक सहाबी का बयान है कि वो तंग हाली के जमाने में जमजम का पानी अपने अहलो अयाल को पिलाते थे, जिससे उनका पेट भर जाता था। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जमाने जाहिलियत में लोग भूख मिटाने के लिए जमजम का पानी पीते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक मर्तबा सहाबी रसूल अबू जर गिफारी ने काबे के पर्दों के पीछे 30 दिन और रात तक कयाम किया। एक मर्तबा रसूलुल्लाह उनके पास तशरीफ लाए और दरियाफ्त किया कि ऐ अबू जर, इस पूरे अरसे में तुम्हारे खाने का इंतजाम कौन करता था? तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो सिर्फ जमजम का पानी है जिसे मैं पीता हूँ और ये मेरी भूख प्यास दोनों ही मिटा देता है।
اس پر آپ فرمانے

0: लगे कि बिलाशुबा जमजम बाबरकत है और खाने वाले के लिए खाने की हैसियत रखता है। भूख मिटाने के अलावा जमजम में बीमारियों से शिफा दिलाने की काबिलियत भी मौजूद है। रसूलुल्लाह बीमारों को इससे नहलाते और उन्हें जमजम पिलाते थे। 14वीं सदी के एक मशहूर आलिम इबन कय्यिम का बयान है कि मैंने और मेरे अलावा दूसरे लोगों ने भी जमजम पीकर यह तजुर्बा किया है कि इससे अजीबोगरीब किस्म की बीमारियां जाती रहती हैं और मुझे जमजम की वजह से कई बीमारियों से शिफा मिली है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जमजम जिस चीज के लिए पिया जाए वो उसी के लिए है। मुसलमानों का इस हदीस पर हमेशा अमल रहा। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जब हज किया तो वो जमजम के कुएं के पास गए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मैंने एक हदीस सुनी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम उसी चीज के लिए है जिसके लिए उसे नोश किया जाए और मैं रोजे कयामत की तिशनगी से बचने के लिए उसे पी रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जब जमजम पीते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह, मैं इल्मे नाफे, रिज्क की कुशादगी और बीमारी से शिफा का सवाल करता हूँ। जमजम की इन्हीं बरकतों की वजह से मुसलमान जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हज करने मक्का मुकर्रमा जाते हैं तो वापसी में जमजम तोहफे के तौर पर अपने साथ लेकर लौटते हैं और उसे अपने अजीजों अकारिब में तकसीम करते हैं। ये अमल हर मुस्लिम मुआशरे में तकरीबन आम है और ऐसा करना मुस्तहब समझा जाता है।
1: समय नबी आप सुन रहे थे हज पर ये तकरीर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डी फ्री डिश पर। और ये आप सुनिए सादिया अफरोज से नाते रसूल मकबूल।
2: उनके पैया परब और मर जाए बहम, उनके

0: समय नबी आप सुन रहे थे सादिया अफरोज से नाते रसूल मकबूल। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। 9:45 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप असगर अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोरा आफाक वायलिन के माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीदकारी में तेज़ रफ्तारी लाने के गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विक्की और अक्षय देरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैम्पियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजरा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारस्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया। भारत की शोरा आफाक वायलिन के माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेज़ी हर्फ एफ से शुरू होने वाली 3 चीज़ों के नामों पर मज़ीद तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत को उजागर किया। ये 3 चीज़ें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और ज़रे मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही। वजीर ख़जाना ने वाज़ा लफ्ज़ों में अलबत्त ये भी कहा कि भारतीय मईशत ने मुज़ाहमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत की छोटी सनतों की तरक्यात से मुतालिक बैंक SIDBI के क़याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSME के निज़ाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनत

0: किया है। मौसमियात महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद तर गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। वियतनाम के डा नांग शहर में एशियाई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 सोने के तमगे हासिल किए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों को जदीदकारी में तेज़ रफ्तारी लाने के गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और कुश्ती में भारत के पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और लीजिए सामाइन, अब सुनिए सेहत के हवाले से कुछ बातें। प्रोग्राम है हेल्थ टिप्स। सामाइन, गर्मियाँ अपने शबाब पर हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ बातों का ख्याल रखना। मौसम बदलने के साथ साथ और मौसम पूरी शबाब पर आने पर हमें बहुत सी बातों का ख्याल रखना होता है। अगर हम ज़रा सा भी अपनी सेहत की तरफ से लापरवाह हुए तो ये हमारे लिए परेशानी का बाइस होता है और बीमार पड़ने का ख़तरा बढ़ जाता है। हर मौसम में, चाहे वो शदीद सर्दी हो या शदीद बरसात हो या फिर शदीद गर्मी, हमें अपनी सेहत के हवाले से बेदार रहना है। ज़रा सी लापरवाही हमें बीमार कर सकती है। जैसे इस वक्त गर्मियाँ पूरे शबाब पर हैं, शदीद गर्मी से बचने के लिए ख़ुद को हाइड्रेट रखें। हल्के और खुले रंग के कपड़े, सूती कपड़े पहनें और धूप में निकलने से गुरेज करें। पानी की कमी ना होने दें। दिन भर में पानी के साथ, नारियल पानी के साथ 10 गिलास पानी पिए। नमकीन लस्सी, लीमू पानी या छाछ, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाजुन बरकरार रखता है। ठंडे मौसमी फल खाएं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा और पपीता अपने खुराक में शामिल करें। इनमें पानी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। भारी और तली हुई चीज़ों के बजाय हल्का और ताज़ा खाना खाएं। शदीद धूप से बचने के लिए अच्छे सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, आंखों की हिफाजत रहेगी इससे। हल्के रंग के सूती ढीले कपड़े पहने, घर पर रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। पानी साथ रखें और कुछ हल्का फुल्का खाना भी अपने साथ रखें। धूप से बचाव करें, कड़ी धूप में बाहर निकलने से गुरेज करें। गर्मी के मौसम में तेज़ धूप और आलूदगी से चेहरे, हाथों और पैरों में टैनिंग हो जाती है, यानी जो जल्द है वो झुलस जाती है। कैसे करें इस टैनिंग यानी धूप से झुलसी हुई जल्द को ठीक, बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।

धूप से झुलसी हुई जिल्द को कैसे ठीक करें, इसके लिए आप बाज़ार से भी कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। साथ साथ अपने घर में भी कुछ घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल से कुछ ऐसे मास्क तैयार कर सकते हैं जो टैनिंग को ख़त्म करते हैं। सूरज की तमाज़त के सबब जिल्द अपनी कुदरती चमक खो देती है और स्याह या फीकी नज़र आने लगती है। ऐसी सूरत में बाज़ार से प्रोडक्ट न लेने के बजाय कुछ घरेलू इलाज इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले बेसन का फेस मास्क बनाएं। हम आपको बता दें कि बेसन जो कि एक कुदरती फेस वॉश है, आपको करना क्या है, 2 चम्मच बेसन और उसमें थोड़ा सा दही डालें, चाहें तो थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला लें और थोड़ा सा शहद भी। इस पेस्ट को अच्छी तरह से अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएं इस मास्क को।

से टैनिंग ख़त्म होगी। दूसरा मास्क है नींबू और शहद का। एक चम्मच नींबू, एक चम्मच शहद को अच्छी तरह मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। नींबू एक कुदरती ब्लीच है, जबकि शहद जिल्द को नमी देता है। इसके अलावा आलू को कद्दूकस कर लें और उसके रस को कॉटन की मदद से टैनिंग वाली जगह पर लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को मिलाकर एक पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। सूखने पर ठंडे पानी से धो लें। ये टैनिंग को कम करने में बहुत मदद करता है। इन सब बातों का ख्याल रखें। इसके अलावा बाहर निकलने से पहले कोई अच्छा सा सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाएं। अगर आप घर पर भी हैं तब भी कोई अच्छा सा लोशन या मॉइस्चराइजर लगा कर रहें। तो समय ये थी कुछ सेहत से जुड़ी बातें। आज के लिए इतना ही।

0: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए अब सुनिए लिटरेरी मैगजीन आईना के तहत डॉक्टर सगीर अफराहिम की तहरीर उर्दू में नए तनकीदी रुझानात।
1: शेर व अदब में जांच व परख, अच्छे बुरे खरे खोटे में फर्क व तमीज का नाम तनकीद है। ये लफ्ज अंग्रेजी इस्तिलाह क्रिटिसिज्म का मुतरादिफ है, जिसके लुगवी माने दकीका संजी, नुक्ताचीनी और हरफगीरी के हैं। उर्दू में नकदो इंतकाद के अल्फाज भी इसी मफहूम में इस्तेमाल हुए हैं, जो लुगवी एतबार से ज्यादा सही हैं, लेकिन लफ्ज तनकीद इतना आम हो चुका है कि इससे इन्हराफ मुमकिन नहीं है।
2: हर दौर में अदब को परखने, समझने और फैसला करने के मेयार बदलते रहे हैं। कभी खारजी मुहासिनों मुआइब तलाश किए गए, उरूज़ो कवायद सर्फ नह और फसाहत बलागत पर जोर दिया गया, तो कभी अदबी फन पारे की जेरी लहरों की छानबीन पर तमाम तर तवज्जो सर्फ की गई है। कितनों ने अदब को महज दिल बहलावे की चीज, तफरी व इनबिसात का जरिया समझा है, तो कुछ लोगों का तस्वुर यह रहा है कि अदब जिंदगी का आईनादार है। इसके तनाजुर में हम शख्सियत को जांच सकते हैं। बाज इसका ताल्लुक नफ्सियाती ख्वाहिशों और जहनी उलझनों से जोड़ते हैं, तो बास के नजदीक इसके तमाम ताने बाने माशी, सियासी और समाजी हालात से जुड़ते हैं। बहरहाल नए उसूलों और पुराने नजरियों की कश्मकश के मुतजाद पहलू बराबर रबदम रहे हैं, और इन्हीं मुस्बत और मनफी पहलुओं के तहत कुव्वत नकद और इंतकाद को फरोग मिला है।
1: सहूलत के पेश नजर इनको हम दो बुनियादी दबिस्तानों में तकसीम कर सकते हैं, एक तजर्बाती जिसे हम खारजी या इफादी भी कह सकते हैं, और दूसरे नजरियाती जिसे दाखिली या तखयुली के नाम से मंसूब कर सकते हैं। तजर्बाती दबिस्तान के तहत मौजू और मवाद आता है, इसमें ठोस और मादी दुनिया के तगैर व तबदुल को सामने रखा जाता है, मुहरकात पर जोर दिया जाता है। नजरियाती या दाखिली दबिस्तान का काम ऐसे तनकीदी उसूल और नजरिए वजा करना है जिनकी रोशनी में किसी फनकार या फन पारे की जांच परख की जा सके। इसमें उसूलों की बहस होती है, हयात पर जोर दिया जाता है। अव्वल नजरियाती दबिस्तान के पेशरो हाली और दूसरे के शिबली करार दिए जा सकते हैं। इन बुनियादी जावियों के जेली रुझानों में अमली, फनी, मार्क्सी, समाजी, तारीखी, साइंटिफिक, तासुराती, जमालियाती, नफ्सियाती, असातीरी, वजूदी और साख्तियाती तनकीद की शाखें अहमियत की हामिल हैं। जदीद तरीन रुझानात में उसलूब और रद्द तामीर नहायत अहम है।
2: अमली तनकीद एक ऐसी तख्लीक है जो किसी भी अदब पारे के बारे में तफसील से मालूमात फराहम करती है। इसमें किसी भी शह पारे का बराह रास्त तज़िया किया जाता है, नाकिद तख्लीक के पस मंजर पर नजर नहीं डालता, बल्कि जो अदब पारा उसके सामने होता है उसके अज्जाए तरकीबी को परखता है, उसकी खूबियों और खामियों को उजागर करता है। अमली तनकीद में तख्लीकी जुबान की भी अहमियत हासिल होती है।
1: फनी तनकीद अदब को उसूली और रिवायती बुनियादों पर बरकरार रखते हुए खूबी और खामी को जांच लेने के बाद कदर व कीमत का ठीक ठीक अंदाज कायम करके फनकार या अदीब को बेउसूलीपन से बचाने की कोशिश करती है।

बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा मुनत और दीपक मुनत, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता और निहारिका, और ये मेलम तक पहुंचा है। मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान, बेगम शमा रफ़ी, सिंधी बुजुर्ग महाराज से किशोर वडटकर, शुभम वडटकर और पुन्नू वडटकर, और कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले और इनके बहुत सारे साथी। और अगली फरमाइश आई है आशु नारंग, सुरेश नारंग और विनोद सहारनपुर से, विनोद पुरी भी इनके साथ हैं। और ये अगली फरमाइश आई है ज़िला काजगंज यूपी से युगेंद्र नायक, गीता नायक और निहारिका नायक, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन और मयंक शर्मा, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन की फरमाइश हम तक पहुंची है मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, पश्चिम विहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल और डीके अलवी की। और समय अगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे, फिल्म का नाम है जबक, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, मौसीकार हैं चित्रगुप्त। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरालानी और भानु प्रकाश, जैन मंदिर वाली करी कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और नौरीन अंसारी, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बट गुजर, कैलाश मिस्त्री और घनश्याम, विष्णु कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शादाब खत्री, भाटापारा छत्तीसगढ़ से एमकेश्वर साहू, करण साहू, राहुल और चंपा साहू, फरक्काबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा से श्रीमती सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया और बाबू शिवा चौरसिया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नू लाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास और अंजू योगिता श्रीवास, सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार बिल्लू निषाद, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा, फिल्म का नाम है जबक, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

और समय अगला नगमा आप सुनेंगे फिल्म साथी का। आवाज़ है मुकेश की, नगमे की बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और मौसीकी तरतीब दी है नौशाद ने। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं पिलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर और इनके बहुत सारे साथी। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, परवीन सुल्ताना जी और महाराष्ट्र से रुपेश संगाई, महेश संगाई और प्रज्ञेश संगाई और उनके साथी। और कस्बा गरवाल मंडी बागपत उत्तर प्रदेश से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और ये फरमाइश आई है इरशाद अंसारी की। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी। गांधी चौक बारमेड़ राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, करण और इनके साथी। और ये फरमाइश आई है गंजनवारा से शमसुल कमर, राही शाहीन, फातिमा और अदनान शेख। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू और सुरेश। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। आतिश रेडियो लिसनर्स क्लब बिशनपुर गिरडी झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा। लीजिए समय सुनिए अपनी पसंद का ये अगला नगमा। फिल्म का नाम है साथी, आवाज़ है मुकेश की।

और समय नकला नगमा हम आपको सुनवाएंगे। फिल्म का नाम है जीने की राह। आवाज़ें लता मंगेशकर की, नगमा निगार हैं आनंद बख्शी और मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनने की फरमाइश की है आप सबने। चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा बानो और रईसा खातून। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नचानी, विनीत नचानी और मिथिल नचानी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और देवाश्री। और ये अगली फरमाइश आई है, फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है। रजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी से शाहजहाँपुर से मनमोहन रजावत, मधु रजावत और राशि रजावत। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज और सरफराज। नहरी चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव और सोनल प्रसाद। छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और अयूब खत्री। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किसुतासु। संभल से छोटे अंसारी। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिद्धा, अलका मिद्धा। और

और समय निशी नगमे को सुनने की कुछ और फरमाइशें हम तक पहुंची हैं। हर गोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू और पितर संधू, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और चैतन्या मस्कीन, गांव जाखोद राजस्थान से शबुदयाल खटक, विमला देवी खटक और पूजा खटक, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा और कुमकुम मिश्रा, खेल बाजार बानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद।

और छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश आई है कुमान सिंह पटेल, तेजस्विनी मिश्री मिष्टी और एकांश पटेल की। और अनारकली बाज़ार जरगांव से कमल पाठक, सुनील पाठक और गव्या मल्होत्रा। शराफ रोड राजकोट गुजरात से नूर मोहम्मद लखानी, जुबैदा लखानी और विहान लखानी। हिना साबरी आयज़ल इमाम मोहम्मद हसन निज़ाम झारखंड से फरमाइश पहुंची हम तक। और छोटी बलिया मुंबई करजस से अहमद भाई फूल वाले, जूही इकबाल फूल वाले और इमरान अहमद। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और रिधान। घंटाघर चौखंड वैसे संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। और समय नगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, आवाज़ है मुकेश की। सुनने की फरमाइश की है आप सबने। ये फरमाइश आई है फैज़ अहमद, शाकिर मुल्लानी मुल्ला जी और शब्बीर साबिर मुल्ला जी की, कर्नाटक से। नरोत्तम गौड़, हिमांशु गौड़ और यश गौड़ की फरमाइश आई है और लेक सिटी उदयपुर से। किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गुडाने। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू। बुरागवे नगर श्री रामपुर से मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा। मोदी चौक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और अशरफ खान। कापासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना परसीन पर नसरीन बागवान। छोटी बलिया तालुका करजत से अखलाक अहमद फूल वाले और आशु अहमद फूल वाले। तहसील रोड गंजुनवारा से कैच राही गुड़िया खानम। और ये फरमाइश आई है एम फारूक शेख की, गणेशपुर गंजुनवारा एटा उत्तर प्रदेश से, और इनके साथ हैं शेख क्षमा परवीन और बेबी मुस्कान। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा।

और समय लगना नगमा हम आपको सुनवाएंगे अनोखी रात फिल्म का। आवाज़ लता मंगेशकर की, मौसीकार है रोशन। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। राहत गांव के एम अमरावती महाराज से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर और अक्षय, गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, इनकी फरमाइश आई है रतन राम रतन टॉकीज गुंडलवाड़ी से, सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन और मज्जू बाबा। और छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और आपा ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, विदर्भाकोड़ से केसंजर संजीव राबे डाबे राव, सुनीता डाबे राव और डॉक्टर कौस्तुम्बु डाबे राव, छत्तीसगढ़ से शिवा यादव, राज यादव और चिंटू यादव, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद, निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रोमानी, मोहम्मद फसी और डॉक्टर मोहम्मद जमीर, अस्तुपरा ज़िला मऊ से मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक, यवतमाल से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनुश्री बुरांडे। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा, फिल्म का नाम है अनोखी रात, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: इम्पोर्टेंट है, आप क्या कहेंगे इस पर?
1: स्टेटमेंट में तो काफी चीजें उन्होंने कही जो अच्छी है, पर उसका जो नतीजा अगर असली निकालना है तो वो नेगोशिएशन से ही निकलेगा। जैसे हमारे ट्रेड नेगोशिएशंस अभी चल रहे हैं तो उसका क्या होगा, फाइनली उसका रूप क्या होगा वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो बातें सेक्रेटरी रूबियो ने कही क्या उसका कोई झलक उसमें दिखाई देता है, ये हम लोग असेस करेंगे। क्योंकि कहना एक बात है और इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि अमेरिका और इंडिया के संबंध जो है वो नेचुरली इन्फ्लुएंस करेगा बहुत लोगों को, हमारे देश को तो करेगा ही, उनके देश को करेगा और बाकी देशों को भी करेगा। क्योंकि बड़े बड़े देश हैं जो मिलिट्री और इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं, अमेरिका तो है ही मिलिट्रली और इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कंट्री, और इंडिया का भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो भार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो हमारे संबंध है ये इन्फ्लुएंस करेगा, दुनिया को करेगा, रीजन को करेगा और दोनों मुल्कों को करेगा।
0: पिनाक जी, कई बार कोशिश की गई कि व्यवसाय की डील क्रैक की जाए, ट्रेड नेगोशिएशन किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, पर अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। साथ ही साथ मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि रशिया पर लगे जो सैंक्शंस हैं, जितनी भी पाबंद हैं, वो इंडिया की तरफ टारगेट नहीं किए गए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ तो हैं लेकिन भारत और रूस के जो संबंध है उनके खिलाफ नहीं है। ये बात कितनी सच है और असल में प्रैक्टिकली कितना ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि इसका असर इंडिया US के रिलेशंस पर पड़ रहा है?
1: इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सैंक्शंस का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर तो पड़ ही रहा है
0: जी,
1: क्योंकि हम लोग उसके साथ बिजनेस करते हैं, हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप है और फिर तेल खरीदते हैं क्योंकि वो हमको सस्ते में मिल रहा था तेल। तो ये कहना कि ये इंडिया के खिलाफ नहीं है शायद कुछ हद तक सही है, पर बात तो ये है जो भी रशिया के साथ तेल खरीदता तो सबको इफेक्ट किया है, उसमें इंडिया भी है। तो हम तो उस नजरिए से देखेंगे कि हमको क्यों इफेक्ट हो रहा है, आप ऐसी नीतियां क्यों अपना रहे हो जिसमें हमें इफेक्ट हो रहा है। एक स्तर पर आप कहते हो जैसे रूबियो साहब ने कहा कि हम बहुत बड़े दोस्त हैं, पर दोस्त के खिलाफ इस तरह का एक्शन मतलब डायरेक्टली ना ले पर इनडायरेक्टली तो फर्क पड़ रहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही काम होना चाहिए। ये सैंक्शंस वगैरह जो है ये टेम्पररी है, कभी कभी वो उठा देते हैं फिर कहते नहीं हम फिर लगा देंगे, तो इस तरह की चीजों में काफी दिक्कत हो जाती है, सप्लाई चेन्स जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सैंक्शंस की नीतियों से हम लोग खुश नहीं हो सकते और कभी भी खुश नहीं होंगे।
0: पिनाक जी, आपने एक बेहद जरूरी शब्द कहा, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को आज की इस दुनिया में हर देश या हर उभरता हुआ देश या हर विकसित देश कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि सप्लाई चेन उनके लिए लाभकारी हो। क्या लगता है कि जितनी भी ट्रेड नेगोशिएशंस हैं अब या अब के बाद या इस विश्व की जो परिस्थिति है उसके बाद, इस बात पर निर्भर करेंगी कि सप्लाई चेन जिन देशों के बीच में जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको कितना लाभ देती हैं, और अब हम म्यूचुअल या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट से आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल अग्रीमेंट्स के विश्व की तरफ जा रहे हैं?
1: देखिए, वो तो मल्टीलैटरल WTO जो एग्रीमेंट्स थे वो तो ट्रंप साहब ने अपनी नीतियों के धक्के से उसको तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है ऑलमोस्ट, पर जो उसको मानते हैं उसके साथ तो चल रहा है, पर अब सब लोग बायलैटरल की तरफ झुक रहे हैं
0: जी।
1: क्योंकि जो सबसे बड़ा इकोनॉमी दुनिया में है वो अगर कहता है कि हम नहीं मानते हैं मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, एक तरफा उन्होंने वो डिसीशन लिया है। इसीलिए भारत भी EU के साथ बायलैटरल कर चुका है, उसके बाद नॉर्डिक स्टेट्स जो है उनके साथ भी करेंगे, सबके साथ ही अब करना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी चलाने के लिए ट्रेड बहुत जरूरी है और उससे सप्लाई चेन्स बहुत जरूरी है। तो सप्लाई चेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके लिए भी नीतियां बदलनी पड़ती है और इंडिया बदल रही है नीति, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई चेन्स के जो कई हब्स है वो अब यहाँ बनने लगे हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी जो इंटरेस्ट है वो देखना है, पर बायलैटरल हो जाए तो ठीक है, वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि अब जब मल्टीलैटरल आप मानने को तैयार नहीं है तो अमेरिका के साथ तो बातचीत कर ही रहे हैं हम, तो मल्टीलैटरल जो बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो जब हो जाता है तो तब फिर मामला फिर बैक टू नॉर्मल हो सकता है, पर नॉर्मल नॉट इन द सेंस कि जो दुनिया पहले थी जहां मल्टीलैटरल एग्रीमेंट सब मानते थे, पर वो दुनिया नहीं रहेगी अब बायलैटरल एग्रीमेंट्स की दुनिया में हम पहुंच गए।
0: तो पिनाक साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हो, जब मध्यस्थता ना हो पाए, तो किन मुद्दों पर बातचीत करती हैं सरकारें? आपके तजुर्बे से आप क्या बता सकते हैं श्रोताओं को कि वो कौन से नेगोशिएशन पॉइंट्स होते हैं जिन पर अंत में ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि चलिए हम अब इन पॉइंट्स पर

0: एक दूसरे से सहमति जताते हैं और अब आगे चलकर हम इस तरीके से अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ाना चाहेंगे।
1: ट्रेड का जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वहां पे एग्रीमेंट्स काफी हो जाती हैं कि अच्छा इस आइटम पर हम ये करेंगे, उस आइटम पर इतना ड्यूटी लगाएंगे, पर कुछ आइटम हमेशा बच जाती है क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं। अब हमारी तरफ से जो इंटरेस्ट है उस आइटम को हम चाहते हैं कि कम ड्यूटी लगे, और वो अपनी तरफ से बोलेंगे कि नहीं इस पे आप जीरो ड्यूटी कर दें। क्योंकि देखिए अमरीका ने जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये एक नीति अपनाई है कि जिन देशों के साथ हमारा एडवर्स ट्रेड इंबैलेंस है, यानी जो लोग हमें ज्यादा बेचते हैं और हम उन्हें कम बेचते हैं,
0: जी
1: उनके साथ हमारा रुख बदलेगा, और उन्होंने बदला भी चाइना के साथ हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए एक ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारे फेवर में है, वो 40-45 बिलियन डॉलर है। अब अमेरिका की ये नीति के बजाय अब वो ज्यादा हमको बेचना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप हमें ज्यादा बेचते हो पर हम नहीं बेच पाते हैं क्योंकि आपके टैरिफ ज्यादा है। और हमारी तरफ से हमने बोला ठीक है, आप ट्रेड एग्रीमेंट अगर कर लेते हैं तो बात हो जाएगी, तो हम लोग भी थोड़ा कम कर देंगे टैरिफ आपके अच्छे जो गुड्स हैं उन पर। फिर एक और बात थी कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो हमने मना कर दिया कि वो हम नहीं खोलेंगे, डेयरी एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि
0: जी
1: करोड़ों लोग इस पे निर्भर हैं और वो गरीबी की रेखा से ऊपर ही हैं और कुछ गरीबी रेखा से नीचे भी हैं, तो इसलिए उनका जो जीवन है हम नष्ट नहीं करना चाहते, तो इस पे तो हम अटल रहेंगे मुझे लगता है, पर बाकी जितने भी चीज हैं उनको दूसरी जगह कंसेशंस दे देंगे। तो इस तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो बैठ के कई हो जाता है, फिर कुछ बाकी रह जाता है, तो फिर बाकी चीजों पे जाके चर्चा होती है अंदरूनी भी, फिर बैठकर भी दूसरे मुल्क के साथ जो बैठते हैं उसके भी सब चर्चा होती है, और तब जाके डिसीशन निकलता है, फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज ही होता है, पर एक कॉम्प्रोमाइज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है।
0: बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और इसी बीच जो ये एक बदलता विश्व प्रारूप हमारे सामने है और किस तरीके से पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष चलता ही जा रहा है, अभी फिलहाल उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए, भारत चीन रिश्ते कितने अहम हो जाते हैं? भारत ने अब चीन के साथ व्यवसाय दोबारा धीरे धीरे धीमे धीमे ही सही ग्रेजुअली ही सही दोबारा शुरू किया है। चीन और रूस के रिश्ते हम सभी जानते हैं कि बेहद मजबूत हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमेरिका साथ नहीं है, वैसे ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भारत और चीन भी साथ नहीं है, लेकिन भारत और चीन ज्योग्राफिकली बेहद करीब हैं और हम जानते हैं कि इससे पहले आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते कितना ये तय करेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत रहते हैं?
1: ट्रायंगल जो हम बनाते हैं कि चीन, भारत और अमेरिका,
0: जी
1: इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मतलब इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं।
0: जी
1: और इसीलिए चीन के साथ भी हमारे इंटरेस्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीन भी बहुत बड़ा इकोनॉमी बन चुका है,
0: बिल्कुल,
1: और सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता,
0: बिल्कुल,
1: वो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। उनके यहाँ ऐसी चीजें हैं जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, वो 90% कंट्रोल करते हैं, तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप भी वहां पहुंचे थे बीजिंग उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर को भी फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए दबाव तो वो ट्रेड भी यूज करते हैं लोग दबाव बनाने के लिए, कि अगर आपके पास एक मोनोपोली हो किसी आइटम का, तब दूसरों को जब लेवरेज करते हैं तो आप फायदा देखते हैं अपने देश के लिए। चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड भी बहुत बड़ा है और हमारा जो ट्रेड है वो एडवर्स बैलेंस है हमारा, हम उतना नहीं एक्सपोर्ट कर पाते, और आप आज बाजार में देख लीजिए चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स हैं, गुड्स हैं, कितने भरे हुए हैं। चाइना हमारे यहाँ मोबाइल बनाते हैं, कई चीजें हैं जो उसपे होता है, इसलिए चाइना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग बड़े इंटरडिपेंडेंट है, पूरी दुनिया ही आज इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए नेचुरली ये नेगोशिएशंस करके, और इंडिया ने भी देखा कि अगर अमेरिका इस तरह से हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाता है तो हमें फिर दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, हमें दूसरों के साथ भी हमें ट्रेड की जो चिंता है उसको कैसे बढ़ाया जाए वो सोचना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में चाइना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कई चीजों में तो वो अमरीका से भी आगे चला गया, तो इसलिए हमें ये रियलिस्टिक पोजीशन तो लेना ही पड़ेगा। और चाइना के पास इन्वेस्टमेंट्स है, वो तो चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए,
0: बिल्कुल। पिनाक साहब, भारतीय मूल के जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, टैक्स भरते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो अमेरिका के ग्रोथ रेट में बहुत अहम योगदान देती है, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
1: देखिए वो तो कह रहे हैं कि

0: हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को ओवरऑल कर रहे हैं। अब जैसे सेक्रेटरी रूबियो ने कहा दिल्ली में अपने स्पीच में कि जो नया इमिग्रेशन पॉलिसी हम कर रहे हैं शायद उससे भारतीयों को ज्यादा फायदा मिले, तो देखते हैं कि उनकी नई इमिग्रेशन पॉलिसी क्या बनेगी और उसमें फाइनली क्या होगा इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट करने।
1: पिनाक जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए सामाइन, अब सुनिए शंकर शंभू कव्वाल और हम नवाओं से कव्वाली।

सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कल पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आंजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एमएसएमईज को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीदकारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाद वहां फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सभी 300 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में आज क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके में कल एक तेज रफ्तार बस के सड़क किनारे खड़ी दूसरी बस से हुई टक्कर में 17 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। और कुश्ती में भारत के पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों की फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को कल पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज्रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया। भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमत के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शातवाधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्ली पट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए इनाम दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल अंग्रेजी हर्फ एफ से शुरू होने वाली 3 चीजों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की जरूरत को उजागर किया है। ये 3 चीजें हैं फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजे लफ्जों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मईशत ने मजाहमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतालिक बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निज़ाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीदकारी के काम को तेज़ रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आगाज किया गया उनमें सिडबी मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को ताउन देना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्दे अमल पूरी देखभाल के साथ इस तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्की तरक्की का तहफ्फुज किया जा सके। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही की। गंडोला केबल कार के निजाम में तकनीकी खराबी के बाद ये कार्रवाई की गई है। बेस स्टेशन और फेज 1 के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब

पैदा होने वाली खराबी के बाद कल कई सयाह वहां फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मुकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाए मौके पर फौरन पहुंच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बाद कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बाहिफाजत महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदाम का कल नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर अहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम प्वाइंट जिनमें हवाई अड्डे बंदरगाहें और जमीनी सरहदें शामिल हैं पर जाँच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने अहलकारों से ये भी कहा कि वो पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में आज क्वाड वजराए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशी मिचो मोटेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वजरा तमाम तरजीही शुबों में क्वाड ताउन को फरोग देने, इन दिनों जारी क्वाड स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लेने और भारत बहरुलकाहिल खित्ते में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर इजहार ख्याल समेत बाहमी नौयत के दिगर बैन अलाक्वामी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। एक आज़ाद और खुले भारत बहरुलकाहिल के क्वाड तसव्वुर के पेश नज़र वजरा पिछले बरस 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुई तबादले ख्याल को आगे बढ़ाएंगे। इस बरस वजराए खारजा की मीटिंग आलमी गैर यकीनी और मगरबी एशिया के बहरान के वक्त मुनक़िद हो रही है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है जिसकी ज़्यादातर तवज्जो भारत बहरुलकाहिल खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम है। इत्तेहाद के मौजूदा सदर की हैसियत से भारत ये मीटिंग मुनक़िद कर रहा है। क्वाड मुल्क इस अज़्म के साथ यकजा हुए हैं कि वो पूरी दुनिया की बेहतरी और एक खुले, आज़ाद और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुलकाहिल खित्ते को ताउन देने की गरज से एक ताकत के तौर पर काम करेंगे और इसे एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जो खुशहाल और मुज़ाहिम हो। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके में कल एक तेज़ रफ्तार बस के सड़क किनारे खड़ी दूसरी बस से हुई टक्कर में 17 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि मरदान ज़िले के स्वात एक्सप्रेसवे पर यह हादसा पेश आया। बस मुसाफिरों को वादी स्वात की तरफ ले जा रही थी। पुलिस का कहना है कि मुतासरीन का ताल्लुक अपर डीर और बाजौर अजला से है। बांग्लादेश में कम से कम 15 अफराद हलाक और तकरीबन 10 अफराद उस वक्त जख्मी हो गए जब लोहे की रॉड से भरा एक ट्रक कल सुबह सवेरे तानागैल जिले में जमुना पुल की मशरकी राबता सड़क पर पलट गया। पुलिस ने इत्तला दी है कि यह हादसा कालीहाटी उप जिला में पेश आया है जब लोहे की रॉड से भरा हुआ एक ट्रक बेकाबू होकर शाहराह के किनारे पलट गया। इस ट्रक पर ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क के शुमाली हिस्से की तरफ जाने वाले मुसाफिर सवार थे। वियतनाम के डानांग शहर में एशियाई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में कल भारतीय पहलवानों ने शानदार कारकिर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 सोने के तमगे हासिल किए हैं। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में अक्षय तानाजी धीरे ने अपने हरीफ येलामैन को 2-4 से हराकर टॉप पोजीशन हासिल की है। इसी दौरान 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में विक्की ने भी शेरजोड पायोनोव को सख्त मुकाबले में 5-7 से हराकर सोने का तमगा हासिल किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कल पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आंजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीदकारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वजराए खारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके में कल एक तेज़ रफ्तार बस के सड़क किनारे खड़ी दूसरी बस से हुई टक्कर में 17 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं।

0: के साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आलिज सामाइन, अब सुनिए क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में पंडित विनय कुमार अग्रवाल का सितार पर बजाया राग जयवंती।

लता मंगेशकर और तलत महमूद को भी आपने सुना। फिल्म का नाम था तराना। मौसीकार थे अनिल बिस्वास और नगमा निगार थे प्रेम धवन। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आखिरी शब। और लीजिए अब सुनिए अगला नगमा। फिल्म का नाम है सज़ा। आवाज़ें लता मंगेशकर की और मौसीकार हैं SD बर्मन।

0: समय नबी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आखिरी शब, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12:50 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है।

सैयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में आज क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके में कल एक तेज़ रफ्तार बस के सड़क किनारे खड़ी दूसरी बस से हुई टक्कर में 17 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। और कुश्ती में भारत के पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र के एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। 17वीं जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को कल पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज्रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारस्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने यह अवार्ड हासिल किया। भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोशियारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए यह अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामासामी पल्लानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदरे जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल अंग्रेजी हर्फ एफ से शुरू होने वाली 3 चीज़ों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत को उजागर किया है। ये 3 चीज़ें हैं फ्यूल, फर्टिलाइजर्स और फॉरेन एक्सचेंज। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजे लफ्जों में अलबत्ता ये भी कहा है कि भारतीय मीशत ने मुजाहमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतालिक बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निज़ाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूरदराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीदकारी के काम को तेज रफ्तारी अता करना है। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग कंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही की। गंडोला केबल कार के निजाम में तकनीकी खराबी के बाद यह कार्रवाई की गई है। बेस स्टेशन और फेज वन के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब पैदा होने वाली खराबी के बाद कल कई सयाह वहां फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मुकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाए मौके पर फौरन पहुंच गई। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बाद कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बाहिफाजत महफूज मुकाम तक पहुँचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं।
मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदाम का कल नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर अहलकार के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम प्वाइंट्स जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें और जमीनी सरहदें शामिल हैं पर जाँच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने अहलकारों से यह भी कहा कि वो पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। ये खबरें आकाशवाणी से।

0: विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से दो दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। DGCA ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at a civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.T. Kumaraswamy were also present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah congratulated all the luminaries and changemakers who have been conferred with Padma Awards by President Draupadi Murmu. In a social media post, Mr. Shah said, Prime Minister Narendra Modi has reoriented Padma Awards as an institution to drive socio-economic progress by honouring the real changemakers, strengthening the society at grassroots. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials yesterday said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Omar Abdullah announced a probe into the malfunction and said action would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI, yesterday, Ms. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
1: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Union Minister Science and Technology Dr. Jitendra Singh yesterday met a high-level delegation led by Secretary General, Ministry of Science, Innovation and Universities of Spain Dr. Eva Ortega Peno in New Delhi yesterday. The meeting reflected the growing momentum in India-Spain scientific engagement and the shared commitment of both countries to deepen collaboration in futuristic and technology-driven sectors. And that is the end of this news bulletin.
4: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। इस वक्त रात के 1:10 हुए हैं और हुए हैं 8 सेकेंड। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम गीत सुनहरे के। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गीतों के संगीत में सफ़र की शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम गीत सुनहरे में, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा एवरग्रीन सॉन्ग्स जो भुलाए ना भूले।

तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत की हमने फिल्म सरगम के गीत के साथ, जिसमें भी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए कार्यक्रम

आगे बढ़ते हैं और अगला गीत जो मैं सुनवाने वाली हूँ वो एक ऐसी लोकप्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें जिसके गीत बेहद ही हिट हुए थे और इन गीत में आर डी बर्मन ने फिल्म के गीतों को आर डी बर्मन ने दिया जो कि बहुत हिट हुए और उन्हीं हिट में से एक गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म आ गली लग जा से।

श्रोताओं, अगला गीत जो हम सुनवाएंगे वो एक सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का एक बहुत ही भावुक और लोकप्रिय गीत है। इस गाने को किशोर कुमार ने गाया था और इसका संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया था। गीत के बोल अनजान ने लिखे थे। ये गीत फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार सिकंदर की दर्द भरी भावनाओं को दिखाता है। गाने में अधूरे प्यार और अकेलेपन का एहसास बहुत गहराई से व्यक्त किया गया है।

श्रोताओं, अगला गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत एक विश्वासघात और टूटे रिश्तों के दर्द को दर्शाता है। गाने के बोल बताते हैं कि कभी कभी दोस्त या अपने लोग ऐसा दुख दे जाते हैं जो दुश्मन भी नहीं दे पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक में आए सबसे दर्द भरे हिंदी फिल्म गीतों में गिना जाने वाला ये गीत फिल्म आखिर क्यों से दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। इस गाने को लता मंगेशकर और अमित कुमार ने गाया था, संगीत राजेश रोशन, गीतकार इंदीवर, कलाकार राजेश खन्ना, स्मिता पाटिल और टीना मुनेन है।

श्रोताओं, अगली पेशकश है फिल्म मेरी जीवन साथी से, और इस गीत को जो हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किशोर कुमार ने अपनी मधुर आवाज़ में गाया था। संगीत आरडी बर्मन ने दिया था और बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। ये गीत राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था और उनके रोमांटिक अंदाज को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। गाने की धुन बेहद मधुर और सुकून देने वाली मानी जाती है, और किशोर कुमार की गायकी और आरडी बर्मन के संगीत का ये शानदार मेल माना जाता है। ये गीत आज भी इतना लोकप्रिय है कि आज भी पुराने हिंदी रोमांटिक गीतों की सूची में सबसे लोकप्रिय गीतों में शामिल किया जाता है। राजेश खन्ना के करियर के सबसे प्रसिद्ध गीतों में इस गाने को गिना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा रोमांटिक गीत फिल्म मेरे जीवन साथी से।

श्रोता, अगला गीत जो आप सुनेंगे वो इस फिल्म की उस दौर की सबसे चर्चित और सफल हॉरर फिल्मों में मानी जाती थी, और इस फिल्म में कई बड़े सितारे एक साथ देखे गए। जी हाँ, बात करने हैं फिल्म जानी दुश्मन की, जिसमें कई सारे बड़े सितारे जैसे कि सुनील दत्त, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रीना रॉय, नीतू सिंह, रेखा, संजीव कुमार दिखाई दिए। फिल्म की कहानी एक रहस्यमय शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो गांव की नई दुल्हनों को निशाना बनाता है। गांव में डर और रहस्य का माहौल बन जाता है। बाद में पता चलता है कि इसके पीछे बदले और पुराने श्राप की कहानी जुड़ी हुई है। खैर, ये तो रही इस फिल्म की कहानी, लेकिन क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में आप गीतों को सुनेंगे, तो इस गीत को हम सुनवाते हैं, और इस फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत को हम सुनवाएंगे, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

बहुत ही बेहतरीन गीत आप सुन रहे थे फिल्म जानी दुश्मन से। श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते और सुनवाती हूँ अगला गीत, फिल्म उमराव चांद का एक बेहद मशहूर गजलनुमा गीत। इस गीत को आशा भोसले ने गाया था, संगीत खायम ने दिया था और बोल प्रसिद्ध शायर सहियार ने लिखे थे। यह गीत रेखा पर फिल्माया गया था और उनके अभिनय तथा अदाओं ने इसे अमर बना दिया। गाने में उर्दू शायरी की खूबसूरती और नज़ाकत साफ दिखाई देती है। आशा भोसले की गायकी को इस गीत के लिए बहुत सराहा गया। तो आइए सुनते हैं ये गीत, जिसे आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना उस दौर में किया करते थे।

नदिया के पार फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हेमलता की आवाज़ में। तो श्रोता, सुनवाती हूँ अगला गीत, जो कि है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म अर्पण से। गीत सुनवाने से पहले इस फिल्म की जो खास बात है वो है इसकी भावनात्मक कहानी। त्याग का विषय और रीना रॉय का गंभीर अभिनय माना जाता है। उस दौर में इसके गाने भी काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। उन्हीं लोकप्रिय गीतों

0: रात्रि के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे।

0: उनका पहला कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृहमंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। विज्ञान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ ईवा ओर्तेगा पोइनो के नेतृत्व में वाले उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। वहीं खेलों में वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Raja was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah congratulated all the luminaries and changemakers who have been conferred with Padma Awards by President Draupadi Murmu. In a social media post, Mr. Shah said, Prime Minister Narendra Modi has reoriented Padma Awards as an institution to drive socio-economic

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा गीत बाहर कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे ये कार्यक्रम लेके ठीक रात के 2:10 बजे।

0: आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: रात्रि के 3 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री

निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ. ईवा ओर्तेगा पाइनो के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, डिजिटल हेल्थ और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष नेफ्यू रियो ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के NPF में विलय को निर्वाचन आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। कोहिमा में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रियो ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस महीने की 4 तारीख को विलय को औपचारिक मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। और खेलों में IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, ये मधुर गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये मधुर गज़ल आपने सुनी चित्रा सिंह की आवाज़ में। वाकई में इनकी आवाज़ में कुछ जादू तो है, कुछ बात तो है। आइए सुनते हैं ये अगली गज़ल चित्रा सिंह की ही आवाज़ में।

वाकई श्रोताओं, ऐसी बेहतरीन आवाज़ हो तो ऐसी गज़ल कोई भी बार बार सुनना चाहेगा। शायद इसीलिए चित्रा सिंह गज़लों की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर पाई। आइए सुनते हैं अगली गज़ल, फिल्म क्षमा कीजिए, आइए सुनते हैं अगली गज़ल पंकज उधास साहब की मधुर आवाज़ में।

श्रोताओं, ये दो गज़लें अभी आपने सुनी पंकज उदास साहब की मधुर आवाज में। श्रोताओं, अपनी गज़ल गायकी से पंकज उदास साहब ने जो एक जगह लोगों के दिलों में बनाई थी, वो शायद कभी मिट नहीं सकती। हालांकि आज के समय में पंकज उदास साहब हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपनी गज़लों के ज़रिए वो हमेशा हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे। आइए सुनते हैं अगली गज़ल तलत महमूद साहब की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ गजलों गीतों के कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: उम्मीद ऑप्टिमिज्म आशा भूपेंदा के हाथ से कभी नहीं छूटती, न लोकगीतों में जो वो गाते हैं, न नज्मों से जो वो लिखते हैं और कंपोज करते हैं, यहां तक कि तन्हाई में भी वो अकेला महसूस नहीं करते, उनका साया उनके साथ रहता है, उम्मीद की जोत जलाए रखता है। और वो ऊंची आवाज से कहते हैं, ना कहो कोई, मैं अकेला हूं।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीमती सुधा रघुरामन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुधा रघुरामन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर M. बाला मुरली कृष्णा की रचना बृहदेश्वरा महादेव।

0: 摩的地，嗡那嘛西瓦呀。
1: इस कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुधा रघुरामन गुरु सुरजानंदा की रचना गंगाधीश्वरम शंकरम से करेंगी।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुन रहे थे जी दुर्गा प्रसाद एंड पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया संगीत। तबले पर संगत दी थी के नटराजन ने। श्रोताओं, आइए सुनते हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5 बजने को हैं। 5 बजे आप सुनेंगे सबसे पहले वंदे मातरम। अब से थोड़ी देर में आप वंदे मातरम के बाद आप सुनेंगे 5 बजे हिंदी में समाचार और 5:05 पर हिंदी में समाचार। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। आपसे थोड़ी देर बाद ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार, और 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। पांच बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत, और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी।

0: का 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन कार्यक्रमों में भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का के बालकांड का भाग 67। छः बजकर पचपन मिनट पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी समाचार। 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं और 8:45 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का और 9:30 पर आप आनंद उठा सकेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी द महक का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईया, जस डठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निदयावे ताए, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे, सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे पंजा प्यारिया सोह साहिब जादिया, चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया, जिन्ना नाम जपिया वंड सगया, देग चलाई तेग वाही देख के आनंदित कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया, चार खड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए, गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत

हे गुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहेब, तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोले जी वाहे गुरु, बोले जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान रहत दान, बबेक दान वसाह दान, परसा दान, दाना

जेकर सुत मने सब ते सुत खोए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जिते दाने अन के जिया बाजना कोई, पहला पण जियो है जित हरिया सब कोई।

एको सच्चा सोय जित मुख सदा सलाहिए पागर ती चार नानक ते मुख उजले